0: This is Gloria Estefan. Over 1 million women and 2.5 million children experience homelessness in our country every year. The National Women's Shelter Network is dedicated to ensuring that no woman or child will ever have to live on the streets. You can make a difference. Please visit thenwsn.org and donate today.
1: Tune in to How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Tune In has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
3: Good evening, hello and welcome. You're with the news today, your primetime destination news, newsmakers, talking points. Tonight, that big parliament showdown has begun over paper leaks. It's day one of the big debate, Priyanka Gandhi versus the government. The Delhi police's pellet gun claims busted even further. India Today finds out the exact sequence of what led the police to fire those guns. And my special guest tonight, the face of the Jantar Mantar protest. You don't want to miss why Mohammed Irfan has become a digital sensation. He speaks about meeting Rahul Gandhi and much more on the show tonight. But first, the top story that we are breaking right through the day. The Lok Sabha has begun its debate on the new examination bill that the government has brought in. And the Congress has used the occasion to go out on an all-out war against the new education minister, Prahlad Joshi. Priyanka Gandhi Vadra inside parliament and Rahul Gandhi outside him have targeted Joshi. Rahul Gandhi has gone to saying, to the extent of saying, BJP has put in place a man who is a defender of rapists. This is in the context of comments made during the Bilkis Bano case. He says that's the most filthy type of man. Priyanka's remark on Prahlad Joshi has been expunged from the Lok Sabha, where she made similar raised similar questions about the education minister of the country. Listen in to what has become a big talking point from day one of that debate in the Lok Sabha.
4: All these young people were protesting about the education system.
5: And so many girls.
4: And so many girls are protesting. They've been beaten, they've been thrashed. The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. It's a strange reaction from the Prime Minister that there are so many people in his cabinet. He could have chosen any one of them. But he chooses a person who protects rapists.
5: But my brother is saying at a time when they are saying that they are bringing in women's rights, women's reservations, and they are putting women in the forefront. What a way is this of putting women in the forefront? You're a woman. You know what women have to face and deal with in society in general, their security, everything. It's a very wrong message.
6: प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए ऑथेंटिकेट करना चाहिए आप जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर ठीक है कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक
7: 114
6: में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है मैं इधर प्रेजेंट हूँ और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते मुझे बिना नोटिस दिए हुए इसलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए.
3: Okay, let me go across to Moshpi Singh, who's tracking that debate in the Lok Sabha today. That debate is likely to spill over tomorrow and then in the Rajya Sabha on Thursday. But Moshpi, clearly Priyanka Gandhi Vadra this time the target of the attack of the BJP because of the comment she made on Prahlad Joshi claiming that he had defended the rapists in the Bilkis Bano case. let's be very clear. So far, usually it's been Rahul Gandhi who's been the target of the BJP's attacks whenever he speaks in Parliament. Today, it was Priyanka Gandhi. Can you give us a context as to what happened and what happens now? I'm told her remarks are being expunged.
8: So clearly, Rajdeep, her remarks were expunged at that very moment, you know, when Prahlad Joshi, you just short protested and demanded that the speaker should expunge her remarks. But she was also asked to validate and provide evidence. And it was Rahul Gandhi who sprinted out of the Lok Sabha there right then and got back a copy of the remarks that Priyanka Gandhi had made to substantiate what she had said. And once the remarks were expunged, Priyanka Gandhi and Rahul Gandhi both slammed the education minister and the choice of the PM outside at the Makar Dwar. So the entire, I think, the war of words as far as the bill and was less and more focused on the choice sacking of Dharmendra Pradhan and the choice of the new education minister. And also importantly, I think that tomorrow is going to be a day where 2 hours of discussion and Rahul Gandhi is going to take to the floor. So we'll see more fireworks tomorrow.
3: Okay, Moshpi Singh joining me there. Remember, this is day one, as she said. Let's take a look at what happened inside the Lok Sabha, where it was the Priyanka Gandhi pitted today versus the might of the BJP. Let's listen in to some of those sound bites that took place during the course of that debate.
9: देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ कांग्रेस बोल रही है। हाँ कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है। जवाब मांग रही है। जवाब दीजिए। किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए किसने ऑर्डर दिया आपके माध्यम से मैं पूछती हूँ अध्यक्ष महोदय किसने ऑर्डर दिया प्रधानमंत्री जी ने दिया गृह मंत्री जी ने दिया जवाब देंगे पूरा देश पूछ रहा है सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है पूरा देश पूछ रहा है अध्यक्ष महोदय देश के माता पिता पूछ रहे हैं छात्र पूछ रहे हैं अध्यापक पूछ रहे हैं पूरा देश आज ये पूछ रहा है परसों शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया और कल यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं विडंबना देखिए महोदय जब भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को मुकुट पहनाया जा रहा था स्वागत हो रहा था उनका तब महाराष्ट्र में एक परिवार पेपर लीक पीड़ित अपनी बेटी की आत्महत्या का शोक मना रहा था संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं दिल का एंगल बदलना पड़ेगा
10: रात को 12 बजे अगर रिकॉर्ड करके अपना संदेश वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते हैं तो शायद दुनिया के किसी नेता की किसी मैसेज को इतनी बार नहीं देखा गया होगा 400 मिलियन व्यूज एक मैसेज को देखने के ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी युवाओं में कितने लोकप्रिय लेकिन आप तो समय पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थे हाउस चलने नहीं दे रहे थे राहुल गांधी जी को लगा देश के युवाओं ने उनको पूछा नहीं ना अखिलेश जी को पूछा ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को पूछा तो अब करें क्या तो उन्होंने वो किया जो किसी नेता प्रतिपक्ष को नहीं करना चाहिए वो प्रधानमंत्री निवास के बाहर जाकर लेट गए अरे राहुल जी आपकी तड़प जलन मैं समझ सकता हूं प्रधानमंत्री निवास के अंदर आपको जाने का मौका नहीं मिल पा रहा लेकिन बाहर ही लेटने का मौका ले लिया आपने।
11: पहला आंदोलन जिसमें माँ बाप ने साथ दिया, क्योंकि परीक्षा से कितना दुखी हैं लोग। अध्यक्ष महोदय, जो लोग चढ़ावा चोटी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए, किसकी आंखों में आग धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गईं? जो हम लोगों को जानकारी में मिल रहा है, अध्यक्ष महोदय सरकार हर विषय पर स्वीकार किया है, लेकिन पता नहीं अध्यक्ष महोदय ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सदन में उन आश्वासनों को क्यों नहीं रख रही है सरकार जो सहमति बनी है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने देखा कि जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने।
12: तो कहने का कुल मिलाकर के तात्पर्य है, बहुत समय ना लेते हुए, कि सरकार की नीति बड़ी ईमानदार है और ये संशोधन भी एक बड़े ईमानदाराना प्रयास के तहत लाया जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि किसी भी दल के नेता को या किसी भी पार्टी के किसी भी माननीय सदस्य को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि आपत्ति हुई तो देश की जनता को उनसे आपत्ति होगी।
3: Okay, we are getting more breaking news now coming in. The Cockroach Janata Party now is threatening to go back to their protest mode because they say a Supreme Court order which refused to provide blanket immunity to the protesters is a violation of the agreement that was reached between the government and the protesters. The Cockroach Janata Party is calling it an uninformed order that is wholly unacceptable to them. They say the direction stands in direct contradiction to the solemn assurance and guarantee that was extended by the government of India to the youth of this country on 25th July, namely that FIRs would be withdrawn and that no protester would be directly or indirectly targeted for participating in the peaceful movement. Remember, the Supreme Court today refused to provide blanket immunity, said we will order the release of protesters with no criminal records, but you can proceed with the investigation of those responsible for violence in the FIRs. Listen in to what the Cockroach Janata Party has said while threatening to resume their protests.
13: देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ युवाओं के हित में कर रही है तो हम वेलकम करते हैं ऐसे ऑर्डर्स को या जजमेंट्स को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है वो अपने तरीके से कर रही है, अपने आइडिया के हिसाब से कर रही है, वो करते रहे। हम लोग ग्राउंड पे थे बहुत टाइम से, हम लोग कुछ डिमांड्स थी, हमारा जो की एक जो की डिमांड था वो था कि FIR सारे विड्रॉ होंगे सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ। एंड सरकार को भी समझना चाहिए कि हमारा जो डिमांड है वो जैसा गारंटी दिया था, जैसे देश के सामने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों मिनिस्टर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे जो एग्री किया था, वैसे ही डिमांड आपको रखना पड़ेगा।
3: Now remember, that's one angle of the controversies that are brewing, because days are the other angle is because days after the Delhi police denied the use of pellet guns during the July 20th protests, India Today has accessed a general diary entry that was filed by the Rapid Action Force. The document reveals that RAF personnel did fire anti-riot guns loaded with plastic pellets twice on the directions of a DCP of the Delhi police while trying to disperse protesters. This is part of a series of stories that we've been doing on pellet guns that nail the Delhi government's claim that no pellet guns were fired. Take a look at this special report.
14: For days, the Delhi police vehemently denied the use of pellet guns during the crackdown on protests against NEET paper leak on July 20th. After tracking down multiple victims of pellet gun firing, India Today has now accessed documents that bust the police claims. An official general diary entry of the Rapid Action Force is now at the heart of the pellet gun controversy. The diary reveals that Rapid Action Force personnel fired anti-riot guns twice on the directions of a Delhi Police DCP during the CJP-led Parliament March. The same entry records the use of 55 non-electric shells, 15 electric shells, 5 tear smoke grenades and 2 rounds from anti-riot guns loaded with plastic pellets. An anti-riot gun is not a conventional pellet gun, but it is a less lethal crowd control weapon capable of firing plastic pellet cartridges that disperse into multiple projectiles on impact. Although classified as less lethal, anti-riot guns can still cause serious injuries, especially if fired at close range or if pellets strike sensitive areas like the eyes or head. That's why their use is governed by strict crowd control protocols. The revelation comes even as the police are yet to admit the use of pellet guns. Delhi police had maintained that no pellet guns were used during the July 20 protests and had described reports of pellet gun use as false. But the diary records that anti-riot guns were used on July 20th and that Rapid Action Force personnel fired anti-riot guns twice during the crowd control operation at Jantar Mantar. Even though several protesters reported pellet injuries, one of them, 19-year-old Sahil Lochab, suffered devastating injuries and risks losing vision in one eye. Former IPS officer Yashovardhan Jha Azad and 2 victims have moved to Supreme Court seeking a ban on the use of pellet guns on civilian protesters. Meanwhile, the investigation has widened. Delhi police say facial recognition analysis of CCTV footage has identified 2,873 people with criminal backgrounds, including 989 with serious criminal records, who infiltrated the protests. The list includes 101 accused in murder cases, 62 accused in attempt to murder cases, 284 accused in dacoity and robbery cases, 61 accused in rape cases, 6 accused under the POCSO Act, 25 accused in molestation cases, 229 accused under the Arms Act, and 67 accused in NDPS cases. Meanwhile, the Supreme Court on Tuesday ordered no coercive action should be taken against protesters, but made it clear that the protection would not extend to those with criminal records. The questions are mounting. If anti-riot guns firing plastic pellets were used, why was it denied? As the Rapid Action Force probes its own actions, the spotlight is now firmly on Delhi police. With Arvind Ojha in Delhi, Bureau Report, India Today.
3: So let's raise the big questions. Do the police have rules for pellet gun use? Is this a bid to cover up use of pellets? Should the Delhi police come clean? And do we need a nationwide ban on the use of pellet guns? Should there be a ban on pellet guns? Joining me now, Yashovardhan Azad, former IPS Special Director who's filed that case in the Supreme Court. Kamal Kant Sharma, Inspector General Police at Central Reserve Police Force, will hopefully be joining us. And Tanveer Ahmed Mir, Advocate Supreme Court, is with us. Let's come to you, Yashovardhan Azad, because you're the one who, along with 2 of those who have been allegedly hit by the pellet guns, have gone to the Supreme Court saying you want a total ban on pellet gun use in such protests. Now, there will be those who will say such a total ban is not possible because a situation could well arise that spirals out of control and this is seen as one way of crowd control. How do you respond?
15: Rajdeep, in none of the developed democracies, pellet guns are used. There is a graded option in the standard operating procedure where a number of other measures are there. And these are the non-lethal measures which can easily be used. This was used in Kashmir in a specific situation in 2010 and 2016. But you know the uproar which took place and the United Nations, Watch Human Rights Committee said about it. 6,000 plus people were injured. There were grave cases, with huge damage to the eye, and the AIMS doctors were flown from there. There is no case for use of pellet guns in a democracy, and that also for crowd control. For civilian crowd control measures, the weapons are given. The SOP has already been devised that you have water cannons, you have tear smokes, you have bloody charge. And this is supposed to be a second last resort for use in crowd control cases.
3: So are you calling for a complete ban, or are you saying you use it only in an emergency situation? Because that is the key. Because in your petition before the court, you seem to be calling for a complete ban on the use of pellet guns. There will be police officers who will say, look, there may be extraordinary circumstances where we have to use it. Can there be a caveat?
15: There are no extraordinary circumstances where you need to use it, because you have an array of other kind of weapons which can be used. These are non-lethal weapons. See, the problem here is very, very specific. When you are using a civilian crowd control weapon in a democracy, it has to be directed in such a manner that it is absolutely pinpoint. So even if you are doing a firing, it has to be below the waist, because the crowd is not your enemy. You're supposed to manage the crowd. What happens in the case of a pellet gun shot is it releases a metallic spray. It is not pointed. It can go to the eye, it can go to the leg, it can go anywhere. This kind of a spray is not target oriented, but has an area effect. And that is why it is extremely dangerous. Use any other weapon, but ban pellet gun. And you have seen what has happened. Somebody has lost his eye. And these particular cases, the two people who have been with me in filing this petition, and thanks to Vrinda Govar, the eminent lawyer, who agreed to file it for us. You have seen the impact. That is why we have also asked for a compensation, which is lifelong, because the damage caused is immense. And that is why it cannot do with 50 lakhs or 60 lakhs, but for the whole life.
3: Okay, let me come to you, Tanveer Ahmed Mir, because let's look at the law. The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023. Section 149 permits the district magistrate or any authorized executive magistrate to seek the assistance of the armed forces where an assembly cannot otherwise be dispersed. It is necessary for public security. It further requires that the armed forces use as little force and do as little injury to person and property as may be consistent with dispersing this assembly. There's no specific mention here of pellet guns. Am I to understand, therefore, that the use of pellet guns prima facie does not fit in within the law when it comes to crowd control?
16: Well, without any doubt, Rajdeep, the statute in itself will not ever provide the state and the police machinery to use any kind of weapons which can cause permanent deprivation of your vital organs, including your eyes. And the breach here, most unfortunately, as we see, is on the higher police officers within the Delhi police, and who seem to have just abided and licked to the toes of the bureaucrats or somebody in the government, telling them that even if these are young kids protesting on very genuine issues, but at the slightest provocation, and even if otherwise, you use the maximum force to teach the commoners and young students a lesson of their life. Now think about a person who would have suffered such massive injuries, and even if he's there protesting in terms of his guaranteed constitutional rights. Let's not forget that Honorable Supreme Court today said that this was a peaceful protest, and the element of protest is the bedrock of any democracy. If we quell protest, then we are killing the democracy itself. I have a different problem.
3: But the Supreme Court also said, hold on, sir, that's a partial reading. The same Supreme Court, while saying that it is completely legitimate and constitutional to have peaceful protests, also put a rider, a caveat, that if the protests turn violent, then the police has the right to respond accordingly. And in fact, they have even allowed the family members of police of personnel who were injured to also be part of the petition, that they must also be heard. The police personnel who were injured in the protest can also have a claim.
16: Well, wherever there is a protest and, some clash happens, there's bound to be injuries here and there. The question is that this is the state against the citizen. Now, if you have used pellet guns in terms of pictures that you're just showing on the screen, I would say, as a lawyer, as a law-abiding citizen, that the liability to pay the compensation should be on the ACPs, the DCPs, the commissioner in personal capacity. And this cannot be put on the state. Here are police officials. They know what they are dealing with. If they use weapons, like in United States of America, any kind of compensatory damages claim first comes on the cops in their personal capacity. Whether it is Mr. Lamba or somebody, who indulge in some atrocious activities which have now been brought to the notice of honorable judges in a petition in Delhi High Court and in Supreme Court, let the liability come on the cops in terms of attachment of their personal salaries, their gratuity.
3: And what happens, I repeat, what happens to the policemen who get injured? Do they have any protection or not?
16: Insofar as police is taken, if they have been injured, they are well within their rights to register cases. The cops do have the power of law and the statute behind them. The question is, do the cops have the right to use such lethal weapons in the face of ordinary citizens, which makes you lose your eyesight permanently? Look at the face of the gentleman. Way back in 2010, we even today see young girls, 14 at that time, both the eyes gone. If this person loses his eyesight, what is his future in his life? Who will compensate?
3: Okay.
16: Are we going to Government of India to compensate with trigger happy cops going scot-free all their lives, every time, each time? Why?
3: Okay, you made your point. Let Yashovardhan Azad respond. Yes, Mr. Azad.
15: Yeah, Rajdeep, there are two different issues. The case, there was violence against the police. Accepted. Mm-hmm. There are 118 policemen injured. They were dragged to the bushes. Public property was damaged. Each one of those gundas should be definitely brought to book. What I'm talking about is the unprofessional conduct on behalf of the police in certain cases and the use of pellet guns per se for control of crowds. What I'm saying is that the use of pellet guns in a democracy should not be allowed. It's not used in any developed democracy because there are other weapons which are sufficient. During our
3: let me stop you for a moment, then you can respond. Because an SOP that was issued to the Delhi Police Commissioner in 2011 examined several less lethal crowd control options, including plastic bullets, net guns, laser dazzlers, pepper ball launchers, tear gas shells, stingers and dye markers. You're saying all of this should have been explored. You cannot give the instructions that the Delhi police, that the DCP gave to use pellet guns on despite the provocation on the protesters. Am I correct?
15: The problem is that in 1982, I used rubber bullets as a specihor. That's right. The problem is that the pellet guns usage has not been banned. In 2010 and 2016, when the pellet guns were used in Jammu and Kashmir, there was an uproar. What I'm saying is, suppose that was used for a situation in the insurgency. Today, we are better equipped. We have better weapons, all these graded weapons. Yet in 2016, the MHA developed a standard SOP for using pellet guns and said there were 3 days training were being given. My contention is we don't need pellet guns used in for crowd law and order situations here because you have an array of other weapons which are safer.
3: So who is accountable then, Mr. Azad? Is it the DCP who issued instructions or how did the DCP... I mean, is the chain of command very clear that this is the DCP who has to be held accountable for the use, or would he have got orders from someone else? Let's get very clear, because Delhi police on day one denied the use of pellet guns. They said no pellet guns have been used.
15: Yeah,
3: and that lie has been busted. That was a lie, a bald lie.
15: No, Yeah, but let me tell you, Delhi police does not have pellet guns in its arsenal. The RAF, which is under the CRPF, has it. Now, Delhi
3: police... Yeah, that was being too clever by half. The Delhi police was being too clever by half. The instructions were issued by the DCP.
15: Absolutely. That's what I'm saying. But what happens on ground is the operation control is with the Delhi police, and therefore the DCP, who's in charge of the situation on the spot, has the authority or the command to fire these weapons. Now, there should be an inquiry. What was the situation at that particular time? Was it so overwhelming? Was the police in a corner? Was the police being attacked that the pellet guns were used? Because it was not banned. What I'm saying is ban it per se. It is not something which has to be used. Use other weapons.
3: Okay, you're saying ban it, use other weapons. Final word from you, Tanveer Ahmed Mir. Should the Supreme Court then lay down binding guidelines on graded use of force, similar to guidelines in cases of custodial violence or encounter killing? Should we be very clear that the court will have to now give very clear direction? Otherwise, the ambiguity is being exploited at times, as we've seen on what happened on the 20th of July.
16: Well, the court... most respectfully should pass an order that, you know, the authorities who were responsible for using these lethal weapons should be, first put to criminal prosecution by registering FIRs against them. Let the state investigate the cases against the cops as well. Because if the cops are going to use lethal weapons, that is going to lead deprivation of eyes, ear, somebody will go blind. According to me, you have committed very serious criminal offenses. You are not empowered in crowd dispersals to blind a protester by any stretch of imagination.
3: Okay. Let's leave it there. I think we've had two strong, clear voices. I hope those in authority are listening. Those images clearly were frightening, and those images have indeed struck a chord across the country. Thank you both very much for joining me here on the news today. Now, the Jantar Mantar protests over the last fortnight and more over the NEET paper leaks had many faces. One of them was a young man who never went to school, is a daily laborer, now runs a small little ice ki dukan, barf ki dukan, but spoke on democracy with such vigor, its strength and flaws, that he has taken the internet by storm. Mohammed Irfan, in an interview to Lallan Top's reporter Rajat Pandey, spoke passionately about why the need, the right to dissent, should be part of democracy. He spoke with rare clarity of mind and depth of a scholar, which has won much admiration. He lives in a small slum colony, but he knows the constitution better than most. I met him yesterday in the Lallan Top studios, and to be honest, it was a bit of a fan moment for me. Listen in to someone who showed the power of the ordinary citizen. Take a look.
17: चार ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में ना पढ़े लिखों का ही जीवन सवरा है इस पे इतना ये मत अभी भी ग्रामीण भारत में जीवन नरक है हम किसी के पैसे पे नहीं पढ़ रहे हम देश के कार्यदाता हैं लेकिन सिस्टम के सताए हुए हैं हम सबकी बात होती है हमारी बात नहीं होती क्योंकि हमें बांट दिया जाता है धर्म जाति और राजनीति में
18: अगर यही सरकार एक नारियल पानी लाती यूपीए ने अन्ना जी को नारियल पिला दिया इंदिरा जी ने इनके पिताजी को पिला दिया महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने पिला दिया सर ये सरकार भी एक समाज का रास्ता अपना सकती थी और क्या मांग रहा था ये नहीं कह रहा था 200 गज का लुटेन दिल्ली में कोई प्लाट काट दीजिए राज्यसभा की सीट दे दीजिए या मोदी मंत्रिमंडल में कोई पद दे दीजिए वही कह रहा था इस लाचार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए और जिम्मेदारी दे कीजिए जब अभिजीत दिव्य ने कहा ना मुझे पीटा और वो रोने लगे मैं कहा यार मुझे भी पीटना चाहिए मेरे शरीर की मांसपेशियां मेरी आत्मा से लड़ने लग गई कैसे खड़े हो कैसे बैठे हो चुक्की के अंदर चलो यार पिटाई खाएंगे दिल्ली पुलिस की जब हम उस लाइन को पढ़ते हैं कि पीपल ऑफ इंडिया हम भारत के लोग भारत को संपन्न प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होगा 26 नवंबर 1949 को अंकित अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। फिर इतनी बड़ी आबादी आज भी अमान्य जीवन कैसे जी रही, सभी की तो बात करी गई थी।
3: एवरी आंदोलन, एवरी प्रोटेस्ट कैन थ्रो अप अ फेस, अ चेहरा। द वन एट जंतर मंतर दिस टाइम थ्रो अप वन सच फेस, कर्टसी लल्लन टॉप्स रिपोर्टर रजत पांडे, हु इंटरव्यूड मोहम्मद इरफान, अ 35-year-old small ice shop owner who lives in a jhuki jhopri but came to Jantar Mantar and spoke about democracy or Loktantra with such power that he's become a digital sensation, to the point where Rahul Gandhi today visited his jhuki near Delhi, and he is with us here in the Lallan Top studio. Jantar Mantar jaane ki jo ichha hui wo kyon hui, kya wajah hai ki aapko laga ki jo आंदोलन हो रहा है वो जायज़ है और आप वहाँ क्यों पहुँच गए?
19: देखिए सर, जिस तरीके से सरकार का रवैया रहा है लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए, पहली वजह तो यह है कि सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ के खिलाफ इरफान होगा।
20: ये जुल्म है कि जुल्म को
19: सरकार जिस तरीके से करती है। सर मैं CNRC आंदोलन में था, आपको, आप बड़े पत्रकार है, मैंने तो सुना है और सभी महापुरुषों से सीखा है कि नंगे बदन को ढकता है कपड़ा। ये धर्म और रिलीजन और नेशन की पहचान के लिए नहीं है कि नंगे बदन को ढकता है। उन्होंने कहा कि इन्हें कपड़ों से पहचान लीजिए। सियासत की इतनी छोटी सोच का हम विरोध ना करें तो क्या करें? सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई नीट का स्टूडेंट है तो वो बायोलॉजिकल सब्जेक्टों से पढ़ रहा है, अपनी अपनी चीजें पढ़ रहा है 8 से 10 घंटे। अब आप राजदीप सर उनके सामने आ गए, भैया आइए सरकार पे डिबेट कीजिए, तो वो कैसे बोले? तो वो कुछ नहीं बोल पा रहा। वो जब 20 तारीख को डंडे पड़े तो वो इंस्टाग्राम पे खा लिया भगने लगा, लेकिन मैं ऐसी बातों का समर्थन नहीं करता, वो गलत था। लेकिन बच्चे अपने अपने तरीके से अपनी बात रख रहे थे। एक मेरी बहन से मैंने पूछा ये क्या है लिखा हुआ, तो उन्होंने कहा ये सैनिटरी पैड के बारे में लिखा कि ये लीकेज नहीं होगा, लेकिन सरकार की हर नीति लीकेज हो गई, हर पेपर लीकेज हो जाता है, ऐसी ऐसी बातें थी। तो ये सुनने में थोड़ी अश्लील लग रही थी, लेकिन वो अपनी तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे।
3: और नीट और ये जो पेपर लीक का जो मामला है, उसको आपको क्यों लगा कि ये मामला आना चाहिए?
19: नीट जो एग्ज़ाम है सर, वो उन बच्चों के लिए एक सपना है। जैसे कि आप करोड़ों रुपए में MBBS तो नहीं करा सकते, अगर नीट के पेपर में आपका नाम आ जाता है तो 5-10 लाख रुपए में, आपको पता है, बहुत कम पैसे में बंदा एम्स में जाएगा या किसी सरकारी संस्थान में जाके MBBS की तैयारी करेगा और बहुत कम पैसे में वो एक काबिल डॉक्टर बन जाएगा, और उतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसे कि वो प्राइवेट में 3 करोड़ रुपए में भी होगा ना तो उसे नहीं मिलेगी। यहाँ डायरेक्टली प्रैक्टिकल भी होता रहता है और थ्योरी भी बनती रहेगी उसकी, सब कुछ अच्छा होता रहेगा, एक अच्छा डॉक्टर बनेगा। उसको नीट सपने हैं लोगों के, एक हर किसी के, जैसे मिडिल क्लास बंदा है 30-40 हज़ार रुपये कमाता है तो उसके खर्चे भी हैं, वो सपने देखता है। अगर उसका बच्चा अगर अच्छा कर गया 10वीं में, अगर उन्हें साइंस से पढ़ा है और वो आगे नीट की तैयारी करता है, उसका नंबर आ जाता है, तो फिर वो लीकेज हो जाए तो ये तो बड़ा अनर्थ है। किसी के सपने और उम्मीद मार रहे हो, फिर उसमें 20 बच्चों की जाने गई। हमने कहा तो इन्होंने कहा कि नहीं, NDTV आगे कहा ये तो दहशतगर्दों की भी टीम है, ये WW आईसा वालों को WW कहते हैं, SFI वालों को WW कहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, ये आपके देश के नौजवान छात्र हैं, इस देश में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं, इस देश को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, आप अपनी वैचारिक मतभेद में आप इतनी हिंसात्मक बात है ये कि टुकड़े टुकड़े गैंग है और ये दहशतगर्दों की बीच हिंसात्मक हिंसा फैलाने वाली बात है। आप देश की सबसे बड़ी पार्टी है, आपके करोड़ों समर्थक है, जब उनमें ये संदेश जाएगा कि जंतर मंतर पे तो दहशतगर्द बैठे हैं, देश विरोधी बैठे हैं, तो वो लोग हिंसा करेंगे। ऐसी लोग एक साफ सुथरे लोकतंत्र में असहमति हो सकती है, लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं। आप तो खुद हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि आपको अहिंसा परम धर्म पे विश्वास ही नहीं है जो भगवान महावीर ने दिया है, गांधी ने दिया है।
3: आपके लिए लोकतंत्र क्या मतलब?
19: लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए, हम दोनों एक दूसरे के विचार गलत फहमियों को दूर करके एक साथ बैठते हैं, रास्ता निकाल लेते हैं, लोकतंत्र ये कहता है। लोकतंत्र लोगों की सरकार होती है, लोगों के विचारों से शासन चलता है, लोगों के विचारों से तो सब कुछ होता है।
3: फिर नीट पर भी सवाल का जवाब देना होगा कि इतने पेपर लीक क्यों होते हैं देश में,
19: हर चीज का सवाल कर सब। देखिए सर, हम सरकार जो सरकार लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, आपको चुनती है आपके अपने देश की और लोगों की बेहतराई के लिए। जनता आपको किस लिए चुनती है? कि देश हित में काम कीजिए, लोगों के हित में काम कीजिए, देश लोगों से तो बनेगा।
0: आप किस स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए हैं?
19: मैं स्कूल नहीं गया सर।
0: स्कूल नहीं गया तो ये कहाँ ये सब सीखा कि लोकतंत्र की जादू, लोकतंत्र में ताकत क्या है, इतनी अच्छी तरह से बोल कहाँ लेते हैं?
19: नहीं, लोकतंत्र देखिए, जब हम मैं कहता
0: आप, और आप तो हमसे डिबेट अच्छा करते हैं, आपने मेरी नौकरी लेनी चाहिए।
19: नहीं नहीं,
0: आपने एंकरिंग करनी चाहिए।
19: नहीं, मैं एंकरिंग की बात नहीं कर रहा, मैं जब कहता हूँ कि
0: तो आप सभी पार्टी स्पोक्स पर्सन से अच्छे।
19: देखिए सर, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? जब हमारे महापुरुषों ने इस देश को संविधान दिया तो सभी के लिए इक्वालिटी की बात कही गई, सभी के जीवन में समानता होनी चाहिए, हर चीज को लेके, किसी एक चीज को लेके नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेके, संसाधनों को लेके। जब हम देखते हैं, आज देखते हैं, तो बड़ी आबादी अपने जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, तो हम कहेंगे, हम सवाल करेंगे, आप ही तो 5 साल में आके हमें सपने दिखाते हैं सब कुछ बेहतर कर देंगे, फिर अगर सब कुछ बिगड़ा हुआ है तो हम पूछेंगे, तो फिर आप कुछ भी कहिए। हम पूछेंगे कि देश में हर साल NCERB का डाटा है 2024 का, 1,70,746 मौतें हुई हैं, प्रतिदिन 467, हर मिनट 3, और उनमें सबसे बड़ा नंबर है श्रमिकों का था, दिहाड़ी मजदूरों का। तो हम बार बार पूछेंगे, आप इंटरनेशनल कहिए या कुछ कहिए, 19, 20, 21 में NCERB का डाटा है, 13,13,000 महिलाएं गायब हुई हैं, आपकी कमीज का बटन भी खो जाए तो वो मिल जाता है, और यहाँ जिंदे आदमी गायब हो गए। तो हम पूछेंगे नहीं, हम सवाल करेंगे आपसे। ये लोकतंत्र है कि आपको सवालों का जवाब देना होगा, आप सवालों से भाग नहीं सकते।
0: तो कोई अगर आप संदेश देना चाहोगे देश को, क्या दोगे?
19: मैं देश को ये संदेश देना चाहूंगा कि जिंदगी में हम हर किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, पढ़ाई में नहीं। अपने बच्चों को हमें पढ़ाना होगा, पढ़ाई है वो एक चीज है जो हमें और हमारे परिवार को, देश और समाज को बदल सकती है। तो यही कहना चाहूंगा।
0: जब आपकी बात डिजिटल पर, ललन टॉप पर सुनी गई, मेरे 2-3 दोस्तों ने फोन करके आपका नंबर मांगा और कहा हम उनको आर्थिक मदद देना चाहते हैं।
19: ऐसा कुछ मेरा नहीं, ऐसा कोई मेरा नजरिया नहीं। मैं अपने मेरे शब्दों के लिए मैं अपना जीवन नहीं बदलना चाहता। इस देश की बड़ी आबादी है, उसको आप बड़े पत्रकार हैं, आप अच्छी तरह वाकिफ हैं देश में। पुलिस से लोग डरते हैं किस लिए? अगर आप पर्स चोरी हो गया ना तो थाने नहीं जा रहे, ये डर। पुलिस का सिस्टम तो इसीलिए बनाया गया था कि अंदरूनी सुरक्षा को पुलिस देखेगी, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होगी और सेना बाहर देखेगी। सेना अपना काम 100% कर रही है, पुलिस 99% करप्ट है। अब कहोगे कि कैसी बात कर रहा है, मैं जमीन पे ये चीजें दिखा दूंगा।
0: और क्या दिखाओगे मुझे जमीन से? पुलिस दिखाओगे और क्या दिखाओगे जो जमीन पर होता है? जो हम अपने स्टूडियो में बैठे हैं या कहीं अपने आलीशान महल में लोग बैठे हैं, वो क्या जानेंगे कि झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी कैसी
19: है? झुग्गी झोपड़ी की बात नहीं है, मैं कहता हूँ ग्रामीण भारत में आई है, शहरी सलम में आई है। जो देश की बड़ी आबादी है उसके जीवन को परखिए, किताबों में नहीं, उसकी उसकी आत्मा में घुसिए, उससे पूछिए क्या खुशी और क्या गम है। ये साहित्यकार ऐसे नहीं कलम अपनी कलमों को आवाज देते हैं और गूंगे के मुंह में जवान देते हैं, इसीलिए तो
0: आपके लिए क्या खुशी है और क्या गम है?
19: मैं खुश हूँ सर, मैं खुश हूँ, मैं आपसे मिल रहा हूँ, आप तमाम बड़े पढ़े लिखे लोगों से मिल रहा हूँ, और अपनी अपनी जगह लोग सेवा दे रहे हैं इस देश में, राष्ट्र निर्माण में, उन लोगों से मिल रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलके एक बेहतर भारत का संकल्प ले और बनाए उसे।
0: गम क्या है?
19: गम कुछ नहीं, गम तो जिंदगी में देखिए हम क्या कहते हैं, हम जहाँ से आते हैं हमने खुशी को मेहमान की तरह भी नहीं देखा, हम तो दुख में ही हंसते हैं, दुख में ही रोते हैं।
0: महीने दिन के कितने बना लेते हो पैसे?
19: महीने 300-400 रुपए, और क्या बनाएंगे 300-400 रुपए। मैंने रजत को बताया कि जंतर मंतर पे एक छात्र आया ग्रामीण भारत से, उनने मुझसे कहा कि इरफान मैंने आपकी वीडियो देखी है। मैंने कहा शुक्रिया। फिर उसने बोला इरफान जैसे आपने कहा 500 रुपये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो ऐसे ही मेरे जैसे परिवार से। फिर उनने कहा कि कनॉट प्लेस में मैं बड़ी दुकानों के सामने थोड़ा छोटा महसूस कर रहा था। मैंने कहा हम छोटे नहीं, हम पर्यावरण में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, खलिहानों में रहते हैं, ये तो पोल्यूशन में रहते हैं। उसको मन के बढ़ावा दे रहा था मैं।
0: राहुल गांधी को क्या कहा आपने?
19: राहुल गांधी को जी मैंने इस देश के श्रमिकों के बारे में कहा कि सर आप जब आएंगे तो इस देश में एक न्यूनतम मजदूरी, हर राज्य में एक श्रमिक कानून है, अलग अलग राज्यों में आप जानते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग न्यूनतम मजदूरी है। एक तो जमीन जो कागजों में वो जमीन पे मिलती नहीं है, ऊपर से उसमें भी कटौती की, हरियाणा यूपी वाले घास खा रहे हैं या बिहार वाले घास खा रहे हैं, महंगाई उनके लिए भी है, दिल्ली में 18 तो वहाँ 13 किस लिए? तो पूरे देश में एक न्यूनतम मजदूरी लाएंगे और लागू नहीं करेंगे, जमीन पे भी उसका असर दिखना चाहिए, और नहीं तो हम आपके खिलाफ भी जमीन पे आएंगे।
0: क्या कहेंगे अगर मोदी जी आपसे मिले तो, उनको क्या कहोगे आप?
19: पहले मैं मोदी जी से नहीं मिलूंगा, पहले मैं अमित शाह जी से मिलूंगा कि सर आपकी जो पुलिस है ना बड़ी लापरवाह है, कि हम कहते भी हैं कि नशा गांजा भांग दूसरा बिक रहा है, नहीं मानती है।
0: कहाँ बिक रहा है?
19: पूरी दिल्ली में बिक रहा है, हर केंद्र शासित प्रदेश में बिक रहा है। आपको नहीं भेजूंगा और ना मैं खुद जाऊंगा, 12 साल के बच्चे को भेजूंगा, उसे मिल जाएगा लेकिन पुलिस को नहीं मिलेगा। आपके नारकोटिक डिपार्टमेंट में मैंने 2 कंप्लेंट करी कि सर मेरी बस्ती में इसमें एक बिकती है, उन्होंने कार्रवाई भी करी लेकिन वो पैसे लेके चले गए। मैं कहा जाता तो
0: भ्रष्टाचार है
19: मतलब करप्शन है।
0: आपकी तो जिंदगी बदल जाएगी कल या वैसे की वैसे रहेगी?
19: वैसी रहेगी, मैं खुद को
0: उसी दुकान में
19: उसी जगह पे उसी संघर्ष में और उसी तरीके से जो इस पागलपन में शामिल ना हुआ वो हर शख्स मारा जाएगा।
0: तो जिंदगी क्या होनी चाहिए?
19: जो करना है कर ले, दुनिया के चमन में मौका ना मिलेगा जब लिपट जाएगा कब।

0: देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। जवाब देंगे? किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूं अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश के माता पिता पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछ रहे हैं, पूरा देश आज ये पूछ रहा है।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: पेट रोटी खा लेना ही जीवन नहीं है, शहरी सलम में जीवन नरक है।
1: मैं कहता हूँ लोकतंत्र में ना अहंकारी संवाद होना चाहिए और संवाद के दरवाजे दोनों तरफ से खुले होने चाहिए। संविधान की शपथ में ना गरिमा सबका, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कर, तो व्यक्ति की गरिमा गरिमा गरिमा नहीं गिननी चाहिए सर। जय श्री कृष्णा सर, मैं इरफान सर, और आज मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है सर।
0: 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में ना पढ़े लिखो का ही जीवन सवरा है।
2: A voice that rose above the slogans at Jantar Mantar is now being heard in the country's political corridors. Mohammed Irfan, the hawker with little formal education, whose speeches went viral during the student protest, met Congress leader Rahul Gandhi on Monday. Rahul Gandhi said Irfan's understanding of the constitution and his desire to learn reflected the strength of India's youth. Hours after the meet, Irfan spoke exclusively to India Today's sister platform, The Lallan Top, with a message that cuts across party lines.
1: मैं आज राहुल गांधी से मिला, मैंने उनसे यही कहा कि अगर सर आप जो हम आपसे अपनी मांगे रख रहे हैं, आप विपक्ष के बड़े नेता हैं और आज नहीं तो कल सत्ता में आएंगे, अगर आपने हमारी बातों के वादा खिलाफी कही तो हम अपनी असहमति आपके खिलाफ भी रखेंगे।
2: फॉर इरफान, अकाउंटेबिलिटी डज नॉट स्टॉप विद वन गवर्नमेंट और वन पॉलिटिकल पार्टी।
1: हम न्यूट्रल हैं, हम इस देश का भला चाहते हैं।
2: He also spoke about the struggles of migrant workers.
1: 2024 का NCRB का डाटा कहता है कि 170,746 मौतें हुई, जिसमें 31% दिहाड़ी मजदूर थे, और वजह एक थी कि घर में तंगी और मानसिक संतुलन डिस्टर्ब होना, आर्थिक तंगी थी। तो हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं उस वक्त को जो इस देश की बड़ी आबादी और खून पसीना लगा रही है इस देश के निर्माण में, हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं।
2: फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ जंतर मंतर टू द नेशनल स्पॉटलाइट, हिज स्टोरी इज नॉट अबाउट पॉलिटिकल पावर, इट्स अबाउट द पावर ऑफ अ सिटीजन्स वॉइस टू बी हर्ड। ब्यूरो रिपोर्ट, India Today.

0: And some big breaking news coming in. The Delhi police have now issued notices to the world's four biggest social media platforms, which includes Facebook, Instagram, YouTube and X. And this has been done with keeping in mind the Delhi violence that happened during the protest, the CJP-led protest in the national capital. And now an issue has been... a notice has been issued to these four social media platforms. Delhi police have asked these platforms to remove the posts and videos that spread false and misleading information regarding the Delhi violence. So notices have been issued to these four platforms, which include Facebook, Instagram, YouTube and X. Case regarding the Delhi violence during the CJP-led protest. Now, the Delhi police have sent these notices. They have claimed that there were false narratives and content intended to disrupt the atmosphere in the country regarding the Delhi violence that was spread on these four social media platforms. And this has been issued to Facebook, Instagram, YouTube and X by the Delhi police. They have been asked to remove incorrect and misleading information and video posts circulated in connection with the Delhi violence. A vast number of deep fake videos, fake posts aimed at worsening the atmosphere and misinformation regarding the protests were posted and shared from various handles across these social media platforms. My colleague Himanshu Mishra is now joining us with more details on this. Himanshu, aur kya jankari mil rahi hai is notice ke bare mein jo ki char sabse bade social media platforms ko diya gaya hai Delhi violence ke ko nazar mein rakhte hue?
1: बिल्कुल, देखिए पुलिस ने एक्चुअली एक पूरी टीम थी जो वो लगातार इन नजर बना के रखी हुई थी और उसके बाद पता लगा कि एक नहीं अनेक वीडियोस बारी बारी से बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से शेयर किए जा रहे हैं, उसको बार बार उसको लाइक किया जा रहा है, उस पर कमेंट्स आ रहे हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म से जिसमें डीप फेक वीडियोज भी थे। डीप फेक वीडियोज के अलावा कुछ ऐसे वीडियोज जिनके साथ छेड़छाड़ की गई थी, पुराने वीडियोज थे, उसको जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से जोड़ करके उसको शेयर किया गया, जानकारियां जो गलत थी उनको शेयर किया गया और ये लगातार बार बार हो रहा था। जिसके बाद पुलिस ने जब लंबा चौड़ा जब लिस्ट बनाया तो पता चला कि जितने भी मेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, सभी पर इस तरीके से फेक वीडियोस लोगों ने शेयर की है और शेयर करने वालों में कुछ न्यूज पोर्टल थे, इसके अलावा कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर्स थे जिन्होंने बिना वेरीफाई किए या जानबूझकर इन वीडियोस को शेयर किया। अब पुलिस ने नोटिस जारी किया है ताकि वहां से जो जवाब आएगा उसके बाद पुलिस आगे इस मामले में कार्रवाई करेगी। बेहद इसमें संभावना लग रही है कि जिन लोगों ने इन वीडियोस को शेयर किया, चाहे वो न्यूज पोर्टल से जुड़े लोग हो, चाहे इंडिविजुअल हो, इन्फ्लुएंसर्स हो, उन सभी को भी बाद में जब जवाब आ जाएगा तो उन सबको नोटिस भेज करके उनसे भी इस मामले में जानकारी ली जाएगी, पूछताछ की जाएगी कि किस आधार पर ये वीडियो उन्होंने शेयर किया, ये वीडियो उन्हें कहाँ से मिला, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन वीडियोस को कहां पर बनाया गया। और उद्देश्य तो क्लियर है कि जाहिर तौर पर कि पूरा माहौल खराब करना था जो जंतर मंतर पर 20 जुलाई के दिन इतनी जो हिंसा हुई उसमें और उसको भड़काने की साजिश थी। जी
0: जी Himanshu, हमारे साथ बने रहिए। सो द डेली कॉप्स हैव सेंट नोटिसेस टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, द फोर बिगेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स व्हिच इंक्लूड्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स एंड यूट्यूब। एंड दिस केस इज रिगार्डिंग द डेली वायलेंस ड्यूरिंग द सीजेपी लेड प्रोटेस्ट। नाउ द डेली पुलिस हैव सेंट नोटिसेस टू दीज प्लेटफॉर्म सेइंग दैट फॉल्स नैरेटिव्स एंड कॉन्टेंट intended to disrupt the atmosphere in the country regarding the Delhi violence were spread on these four social media platforms. And the Delhi cops have also urged these platforms to remove these fake content spreading misinformation. They have been asked to remove incorrect and misleading information and video posts circulated in connection with the Delhi violence. A vast number of deep fake videos, fake posts aimed at worsening the atmosphere and creating tensions and misinformation regarding the protests were posted and shared from various handles across these social media platforms, and many social media news portals were also involved in this. Now, the IFSO unit of the Delhi police has issued notices to Facebook, Instagram, X and YouTube, directing them to remove the posts, the videos and misinformation originating from these handles. My colleague Himanshu Mishra continues to stay with us. Himanshu, क्या ये एक्शन सिर्फ एआई वीडियोस, डीप फेक वीडियोस, इनके खिलाफ लिया जाएगा या फिर अब इन चारों प्लेटफॉर्म्स को ये भी फिगर आउट करना होगा कि क्या कुछ फेक न्यूज फैलाई जा रही थी कई पोर्टल्स के थ्रू एंड उनको भी रिमूव करना होगा?
1: देखिए, रिमूव बिल्कुल रिमूव करना होगा। ये नोटिस में क्लियर है कि जितने भी फेक वीडियोस हैं, जितने भी वायरल वीडियोस हैं जो बिना किसी तथ्य के आधार पर उनको शेयर किया गया, उन सबको रिमूव किया जाए। आप देखिए, जैसे अचानक से एक वीडियो सामने आता है जिसमें एक दिल्ली पुलिस के सीनियर आईपीएस ऑफिसर अपने रेजिग्नेशन की बात कह रहा है कि मैं रिजाइन कर रहा हूं, और ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो अभी आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे नजर आ जाएगा। जबकि ये सच थी कि जब पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे 480 सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल मिली थी जिनको ब्लॉक करवाया गया था, और ये बात क्लियर थी कि किस तरीके से पाकिस्तान में बैठकर कुछ लोग जंतर मंतर के हालात को नजर रखे हुए और उसमें फेक वीडियोस के जरिए हालात खराब करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसको लेकर के जो उस आईपीएस ऑफिसर की बात थी उसमें डीप फेक की मदद से पूरा सेंटेंस चेंज किया गया था। तो इस तरीके के एक नहीं कई वीडियो सामने आए हैं जिनको पुलिस की जो साइबर यूनिट है दिल्ली पुलिस की, वो लगातार उनको ट्रैक डाउन कर रही है, और ट्रैक डाउन करने के बाद बकायदा एक उनकी लिस्ट बनाई गई उन तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की, उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट बनाई गई जहां पे ये अवेलेबल है, और भेजा गया है कि इनको रिमूव किया जाए वहां से।
0: जी हिमांशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। सो बिग एक्शन बाय द दिल्ली कॉप्स हु हैव इशूड नोटिसेस टू द फोर बिगेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग एक्स, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, urging them to delete all the fake news and misinformation that was spread regarding the Delhi violence and regarding the CJP-led protests on these platforms, and also the deep fake and AI videos that were posted on them. And some more news coming in. Today will be the day two of the showdown over the exam reforms bill in the Lok Sabha. The debate will be resuming at 12 noon today, and Leader of Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, will also be speaking at around 12:30 p.m. today. So the debate will continue today. Lok Sabha is likely to pass the bill today, and the bill will then move to the Rajya Sabha after Lok Sabha nod. So the discussion went on for over 9 hours yesterday in the Lok Sabha, and it will be continuing even today. And in fact, the Leader of Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, will also be speaking today at around 12:30 p.m. The discussion will begin at 12 noon, and he's likely to speak at 12:30 p.m. And in fact, the Lok Sabha is likely to pass the bill today, later in the day, and then the bill will move to the Rajya Sabha, and after it is passed in the Lok Sabha, and then the discussion will continue in the Rajya Sabha. So remember, yesterday the opposition mounted attack on the government while the discussion was underway. Although the opposition raised certain issues which were not a part of this bill, they were mounting attack on the police brutality and a lot of other issues on the government. In fact, my colleague Amit Bhardwaj is now joining with more details on this. Amit, what all can be expected in the parliament today? It was a fiery session yesterday, and today the Leader of Opposition will also be speaking.
2: Anjali, the template for the proceedings of day two of anti-leak bill was set yesterday itself, and you had leaders such as Gaurav Gogoi, Priyanka Gandhi Vadra, Akhilesh Yadav targeting the government over a trend that they want to, a narrative of trend of paper leaks they want to set, as well as the lathi charge and the police action against the protesters and students on July 20th in the national capital, and followed by what happened in the country in several states, BJP-ruled states. So that template is set. Rahul Gandhi will obviously come and speak about as to how, you know, the Congress party has been, in the past week, you must have heard this so many times, that in the last 10 years, there have been 152 paper leaks, zero convictions. We do not know what the source of that data, but Congress has been citing that particular number. So Rahul Gandhi will obviously want to again focus on this narrative itself, that paper leaks has become a feature of this government. Number two, that there have been no convictions. And number three, as to how the police lathi charged students, the action of the Rapid Action Force, what happened in many of the states, all of that will be part of Rahul Gandhi's speech. Having said that, the Treasury benches will also want its best speaker to counter Rahul Gandhi, and That's what we are hoping that, because yesterday as well, we saw that after Priyanka Gandhi Vadra's speech, a lot of better speakers from the Bharatiya Janata Party actually came up to counter PGV's arguments. And today, similar expectation is right there for Lok Sabha. Once this bill is passed, it will go to the upper house, that is the Rajya Sabha, and will be taken up tomorrow. And could be you know, heading towards passage on Friday. Anjali.
0: All right, Amit, thank you for those details. We'll keep coming back to you for more updates on the story. So after a stormy day one of discussion on the Public Examination Amendment Bill 2026, it is time for round two. The debate resumes in the Lok Sabha at noon today, with the voting on bill expected later in the day. Leader of the opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, is expected to speak at 12:30 p.m., setting the stage for another politically charged day. The discussion on the legislation went on for 9 hours yesterday, with the government pitching it as a tough law to crack down on paper leak rackets, organised cheating and exam fraud. The opposition repeatedly targeted the government over the police action during the student protests. Priyanka Gandhi Vadra questioned the use of force, asking whether the protesters were terrorists. Congress MP Gaurav Gogoi raised the use of pellet guns, while Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav likened the police crackdown to scenes reminiscent of the emergency. Now, the centre hit back sharply. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju accused the opposition of playing politics, saying that all of their speakers chose to attack the government instead of debating the provisions of the bill.
3: परसों शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया और कल यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं।
4: हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। मैं इसमें राजोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए।
3: सबसे बड़ी चोरी तब हुई जब देश के नौजवानों के भविष्य, उनके सपने चुराए गए। भविष्य की चोरी, सपने की चोरी, किसी भी चोरी से कहीं बड़ी होती है महोदय। देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए?
5: इस पेपर लीक की बीमारी का इलाज भी हम करेंगे, मुकम्मल करेंगे, क्योंकि हर मर्ज की दवा हमें मोदी सरकार में ही मिली है, और इसमें भी हम इसका निवारण करने जा रहे हैं, इलाज करने जा रहे हैं। आप देखिए, इस देश में आतंकवाद और नक्सलवाद ने दशकों तक हमें बहुत जुल्म दिए, बहुत जख्म दिए, और इन गहरे जख्मों से निजात दिलाने का काम भी मोदी सरकार ने किया। आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से हमने ही खत्म किया है, और पेपर लीक्स की समस्या को भी जड़ से खत्म करने का काम करेंगे।
6: उनको बिल पे अपने आप को फोकस करना चाहिए। ये जो शिक्षा में सुधार का विषय है, इसमें जो उन्होंने या और भी कई लोगों ने इसको पॉलिटिसाइज किया, शिक्षा के सुधार का विषय में बात कर रहे हैं ना, ये जो बिल है, और स्पीकर साहब ने कहा भी है कि भाई बिल पे फोकस करिए।
7: हमने 2 बजे से डिबेट शुरू की है, ये बिल बड़ा गंभीर विषय के ऊपर है, लेकिन विपक्ष के इतने माननीय सांसदों ने इस विषय पे चर्चा की, एक भी वक्ता अभी तक बिल की गंभीरता पे, बिल के विषय पर एक शब्द नहीं बोला। सबके सब पूरी तरीके से विषयहीन है। मुझे पता नहीं बिल पढ़ा भी है कि नहीं, बिल का विषय समझते भी है कि नहीं। एक भी वक्ता ने बिल के ऊपर एक शब्द नहीं बोला, और मुझे लगता है कि इन्होंने बिल पढ़ना चाहिए। बिल कैसे युवा युवतियों के लिए, उनके भविष्य के लिए नए अच्छे प्रावधान लाए, सख्त कार्रवाई करने के प्रावधान, जिससे आगे पेपर लीक को रोका जा सके, उसके ऊपर एक भी वक्ता के पास एक शब्द नहीं है बोलने।
8: अब इस बिल में एक चीज की कमी है मैडम, जो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जब कभी पेपर लीक होगा तो उसमें बिल में लिखा जाना चाहिए कि लाठीचार्ज होना चाहिए जहां कहीं नौजवान मिले, और इस बिल में यह भी होना चाहिए कि वजीर आजम फौरन अपना सेल्फ वीडियो बनाकर डाल दें। मैडम मैं इजहार यगानगी के लिए खड़ा हूं नौजवानों के लिए जो आज पूरी उम्मीद खो चुके हैं तालीम के ताल्लुक से, जो उम्मीद खो चुके हैं नौकरी के ताल्लुक से, जो ट्रेनिंग के ताल्लुक से उम्मीद खो चुके हैं, मगर वो इसलिए अपनी उम्मीद को खो चुके हैं क्योंकि ये नाहल और नाखलक एक हुकूमत है जो सिर्फ उनको दो नौकरी दे सकती है, या तो तुम पकौड़ा बनाओ या तुम किसी रक्षा दल और सेना का हिस्सा बन जाओ। मैं एकजहती के लिए खड़ा हूँ उन नौजवानों के लिए जो जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, मुसीबत और तकलीफ में हैं पेपर लीक की वजह से।
9: जो हम लोगों को जानकारी में मिल रहा है, अध्यक्ष महोदय सरकार हर विषय पे स्वीकार किया है, लेकिन पता नहीं अध्यक्ष महोदय ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सदन में उन आश्वासनों को क्यों नहीं रख रही है सरकार जो सहमति बनी है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने देखा कि जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने, एक प्रधान जी को हटा करके प्रधान जी प्रधानमंत्री बचा लिया आपने।
0: Has been attacking the opposition, claiming that the opposition has been shifting the goalpost. Let's understand why the government is saying so. So the Congress party is demanding the Home Minister's statement on use of force. Remember, earlier the entire opposition was saying that once Dharmendra Pradhan resigns as the Union Education Minister, only then we will participate in the discussion over the bill. But that was also delayed because there were several demands that were again raised by these parties, out of which Congress was demanding that Home Minister Amit Shah must issue a statement on the use of force against the student protesters. NCP Sharad Pawar faction was demanding that they want the anti-paper leak bill sent to the JPC first and then a discussion can happen. The RJD is also seeking a discussion on the police action similar to what the Congress is demanding. So these are the demands which were raised by the Congress, by the opposition parties, after which the government has been claiming that this is wrong. The opposition is now shifting the goalpost. With that, we're now slipping into a very short break, but do stay with us, as on the other side, we'll get you more on Priyanka Gandhi's speech that has sparked uproar. Anurag Thakur slammed her for her Gaumutra taunt at the IIT Madras director, and he claimed that this is an insult to the Indian culture. Stay with us for more on this on the other side.
3: इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी?
10: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
11: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
12: Hey, sports fans, TuneIn is bringing you live games, nonstop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
13: Swing and a foul out of play off to the left.
12: Big 12 Radio.
14: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
12: Talk Sport.
15: Yes, Talk Sport listeners, when we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
12: And more. Search sports to find the stations covering your teams.

0: नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ,
1: अरे बात
0: फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? सच सच है,
2: प्रोफेसर वी कामाकोटी जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की, कौन है प्रोफेसर वी कामाकोटी जी? हमारे फॉर्मर चेयरमैन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के, आरएसएस से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना चाहिए इस बात का कि आरएसएस के, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, देश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे अगर आप आरएसएस का हो जाएंगे तो। आईआईटी मद्रास की फैकल्टी थे 2001 से 2022 तक, पीएचडी डिग्री उनकी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है, आपका पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी। मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी कुछ अच्छा कहेंगी, उन्हें कहा ये गौमूत्र के विशेषज्ञ हैं। तो गांधी परिवार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो भारत की परंपराओं को ना तो समझते हैं और ना ही समझने का प्रयास करते हैं, बल्कि उनका उपहास उड़ाते हैं। भाई बहन एक जैसे लगते हैं, एक ही वनस्पति पर हैं, जिसके इस्तेमाल के साथ दिमाग कई बार सही तरह से फंक्शन नहीं करता है, और हो सकता है गौमूत्र इसको क्योर करे, डॉक्टर साहब हो सकता है एक ही गौमूत्र उनको क्योर करे।
3: Let us now take a look at what did Professor Kamakoti say on Gaumutra back in 2025. So he said that Gaumutra has medicinal qualities, ascetics got better after consuming the cow urine, and that Gaumutra helps with irritable bowel syndrome as well. So this was the statement which was made by him, after which there was an entire controversy that had erupted over these remarks which were made by him, and this is exactly what Priyanka Gandhi Vadra was referring to while speaking in the Lok Sabha yesterday. Now, let's also understand Kamakoti's distinguished legacy. So, he's the director of IIT Madras since January 2022. He's also an expert in computer architecture and information security. He heads the IIT Madras microprocessor development program. In fact, he also leads the Information Security Education and Awareness Program. He's a member of National Security Advisory Board, and he was the former chairman of government's Artificial Intelligence Task Force. And this is exactly what the government said in response to Priyanka Gandhi, that we need to see his accomplishments, his talent, how he has done so much in the field of artificial intelligence. And those were the basis of choosing him as a part of the NTA Reform Task Panel Force. In fact, the Congress Party also attacked the new Education Minister Prahlad Joshi in the Parliament yesterday, after which BJP hit back, calling it the emergency mindset of the Congress Party. BJP MP Nishikant Dubey said that there's no dignity shown by Congress in the Parliament. Priyanka Gandhi stooped low inside the Lok Sabha. Congress has lack of respect for senior MPs. This is what Nishikant Dubey from the BJP said. And he also said that Congress Party's emergency mindset is on display. So Priyanka Gandhi's attack on the new education minister was expunged by the speaker. In fact, not just Priyanka Gandhi, but also Rahul Gandhi called Prahlad Joshi a filthy man.
4: जो इमरजेंसी की मानसिकता है कांग्रेस की, वो दिखाई दी, और ये आप लोगों के लिए विचारणीय विषय है, हमारे लिए नहीं है। जब सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, तो जो बिल है वो बिल एक साधारण सांसद के नाते प्रधानमंत्री के मुंह पर जो है बिल फाड़कर फेंक दिया। तो जब प्रधानमंत्री पद की गरिमा, जो उनके प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, जो उनसे उम्र में कितने बड़े होंगे, पिताजी से भी बड़े होंगे, यदि पिताजी राजीव जी जिंदा होते तो शायद उनसे बड़े थे, तो जब उनके प्रति कोई गरिमा सम्मान नहीं है तो राहुल जी के बारे में क्या बोलना। तो इसीलिए मुझे लगता है कि गांधी फैमिली को ट्यूशन की आवश्यकता है, भारत की सभ्यता और संस्कृति समझने की आवश्यकता है।

देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है, हाँ कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। जवाब देंगे, किसने ऑर्डर दिया, किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए, किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूं अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया, गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश के माता पिता पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछ रहे हैं, पूरा देश आज ये पूछ रहा है।

0: Gandhi to stick to the anti-paper leak bill during the debate in the Lok Sabha. Yesterday, almost all opposition leaders spoke about this issue. They were raising issues and concerns with regards to the crackdown against protesting students in Delhi and also in Bihar.
1: बिल्कुल बिल पे नहीं बोले और राजनीति कर रहे थे. आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले. इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो रहे और वो इधर उधर का बात करके भटकाने के लिए और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं. इतना अच्छा बिल लाया है छात्रों का डिमांड से और प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा एक फैसला लेने से अब एक नया कॉन्फिडेंस आया है छात्रों में. और एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी.
0: So day two of the crucial debate in the Lok Sabha today is when the leader of opposition will be speaking and all eyes will be on his speech. From the government side, it will be the Minister of State in the Prime Minister's office, Dr. Jitendra Singh, who tabled this bill. He is likely to speak towards the end. Then there are over 90 amendments which have been moved by various MPs that will be taken up for voting. And then the final passage of this bill, which is likely to happen roughly around 2:30 to 3 p.m. So all eyes will be on that. Let's listen in to Kiran Rijiju again.
1: बिल्कुल बिल पे नहीं बोले और राजनीति कर रहे थे. आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले. इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो रहे है और वो इधर उधर का बात करके भटकाने के लिए और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं. इतना अच्छा बिल लाया है छात्रों का डिमांड से और प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा एक फैसला लेने से अब एक नया कॉन्फिडेंस आया है छात्रों में. और एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी.
0: On that note, we are slipping into a short break. Lots more news and updates on the other side. Stay with us.

0: And it's protest, process, protest playing out in front of the Makar Dwar of Parliament as opposition MPs and NDA MPs stage protests. Here are visuals of Samajwadi Party MPs staging protest. The NDA MPs are also staging protest against the Aam Aadmi Party. This after Punjab paper leak. Now BJP has raised that issue. They are saying that there has been incident of leak in another India block rule state, that is Jharkhand. Protest by Jharkhand BJP MPs are taking place. This is protest versus counter protest happening at Makar Dwar. Samajwadi Party MPs protesting. Another set of protests happening by BJP PMP is from Jharkhand. Nishikant Dubey there protesting as well, along with others. This is with regards to paper leak which has happened in Jharkhand. Rahul Gautam is joining us live. So Rahul, the BJP now also readying itself to counter the opposition with regards to paper leaks which have happened in India block rule states, be it Jharkhand or in Punjab.
1: Well, the NDA and the government, they are regaining their strength and giving it back to opposition camp and naming states like Punjab and Jharkhand, which are essentially opposition rule states, saying that that paper leaks have happened in these respective states, and therefore the state governments, which are essentially opposition governments, should take action against the education ministers and also against the entire paper conducting mechanism. See, we have to understand that as far as NDA is concerned, obviously, they're pushing it back, given the fact that around this afternoon, around 12:30, Rahul Gandhi will be speaking on paper leak, on Dharmendra Pradhan and on other issues, as the discussion will go on anti-paper leak amendment bill, which has been brought in by the government. So clearly, in a way, both the groups, that's treasury benches and opposition benches, they are raising the tempo, creating a hype about this issue. Expect that opposition would be waiting for Rahul Gandhi to come and obviously attack government on this issue. He would obviously be coming with some numbers, because we have seen earlier also when he held press conference on
0: your
1: this
0: thoughts,
1: issue.
0: Because we are getting across to Parliament where both the houses have reconvened.
2: Harjinder Kaur, Tata Sri Gulveer Singh, Rajat Patak Jeetkar, इस प्रतियोगिता में भारत का गौरव बढ़ाया है। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। प्रश्नकाल सच्चिदानंद आर मैंने पहले भी कहा माननीय सदस्य, फिर आपसे आग्रह करता हूं, प्रश्नकाल के अंदर प्रश्नकाल को कभी बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का होता है, सरकार की जवाबदेही होती है। कई माननीय सदस्य मेरे पास आकर आग्रह किया है कि हमारा बहुत कठिनाइयों से प्रश्न आया है और कुछ माननीय सदस्य जानबूझकर प्रश्न को बाधित करते हैं। मैंने आपको हर विषय, हर मुद्दे पर पर्याप्त समय दिया है, लेकिन इस तरीके से आप सदस्यों के प्रश्नकाल के समय बाधित करो, नियोजित तरीके सदन को व्यवधान कैदा करो, ये उचित नहीं है। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि प्लीज आप अपनी अपनी सीट पर बैठिए, प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए। प्लीज नौ प्लीज बैठिए। इकरा चौधरी जी मेरे पास आए, प्रश्नकाल चलने दो। सच्चिदानंद जी मेरे पास आए, कई माननीय सदस्य मेरे पास आए। आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध कैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: लोकसभा adjourned till 12 noon. That's when the discussion on the anti-paper leak will happen. Let me go back to Rahul Gautam, who continues to be with us. The government, before the session began, be it Parliamentary Affairs Minister or these protests, are questioning whether Rahul Gandhi will speak about paper leak happening in India block rule states as well. You know, be it JMM ruled Jharkhand or Aam Aadmi Party ruled, you know, Punjab.
1: Well, you know, as far as opposition is concerned, Rahul Gandhi has been maintaining or insisting on the fact that Dharmendra Pradhan has allegedly become a symbol of corruption or destruction of education system. So therefore, the concerted effort of the entire opposition rank was to remove Dharmendra Pradhan. As far as paper leaks in opposition rule states, namely Punjab and Jharkhand, is concerned, we've been speaking with Congress sources. They are saying they are junior partner in Jharkhand, and the buck stops with JMM. Therefore, it is imperative upon JMM to explain if really any paper leaks have happened. As far as Punjab is concerned, Bhagwant Mann, the Chief Minister of Punjab, has categorically rejected that no paper has leaked in his state, and therefore no minister will be resigning. So this has been the stance and the stand of opposition. But as we just heard, the opposition members were raising and chanting slogans that Home Minister Amit Shah should come inside Parliament and make a statement on what really unfolded on last Monday. Now, this has been a demand, a constant demand of opposition, which has been creating repeated disruptions in the House, because the government has made it already clear that Dr. Jitendra Singh would be concluding on the discussion as far as NDA is concerned. However, the opposition benches have been insisting that Union Home Minister should come and should give a statement as who really authorized the usage of pellet guns, and how there were shots of AK-47 fired upon agitating students in Sivan, Bihar. So clearly, the opposition is trying to keep up the momentum as far as this issue is concerned by shifting goalposts time and again. First, it was Dharmendra Pradhan. Now, it is Union Minister Amit Shah. Expect that Rahul Gandhi might also repeat his demand that Prime Minister should also give an apology. This is a part of a larger strategy to not give any sort of escape route to the government, which they believe is on a back foot at this point of time.
0: Okay, so who are going to speak from the India bloc? Opposition MPs, who all are left to speak today, and how long will this discussion happen? Because the discussion, which began at 2 p.m. yesterday, continued almost till 10:30.
1: Well, the discussion is going to begin around 12 noon, and expect that Rahul Gandhi will be speaking between 12 to 2 p.m. This is what we've been told. Apart from Rahul Gandhi, we've been informed that Shashi Tharoor, Dipendra Hooda, K.C. Venugopal can also speak on this issue. The idea is to create pressure on the government, seek accountability. And in fact, we've been learning from our sources that all these speakers were going to be speaking on behalf of Congress, on behalf of opposition. They would not just be seeking accountability. They would also be asking some tough questions about student violence, about the entire NTA mechanism. Now, that's a part of a larger strategy, and we would be seeing a sync between various political parties. Maria, this issue has become a rallying point for the entire opposition India bloc, and that's why we are seeing a sort of a coordination between those parties as well who are essentially not part of India bloc, for example, Aam Aadmi Party and DMK, because they all believe that government is on a back foot, and it is time for them to push it further to the wall. As far as government is concerned, obviously, we all know that Dr. Jitendra Singh would be concluding the discussion. Expect that he would be coming out with historical facts or things that have happened in during previous Congress governments, UPA governments, just to counter the attacks that have been launched by Congress party. So it's going to be a fiery day as far as Lok Sabha is concerned. Expect that we're going to see some heated arguments between opposition and treasury benches.
0: Okay, and before the session began, Kiran Rijiju, Parliamentary Affairs Minister, spoke out, and he said that Rahul Gandhi must stick to the anti-paper leak. issue in Parliament. Let's listen in to what he said, and then we'll be playing out the best of speeches which played out in the Lok Sabha yesterday.
3: बिल्कुल बिल पे नहीं बोले और राजनीति कर रहे थे. आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले. इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो रहे है और वो इधर उधर का बात करके भटकाने के लिए और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं. इतना अच्छा बिल लाया है छात्रों का डिमांड से और प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा एक फैसला लेने से अब एक नया कॉन्फिडेंस आया है छात्रों में. और एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी.
4: परसों शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया और कल यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं.
5: हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की कैरेक्टर एसेसिनेशन है एक तरीके से संसद और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं. मैं इसमें राजोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए.
6: The earlier bill and the amendment today are in a way reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And at the same time, it is also a reiteration of Prime Minister Modi ji's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the children of Mother India. And therefore, this bill can be described in a way as a milestone legislation.
7: सरकार झुकी और स्वीकार किया उन्होंने. जो करोड़ों नौजवान जो मांग कर रहे थे कि सबसे पहले जो मंत्री जी हैं वो इस्तीफा दें, माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने. एक प्रधान जी को हटा करके प्रधान जी प्रधानमंत्री बचा लिया आपने. सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए सरकार भी झुकती है. और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है.
4: सबसे बड़ी चोरी तब हुई जब देश के नौजवानों के भविष्य उनके सपने चुराए गए. भविष्य की चोरी, सपने की चोरी.
8: Activism should face this. Even I have faced not once, many times. what you tell me. You don't want to speak, then I'm calling the other member. Sriman Madan Rathorji. Sriman Madan Rathorji.
9: The CPM issue.
8: सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से ऐसा विषय उठा रहा हूँ जिसका सामना सबको करना पड़ रहा है, वो है कि जो ट्रैफिक व्यवस्था देश में सुधारने की जरूरत है, इस विषय पर मैं ये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हम अपना समय मैनेजमेंट करके निकलते हैं, लेकिन जो ट्रैफिक की समस्या का सामना जब करना पड़ता है तो यथा समय पहुंच नहीं पाते। कई बार ऐसी भी स्थिति बनती है कि जब समय अधिक लेकर के निकलते हैं और आसानी से जल्दी पहुंच जाते हैं तो वहां पर भी हमारा समय खराब होता है। इसके लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अभी हमारे जयपुर में मेट्रो से फेज सेकंड का उन्होंने शिलान्यास किया, तो इसके लिए निश्चित रूप से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, राजस्थान के कोटा में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जो भी चौराहे है वहां पर या तो अंडरपास बना दिया या ओवरब्रिज बना दिया ताकि कहीं पर भी सिग्नल पर रुकने की जरूरत नहीं पड़े, इस प्रकार की व्यवस्था राजस्थान सरकार ने की है। मैं इसके लिए राजस्थान सरकार को और केंद्र में हमारे केंद्रीय जल परिवहन मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। सभापति महोदय, कई देशों में हमने देखा है कि वहां पर लोग मेट्रो से सफर करते हैं और बड़े बड़े अधिकारी भी, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो या कोई मंत्री हो, वो भी मेट्रो से सफर करके और वहां उतर करके साइकिल लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। तो यह व्यवस्था यदि हो गई तो निश्चित रूप से इसका लाभ स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा, प्रदूषण का समाधान भी होगा। यह व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान में होनी चाहिए। अनेक ऐसे जो चौराहे हैं वहां पर अंडरपास बने, ओवरब्रिज बने ताकि जो ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो सके। अनेक स्थानों पर अव्यवस्थित पार्किंग हो जाती है, गाड़ियां खड़ी कर देते हैं जिससे कि मार्ग सुलभ नहीं होता। ऐसे पार्किंग के लिए भी कुछ स्थान चिन्हित करने चाहिए ताकि वहां पर पार्किंग हो सके, वाहनों की पार्किंग हो सके, लोगों को आवागमन में असुविधा नहीं हो, समय बच सके, इसके लिए ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस के बड़े नेता ये हंगामा कर रहे हैं, इन्होंने ट्रैफिक सुधार में कोई व्यवस्था नहीं की। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार रही है, देश में भी इनकी व्यवस्था रही है, लेकिन इन्होंने कोई सुधार की दिशा में कोई काम नहीं किया और आज वो हम भुगत रहे हैं। यदि कांग्रेस के नेता पहले जो स्वीकृत था उस प्रकार से यदि अंडरब्रिज ओवरब्रिज बना देते तो यह समस्या नहीं होती।
10: दिग्विजय सिंह जी, नाउ श्रीमान दिग्विजय सिंह जी।
11: थैंक यू सर। और सरकारी विद्यालयों के खेल मैदानों के संरक्षण एवं एक विद्यालय एक खेल मैदान अभियान की आवश्यकता। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश सहित देश के सरकारी विद्यालयों में खेल मैदानों के तेजी से घटते क्षेत्रफल और उनके संरक्षण की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया फिट इंडिया मूवमेंट तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से खेलों को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग बनाया गया है। सरकार का उद्देश्य स्वस्थ अनुशासित और आत्मनिर्भर युवा शक्ति का निर्माण करना है, किंतु अनेक सरकारी विद्यालयों में
4: एक वो मैंगलोर में जो पिटाई हुई थी लड़कियों की पब में, उस आदमी को बीजेपी में किसने ज्वाइन कराया? प्रहलाद जोशी जी ने। उसके बाद 5 घंटे बाद या जो भी है उनको निकाला, लेकिन ज्वाइन कराने की फोटो भी है उनकी। तो उनका एक इंसिडेंट नहीं है ना, उनकी एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति, उनकी एटीट्यूड है।
9: कार्रवाई से हटा दिया गया
4: क्या? कौन सी कार्रवाई? लोकसभा की
12: पार्लियामेंट
4: में मैंने तो सच ही बोला है
12: मैम। लेकिन जो एक्सपंज किया गया क्या उस इशू पे आप स्पीकर से मिलेंगे, क्योंकि आपने ऑथेंटिकेट किया मीडिया रिपोर्ट्स आपने दिए, फिर भी एक्सपंज कर दिया गया, क्या इस इशू को आप रेज करेंगे स्पीकर?
4: हाँ रेज करूंगी।
0: Priyanka Gandhi Vadra there, what she said on the floor of the House, now reiterating outside that there are questions being asked on the credentials of the new education minister. I'm going to cut across to the Rajya Sabha.
13: लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, माननीय सभापति जी, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं आपके माध्यम से नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। ये विषय देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी रिक्त अनुपयोगी भूमि को सामुदायिक सौर ऊर्जा परियोजनाओं को मैं स्थापित करना
14: है।
13: हजारों एकड़ भूमि रिक्त की संभावना रहती है। दूसरी ओर देश ऊर्जा सुरक्षा, हरित ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन में कमी और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यदि रिक्त सरकारी भूमियों का उपयोग सामुदायिक सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किया जाए तो ये भूमि राष्ट्र निर्माण में का माध्यम बन सकती है। महोदय, सोलर पार्क और पीएम कुसुम जैसी योजनाएं संचालित हैं, लेकिन सोलर टाउन और शहरी कम्युनिटी सोलर मॉडल के लिए कोई समर्पित योजना नहीं है। ये गंभीर नीतिगत कमी है। इसके कारण आज करोड़ों लोग जो बहुमंजिली इमारतों में रह रहे हैं, किराए के मकान।
15: शर्मनाक है कि एक नेशनल पार्टी के ऑफिस में हम घुस के अगर सीबीआई के लोग घुस के जाते हैं, उसको अरेस्ट करने की बात करते हैं। डेमोक्रेसी इज नॉट सेफ, पीपल आर नॉट सेफ, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, पीपल हु हैव गॉन देयर अनऑथराइज्ड, दे शुड बी पनिश्ड बाय द ऑफिस। हु आर दे? हु आर दे?
14: यू आस्क योर पीपल टू सिट इन
15: देयर? आई एम आस्किंग who asked them to go there?
14: Now they have the leader of the house. That now the leader of the house will reply.
15: That is not the point.
14: Sir, you have raised your voice. Let the government respond to it.
13: Sir,
14: let the government to respond to it. He has raised, you have raised.
13: Sir,
14: let the government respond to it. Please take your seat. Let him respond. Now,
13: sir,
14: now the leader of the house, whatever my friend, John Bittas has said, this is a very normal law and order situation that we have to understand. I have been a student activist. I have been arrested many times from the classroom in emergency days when Congress party was ruling. I have been arrested. Mr. John Bittas, it is a normal situation. A student has to
13: go back and
14: take law and order in their own hand. The police have to act accordingly, and the police has acted accordingly for those cases. They are trying to sensationalize. It is a normal law and order activity which the police undertakes, and any student activist who wants to do activism should face this. Even I have faced not once, many times. When there was emergency, I was arrested from the classroom, not once, but twice. So this is a very normal situation, sir.
0: Debate continuing, rather heated argument playing out between the Leader of Opposition and the Leader of the House in the Rajya Sabha. We'll continue to go back to the Rajya Sabha as there was a strong face-off which happened between JP Nadda and Mallikarjun Kharge. Mallikarjun Kharge saying that people are not safe. BJP has made democracy unsafe. JP Nadda, on his part, says that the opposition is politicizing the police crackdown. An issue of police crackdown likely to be raised again in the Lok Sabha when Rahul Gandhi speaks. How many speakers are left from the opposition side, Rahul?
1: Well, we saw Mallikarjun Kharge leading the charge in the Rajya Sabha. In fact, he alleged that the democracy is unsafe now and government is siding with all those who actually assaulted students on last Monday. Clearly, the opposition is playing the same story in both the houses. You have Priyanka Gandhi, Rahul Gandhi leading the charge in Lok Sabha, and now Mallikarjun Kharge, leader of opposition Rajya Sabha, also saying that the government is not doing enough to give respite to the agitating students. There are still FIRs pending against them. No action has been taken against all those police officials who they believe inflicted brutalities upon students. So clearly, and we also heard leader of the house, Mr. JP Nadda, who said that everything was done as per the law. The police reacted as per the situation. In fact, he said that it is opposition which is trying to gain brownie points over the government by politicizing the entire issue and by also making false narratives. So as far as Rajya Sabha is concerned, again we are seeing disruption happening, chaos happening. But one thing is very evident here, that unlike Lok Sabha, given the fact that opposition does not have enough numbers, that they can actually adjourn the house. So therefore, there the government is standing firmly and they are holding the fort. But one thing is very important.
0: The bill will be taken up in the Rajya Sabha tomorrow after it is passed by the Lok Sabha today. Over 90 amendments to this bill which have been moved by various MPs. What are the nature of these amendments, the clarity of which will emerge in some time from now? 12:30 is when Rahul Gandhi is likely to speak. The concluding remarks will be given by the Minister of State in the Prime Minister's office, Dr. Jitendra Singh. Will there be some kind of intervention by any of the senior ministers? That is something that we'll wait and see. But the government trying to counter Priyanka Gandhi outside and inside parliament as well, and also saying that Rahul Gandhi must stick to the topic at hand, which is the anti-paper leak. But we have seen that the opposition is using the floor of parliament today to register multiple concerns that they have had outside parliament, which includes also the crackdown against protesting students. I'm going to play out that face-off that happened between Mallikarjun Kharge and Mr. Nadda just few minutes ago in the Rajya Sabha, where JP Nadda, Union Health Minister, who's also the leader of House in the Rajya Sabha, said that he also faced arrest during the emergency. Let's listen in.
15: शर्मनाक है कि एक नेशनल पार्टी के ऑफिस में हम घुस के अगर सीबीआई के लोग घुस के जाते हैं उसको अरेस्ट करने की बात करते हैं. डेमोक्रेसी इज नॉट सेफ, पीपल आर नॉट सेफ. देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, people who have gone there unauthorized, they should be punished. Why they have gone? Who are they? Who ordered them?
14: You ask your people to sit in there.
15: No, I'm asking. Who asked them to go there?
14: Now,
15: who ordered?
14: Now, the Honorable Leader of the House.
15: That
14: now,
15: is not
14: the House will reply.
15: That is not the voice.
14: Sir, you have raised your voice. Let the government respond to it.
16: Sir,
14: let the government to respond to it. He has raised, you have raised.
16: Sir,
14: let the government respond to it. Please take your seat. Please
16: sir,
14: take your seat, let him respond.
16: Now,
14: sir,
16: now the leader of the house, whatever my friend, sir, what my friend John Bittas has said, this is a very normal law and order situation that we have to understand.
14: requested many times from the classroom in emergency days when Congress party was ruling. I have been arrested. Mr. John Bittas, it is a normal situation. A student activist has to face and those who take law and order in their own hand, the police have to act accordingly, and the police has acted accordingly for those cases. It is, they are trying to sensationalize. It is a normal law and order activity which the police undertakes, and any student activist who wants to do activism should face this. Even I have faced not once, many times. When there was emergency, I was arrested from the classroom, not once, but twice. So this is a very normal situation, sir.
0: JP Nadda has defended police action. He has said that the student activists should expect arrests. This is a very normal situation that we have to understand. That's what he said on the floor of the Rajya Sabha. I've been a student activist and I have been arrested from the classroom during the emergency when leaders across the opposition were arrested. I too was arrested. This is a normal law and order situation. The police have to act accordingly. And they acted accordingly. They are trying to sensationalize. This is a normal law and order situation. Those are the words of JP Nadda. Any student activist who wants to do activism should be prepared to face such a situation. Those are the words. His defense coming in at a time when we have seen some sharp reactions come in from Mallikarjun Kharge, who questioned the police crackdown. Mr. Nadda saying, don't politicize police crackdown. When students do activism, when they protest, then these arrests happen. Expect some response also on that coming now from the Congress party, which will continue to put the heat on the government with regards to the crackdown which happened in Delhi. Remember, the developments of the Supreme Court becomes important, because the Supreme Court only yesterday was speaking on, passed some observations with regards to the multiple petitions which were filed with regards to police excesses. The Supreme Court had weighed in and had spoken about the need for an independent probe as an option. Of course, a final order will come only on Monday. But the Supreme Court had also said that all those arrested, the juveniles who were arrested, in fact, those minors who were arrested during the protest must be released. Let me bring in Piyush. So, Piyush, here is JP Nadda saying that the student activists must be ready for arrests.
17: Well, that's right, Maria. In fact, we can see the first official statement coming in from government over the kind of alleged excessive use of forces on students. But JP Nadda, who is the leader of the House in Rajya Sabha, is defending police action. He is now saying student activists should expect arrest. So this is a very normal situation that we have to understand. JP Nadda is saying, he's also adding that he himself has been a student activist and has been arrested multiple times. He added that during the time of emergency, when leaders across the opposition were arrested, he too was arrested, and this is a normal law and order situation. Police have to act according to the situation which happens. JP Nadda is also adding that the government is now trying to deal with the situation. But on the other side, opposition continues to sensationalize this and the kind of situation which has erupted and our new normal, which is certainly a law and order activity which was undertaken by the Delhi police. At the same time, leader of the house is adding about the fact that any student activist who wants to do activism should be prepared to face such action. Why? Because during the time of emergency, he too was picked up from the classroom, not once, but twice. So that's a very big statement.
0: This is not emergency. Piyush, the question is that this is not emergency. Those 18 months, the dark period, the darkest period of Indian democracy, this is not what we are seeing.
17: Well, that's right. But yes, we're talking about the kind of protests which happened where students marched towards the parliament at the time the city law and order discussion had happened and the police had to take action. Deepirada is now saying that this is a very normal situation and we have to understand that that if someone is doing activism, then he or she must be ready to face such actions. Remember, Maria, that against these actions itself, CJP leaders have been demanding government to withdraw all the cases, which according to CJP, all the cases have not been withdrawn and they...
18: आपको क्या करना है, आपको नए जजेस को अपॉइंट करना है, एडिशनल जजेस, शायद नए कोर्ट्स में बनाना पड़ेगा, नए प्रोसिक्यूटर्स को. जब जुडिशियल सिस्टम में कैपेसिटी नहीं है तो ये कोर्ट्स के अनाउंसमेंट करके, प्रधानमंत्री खुद ने किया कि हमें फास्ट कोर्ट ट्रैक कोर्ट्स करेंगे, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को चलने का अनुभव क्या है ये भी देखनी चाहिए.
12: एडवाइस किया है?
18: हाँ, मैंने उसको चिट्ठी लिखा है, उसने एक्नॉलेज भी किया है कि मिला.
19: केरल पुलिस ने कई प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर.
18: देखिए, मुझे तो, मैं तो यहाँ हूँ आप लोगों के साथ, मैं क्या बताऊँ केरला में क्या हो रहा है, मुझसे पूछ लीजिए. मेरे ख्याल में ये और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बारे में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर कुछ हुआ भी है, मेरे ख्याल में इस किस्म की केसेस के खिलाफ हमारी सरकार एक्शन नहीं लेंगे मेरे ख्याल में. लेकिन मुझे अभी मालूम नहीं, माफ कीजिए, मुझे जाना.
12: मिनिस्टर पर भी सवाल उठ रहे हैं जो चयन किया गया.
18: जी जी, नहीं वो तो अलग बात है, आपको पता है प्रियंका जी ने बताया ना क्या हो गया, वो बिल्किस बानू मामले में उन्होंने जो कुछ कहा था ये तो हमें काफी बुरा लगा, क्योंकि जो हुआ उनके खिलाफ बहुत दुखद बात थी, और ऐसे जब हो रहे हैं और आप उनके ये जो उन पर आक्रमण किए उनके लिए आप बोलते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता, बस यही बात बताई. थैंक यू.
20: जो मूल हमारी मांग है इस वक्त कि गृह मंत्री जवाब दे, गृह मंत्री तो उपस्थित भी नहीं है, जवाब कैसे देंगे. तो इसीलिए मुझे लगता है कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री शिक्षा की इस चर्चा पे अपनी जवाबदेही नहीं देना चाहते, स्पष्टीकरण नहीं देना चाहते कि पैलेट गन चलाने का निर्देश किसने दिया, किसने निर्देश दिया पुलिस अफसरों को कि वो लड़कियों पर हाथ उठा सकते हैं. तो ये जो एक बहुत ही नाइंसाफी हुई, इसके खिलाफ आज विरोधी दलों ने कोई प्रश्नकाल में आवाज उठाई, जिसके तहत प्रश्नकाल को अर्जन किया.
21: झारखंड के अंदर युवाओं का जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, TDPL जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्लैकलिस्टेड किया, यहां तक कि JPSC ने ब्लैकलिस्टेड किया, फिर उसी को काम दे दिया गया. पिछले चार सालों में 23, 24, 25, 26 वहां पेपर लीक हुआ. अब आप देखो हद तब हो गई, आप 25 करोड़ दो आप DSP बन जाओगे, आप रेंजर दो 40 लाख रुपए दो रेंजर बन जाओगे, पैसा दो हम आप रिजल्ट जारी करते हैं. ये हिंदुस्तान में कहीं देखने को नहीं मिला. परीक्षा एक बार हो जाए और रिजल्ट 7 बार, उसमें भी सिर्फ 11,000.
0: An NDA MP is in fact staged protest in front of the Makar Dwar, and this was protest largely by the MPs from Jharkhand, BJP MPs from Jharkhand, in which they demanded action and debate with regards to the protests which have happened there. Remember, the BJP had earlier raised the issue of why the education minister in Punjab is not resigning when a paper leak has happened in Punjab as well.
22: Murdabad. Paper leak mein Jharkhand mein CBI jaanch karna hoga.
23: NEET paper leak ke baad ab Punjab aur Jharkhand mein jo paper leak hua us mudde ko BJP ke dwara uthaya ja raha hai. Theek mere piche aap tasveeron mein dekh sakte hain kaise yahan par jo BJP ke sansad hai jo Jharkhand se khaas taur par aate hain wo yahan par maujood hai aur Jharkhand mein jo paper leak hua us mudde ko uthaya ja raha hai. Lekin dusre saath jo बीजेपी झारखंड के सांसद है, बीजेपी झारखंड से जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद है, उनके हाथ में तख्ती है जिस पर लिखा हुआ है कि कांग्रेस और राहुल गांधी में थोड़ी भी शर्म हो तो झारखंड सरकार से वापस समर्थन. साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि झारखंड की कांग्रेस और जेएमएम की सरकार युवाओं के भविष्य का सोचा बंद करो. तो इस वक्त झारखंड बीजेपी के जो सांसद है वो संसद भवन के अंदर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं. देश भर में हमने देखा
0: has now questioned Aam Aadmi Party government over Punjab paper leak cases. In fact, the BJP has cited Chief Minister Bhagwant Mann's 2023 video. The BJP has put out that video saying that Mann had admitted to paper leak. And this is in contradiction to prior chief minister's stand, admitted leak then, why deny it now, is what the BJP is saying. Punjab education minister must quit. And that in the last 4 years of the government of Aam Aadmi Party in Punjab, there have been incidents of multiple paper leaks in Punjab, is what the BJP is saying. So the BJP is now raising questions of paper leaks which have happened in India bloc rule states, be it Aam Aadmi Party led government in Punjab or Hemant Soren led government in Jharkhand. So this is certainly the talking point now, even as Rahul Gandhi is about to speak in the Lok Sabha at 12:30.
2: पंजाब में कल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है टेट का, कल उस पेपर में गड़बड़ी हुई, एक लापरवाही पाई गई, पेपर तो कैंसिल कर ही दिया, आज हमने पेपर सेटिंग करने वाले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सारे गिरफ्तार कर लिए और उनको ऐसी सजा मिलेगी दोबारा जिंदगी में कोई पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं करेगा।
0: And visuals also coming in. That happened, of course, 30-40 minutes ago, with the regard before the parliament reconvened, when Samajwadi Party MPs protested against Chanda Chori. Samajwadi Party MPs protest with donation boxes in parliament. SP MPs protested in front of the Makar Dwars. SP MPs, in fact, said that now the issue is of Chadhava Chori, which has happened in Ayodhya with regards to the Ram Mandir trust probe, which is happening. Here, let's listen in to what Dimple Yadav, member of parliament of the Samajwadi Party, is saying.
3: मैसेज है इस पेटी के साथ आप यहाँ आए?
5: ये सिंबल है जो प्रभु श्री राम के मंदिर में लोगों ने दान दिया और उस दान को जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने लूटा और जो लूटने वाले लुटेरे हैं उनको बचाने का षड्यंत्र हो रहा है। सरेआम वहाँ के निर्माण समिति के जो अध्यक्ष हैं, उनका बयान है कि यहाँ चोरी नहीं डकैती पड़ी है, सारे चंदाओं पे चोरी नहीं डकैती डाली है भाजपा के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने
3: जी। लेकिन क्या आज कांग्रेस के सांसद आपके साथ नहीं दिखाई दे रहे?
5: कांग्रेस के भी साथी आएंगे, इसको कोई आप अदरवाइज ना लें, कांग्रेस के भी साथी इस मुद्दे पर सदन में साथ हैं, यहाँ भी साथ रहेंगे। ये चूंकि आज केवल हमारी पार्टी का अनाउंसमेंट था या कॉल थी, इसलिए केवल समाजवादी पार्टी की,
3: तो माना जाए सर अगले हफ्ते
5: पूरा इंडिया अलायंस
3: को इसी पे घेरने की तैयारी कर रहे हैं?
5: बिल्कुल घेरेंगे, पूरा देश सुनना चाहता है। आगे सनातन के नाम का ठेका लेने वाले ये भाजपा प्रभु श्री राम के नाम पर इतना चंदा चोरी कैसे कर सकती है?
6: SIT जांच से 2 साल पहले भी हुई थी, जहाँ जमीनों में इतने घपले हुए, जो 2-2.5 करोड़ की जमीन थी उसको 16 करोड़ में बेचा गया और एक जमीन और सस्ती थी उसको कम से कम 24-25 करोड़ में बेचा गया। तो 2 साल पहले की SIT का क्या निष्कर्ष निकला आज तक ये सामने आया है? तो ये जो SIT कमेटियां गठित करते हैं ये खाली खाना पूर्ति के लिए करते हैं गठित, जिससे कि लोगों का ध्यान भटक जाए कुछ सालों के लिए और मुद्दा समाप्त हो जाए। जो जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी पूरे जोर शोर से उठाने का कार्य करेगी, काम करेगी, क्योंकि हम विपक्ष में हैं तो हमारा क्या कार्य है? हमारा यही तो कार्य है कि जो बातें हैं, जो हम देख रहे हैं, जो जिस परिस्थितियों से देश आज गुजर रहा है उसको सामने रखने का ही हमारा दायित्व है और इसको हम पूरी तरह से निभाएंगे।
0: Some piece of breaking news coming in now. This is a BJP MLA who has issued death threat to Rahul Gandhi. BJP MLA has said that Rahul's family will be destroyed. And this threat is coming in from Karnataka Udupi MLA, who has given a big warning to Rahul Gandhi. His name is Yashpal. He has said, in 1992, our sentiments were hurt. Our workers destroyed Babri Masjid. Rahul's memory is low. He is always high. BJP MP Yashpal Suvarna issues death threats to Rahul Gandhi. Speech was made during a protest against Congress and CJP. Rahul Gandhi's memory is low. He's high 24 hours a day, is what he's saying. And then he has issued a death threat. Let's listen.
24: Rahul Gandhi ke nenap shakti bada kami de. Ina de 24 ghante nasha muktar agiro tin kasada ondo idralli amal badara seyirilla avrige yavudu aaguvo galanna chintane madonda shakti illa. ಅದರಿಂದಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ 97ರಲ್ಲಿ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ಆ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಹುಶಃ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಂಶವನ್ನು ಧ್ವಂಸ

0: Welcome back. You're watching Lunch Break and we are on standby to hear from the leader of the opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, who is expected to speak anytime. Now 12:30 was a slated time for him, though the ruckus in Lok Sabha continues. Meanwhile, we're telling you a little about the other controversies that have erupted over a period of time with BJP MP and actor Kangana Ranaut escalating her attack on the Cockroach Janata Party, targeting spokesperson Saurabh Das after he criticized her remarks on Gen Z protesters. Now, in Instagram stories, Kangana questioned Das's claim of being a student at 28, compared his profile with her own achievements, called him useless and unemployed. She said that by his age, she had already won 2 national awards and built a successful career before entering politics. Kangana, in fact, asked him to learn some skill before commenting on her. Her response came after Saurabh Das said that Kangana's views were not even taken seriously within her party. He's accused her of using inappropriate language and defended Gen Z, saying that young people have strengthened India's democracy.
1: हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे, हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदे गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा?
2: देखिए, कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले? मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है। उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहां पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के। तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है, वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था। इस पे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, शब्दावली सही नहीं है, शब्दावली संभाल लेना चाहिए नेताओं को, अपने पद का गरिमा भी बना के रखना चाहिए। आपसे कई गुना ज्यादा जेन जी ने इस देश के लिए किया है, कर रहे है।
0: Okay, that is a tutu meme which is on between the CGP and Kangana Ranaut there. Now, an exam reforms debate that is happening in Parliament, which has now become a big political flashpoint as well. This time, not over the bill itself, but over one of the government's key members on the exam reforms task force. Congress MP from Wayanad, Priyanka Gandhi Vadra, has questioned the inclusion of IIT Madras director, Professor V. Kamakoti, on the panel, asking where the exam experts were and taking a swipe at him as a Gaumutra expert. She questioned how such appointments would help fix India's examination system. Priyanka's remarks referred to Kamakoti's January 2025 statements when he had said that cow urine had medicinal properties. It was viewers actually a report that was published by the IIT Madras. It spoke about an anecdote of an ascetic allegedly recovering from fever after consuming it, Gaumutra, and said it could help manage irritable bowel syndrome, IBS. Those remarks have triggered a nationwide debate. The BJP has hit back strongly. Anurag Thakur defended Kamakoti as one of India's leading professors and AI experts, accused the Congress of insulting Indian culture, and launched a personal attack on Gandhi's siblings while backing the IIT Madras director.
3: इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ,
4: अरे बात
5: फिर चिल्लाएंगे,
3: एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी?
6: प्रोफेसर वी कामाकोटी जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की, कौन है प्रोफेसर वी कामाकोटी जी? हमारे फॉर्मर चेयरमैन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के, आरएसएस से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना चाहिए इस बात का कि आरएसएस के हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, देश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे अगर आप आरएसएस का हो जाएंगे तो। आईआईटी मद्रास की फैकल्टी थे 2001 से 2022 तक, पीएचडी डिग्री उनकी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है, आपका पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी। उन्होंने कहा ये गौमूत्र के विशेषज्ञ हैं। तो गांधी परिवार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो भारत की परंपराओं को ना तो समझते हैं और ना ही समझने का प्रयास करते हैं, बल्कि उनका उपहास उड़ाते हैं। भाई बहन एक जैसे लगते हैं, एक ही वनस्पति पर हैं, जिसके इस्तेमाल के साथ दिमाग कई बार सही तरह से फंक्शन नहीं करता है, और हो सकता है गौमूत्र इसको क्योर करे, डॉक्टर साहब हो सकता है एक ही गौमूत्र उनको क्योर करे।
0: Alright, news coming in. Anurag Thakur's big attack on Rahul Gandhi. There was a 9-hour-long discussion yesterday, is what he's saying. Yet the Congress did not utter even 9 words. Listen in.
4: Emergency के काल में 1,00,000 छात्र जेलों में बंद थे। मीसा कानून उन पर लगा दिया गया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या जेएनयू हो, देश भर में सेंट्रल फोर्सेस को वहां पे भेज के युवाओं के खिलाफ कार्रवाई कराई। राजस्थान में 19 में से 17 पेपर लीक हुए। जो शिक्षा मंत्री थे उनको सम्मानित राहुल गांधी ने करके प्रदेशाध्यक्ष बना दिया। और आज देखिए, सोरस के चमचे, इंदिरा के नाती, राहुल गांधी सबसे बड़े उत्पाती।
5: सर उधर प्रियंका गांधी ये बोल रहे हैं कि गोमूत्र एक्सपर्ट, एक इतने बड़े वैज्ञानिक को इस तरीके का बोलना किस तरीके से आप देख रहे हैं?
4: मैं इतना ही कहूंगा, इनकी आदत बन गई है पढ़े लिखे लोगों की बेइज्जती करना, उनको अपमानित करना। अगर पूरे गांधी परिवार की डिग्री जोड़ ली जाए, पढ़ाई का अनुभव जोड़ लिया जाए, उससे ज्यादा इनका अनुभव है। और

0: Vanakkam, namaskara, good afternoon, and a big welcome to India Today, So South, where we get you the flavor of the South every day, starting from 1 p.m. And like I said, that if it's making news in the South, you'll hear it first on So South on India Today. And it's going to be a politically packed news, because remember, the Kaveri issue is still simmering here in Bengaluru, and the after effects are also being seen in Tamil Nadu, and the leaders are speaking in the parliament on the same issue. So it's a crucial story for both Karnataka and Tamil Nadu, because farmers' lives are at stake in both the states because of the deficit of rainfall in the last 2 months in both Karnataka and Tamil Nadu. So Kaveri water dispute will be the main focus for us today from both Karnataka and Tamil Nadu. I'll be joined by Sagai Raj from Bengaluru, Pramod Madhav, Anaga Kesha from Chennai, and Shivi Mol from Kerala to bring us all the latest updates from their respective states. Now let's kickstart the bulletin with news coming in from Karnataka. Tensions between Karnataka and Tamil Nadu continues to simmer in the Kaveri water dispute. And this morning, the Chief Minister of Karnataka, D.K. Shivakumar, held a meeting in his Delhi premises with all the legal experts as to what is the way forward for Karnataka and the government in terms of the Kaveri River dispute. And the after effects were seen here in Mandya, Mysore and in Bengaluru, that pro-Kannada organizations and pro-farmer organizations took a protest out in the streets condemning the directive of the CWRC asking the government to release 3,500 cubics of water to Tamil Nadu starting from today till the next 15 days. And this is happening across southern part of Karnataka, Mysore, Mandya, Ramnagar and in Bengaluru. And meanwhile, in Tamil Nadu, the Congress President Manikam Tagore and also the Virudhunagar Member of Parliament has condemned the Karnataka government's decision to go ahead and appeal in the authority as well in Delhi. Manikam has said that it's not fair for the Karnataka government to appeal, rather than should abide by the CWRC's decision is what he has said. While the protests are happening, the Karnataka government is thinking of calling a all-party meeting in Karnataka and Bengaluru post this weekend. Most likely, the Chief Minister will invite all-party delegation to come into the Vidhan Sabha rooms and think as to or contemplate as to what are the next course of action that the Karnataka government should take in terms of Kaveri water dispute. And this is a big hot topic here in Karnataka. Listen to the voices on the story.
1: Thank you, Speaker Sir, for letting me speak on the subject of students, of their exams, of the education system, of your proposed bill. But before I start, I'd like to say that I was very excited, reassured by what the future of this country did on our streets. This was not anger, this was not violence, this was not hatred, this was an expression, deep expression of the youth of this country, of the future generation of this country. And I feel that all political parties must respect this expression, including my friends in the BJP. In fact, I'm pretty certain, and I've seen examples of it, if my friends in the BJP were to go and ask their own children what they felt about what their brothers and sisters were doing, they would find agreement among their own children. There is nothing wrong with what has happened, and every Indian should be proud. Now, I thought I'm going to be giving a speech about the next generation. And so I was thinking, how do I start this speech? What should be the starting point of this speech? And I thought, a good starting point, Speaker Sir, would be a conversation I had with some students, young girls, which gave me a very interesting perspective. It was their perspective, but I think I agree with the perspective. I'd like to lay this framework first on the table. The question I asked the girl was, you said to me that you're a student. What does this mean? Does it mean that you study in a college? Does it mean that you study in a school? Does it mean you read books? What does it mean? She gave me the most beautiful answer. She said, a student is someone who has an open mind and an open heart. Student is someone who, right from the beginning, accepts that they do not know everything. Student accepts that whatever he knows will be superseded later by new knowledge. Student understands that the universe is constantly changing, dynamic, in movement. And so student understands that knowledge is also constantly changing. Most important value of a student, she said to me. I asked her. I said, yeah, very good definition. What's the most important value of a student? She said, in one second, humility. I said, why? She said, the student knows that they do not know the truth. The student respects the truth of all other living beings, all other human beings. Like Gandhiji said in his autobiography, The Search for My Truth. Meaning, this is my truth, your truth might be different. Then I asked her the next question. I said, you've defined a category very well. This category of student. Who else is there? She says, there is another group of people. They are not students. Who are they? She says, they are absolutely convinced that they know everything. They believe that the universe is static. And they believe that knowledge emerges from inside them. They believe that they are God. That everything that is to be known is known to them. They are arrogant. They are arrogant. They don't listen. They don't respect other people's truth. So I said, what do you call these people? She said, I call them idiots. So she said to me, there are two categories. There are two categories in this world. The student, she said, a farmer can be a student. A lawyer can be a student. A doctor can be a student. Unemployed youth can be a student. It's the thirst to learn, thirst to understand. Like a sponge. You want to take everything in. You want to understand. It's beautiful. It's even respecting the rest of the universe. What about these idiots? She says to me, these idiots, they don't listen to anything anyone says. What's it? Are So she said to me, she said to me,
2: Manya Sadasya, aap pratipaksh ke neta hain.
1: She said to me,
2: Manya Sadasya,
1: main aapke bare mein nahi bol raha hu.
2: Pratipaksh ke neta hain.
1: I'm not talking about you.
2: Manya pratipaksh ke neta, main aapse aagrah karta hu.
1: नाम ही नहीं लिया सर,
2: आप सुनिए मेरी बात, एक मिनट, एक एक एक सेकंड में, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा आपसे आग्रह है कि हम विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं.
1: मैं कर रहा हूं सर, अब मैं स्टूडेंट डिफाइन कर रहा हूं सर,
2: ठीक रहेगा
1: सर. आई एम डिफाइनिंग अ स्टूडेंट सर. आई विल लेट मी कैरी ऑन सर. सो आई सेड सर, ये जो स्टूडेंट होता है इसका लक्ष्य क्या होता है? तो उसने मुझे बोला, स्टूडेंट का लक्ष्य होता है कि वो सच्चाई के पीछे दौड़ता रहता है. उसके लिए सच्चाई मीठी होती है. ट्रूथ इज स्वीट. लाइक गांधी जी सेड, द विंडोज ऑफ हिज हाउस आर ओपन टू ऑल विंड्स. Then I said, what about the idiot? And she said, what is going on? Okay, sir. I said, okay, what about this other type of person who is not a student? So she said, the hallmark, she said, the student, she says the student wears the truth on his or her chest proudly. It's written here. And I said, what about the other type? She says the other type requires an image. It requires an image, and as that image is not true, because the idiot is trying to pretend that he is God. I'm not talking about that. As it is not true, and the idiot is trying to pretend he is God, he has to create this massive image. Then I asked a question, sir. मैं सोचा कि ये student है और फिर ये idiot भी है. तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा, कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा, अंधभक्त. इसको कहां डाला जाए? शी सेज टू मी, अंधभक्त इज अ पर्सन हु इज एब्सोल्यूटली कन्विंस्ड दैट अनदर इडियट इज गॉड. सो दीज आर द थ्री कैटेगरीज, स्टूडेंट, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. Now, so speaker sir,
2: नेता है आप,
1: नाउ सुपर
2: सदन की गरिमा रखते हुए विधेयक पर ही चर्चा करें, उचित रहेगा.
1: आगे जा रहा हूं सर. सो स्पीकर सर, आई फाउंड दिस टू बी अ वेरी नाइस फ्रेमवर्क, एंड दिस फ्रेमवर्क केम टू मी फ्रॉम अ 18-year-old गर्ल, लवली स्टूडेंट, प्रोबेबली वन ऑफ the protesters in the Chhatron Ki Goonj programs. Sir, superficially, लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, वो शिक्षा की कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और ये सच है, एजुकेशन सिस्टम इज वेरी एक्सपेंसिव, मोर मनी is spent on one exam, on one exam, then is spent by the government on our education budget. Sir, 8-10 ghante students padhte hain, saalon ke liye padhte hain. Sir, please.
3: राहुल गांधी जी अनपार्लियामेंट्री वोट यूज नहीं करते तो यहाँ से भी टोकने का कोई आवश्यकता ही नहीं
4: है।
3: अभी अभी जो शब्द मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अन पार्लियामेंट्री वोट है, और जो अन पार्लियामेंट्री वोट है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं
1: सर,
3: वो नहीं होना चाहिए, वो गलत इस्तेमाल किया।
1: आपके लिए नहीं इस्तेमाल किया, आई डिडंट यूज इट फॉर यू।
3: शब्द रूल बुक है ना सर, ये रूल बुक में आन पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन का किताब है, और आपने जो शब्द इस्तेमाल किया वो आन पार्लियामेंट्री वर्ड है। मैं नहीं कह रहा हूँ, रूल बुक एक्सप्रेशन इसके बारे में तो जानकारी रखना चाहिए, इसलिए आपने बार बार, एक बार नहीं, बार बार वो शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए हमारे लोग आपत्ति जताते हैं। गलती तो राहुल गांधी जी का है, क्यों अन पार्लियामेंट्री वोट का इस्तेमाल किया है?
0: माननीय सदस्य
1: स्पीकर सर,
0: आप संसद
1: सर, मैं आई एम नॉट कॉलिंग एनीबॉडी दैट,
0: आप कोई ऐसा शब्द बोलो,
1: आई एम नॉट कॉलिंग एनीबॉडी दैट सर। अगर इनको शब्द नहीं अच्छा लगता मैं दूसरा शब्द दे देता हूँ, मैं दूसरा दे देता हूँ सर।
0: वो व्यवस्था तो मैंने दे दी है, जो असंसद है उसको निकाल देंगे।
1: स्टूडेंट को हम
0: आपको व्यवस्था देने की आवश्यकता नहीं है
1: सर, इडियट शब्द नहीं यूज करूंगा सर, आई विल नॉट यूज ना, लेट मी सब बोलने तो दीजिए सर। अगर चाहते हैं तो मैं दूसरा शब्द, उसका प्रॉक्सी शब्द,
0: नो आप फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, विधेयक पर आप बोले
1: सर,
0: आपसे ये मेरी अपेक्षा
1: सर, बट आप सर, आप हाउस को ऑर्डर में रखिए सर,
0: आप विधेयक पे बोले, मैं हाउस को ऑर्डर में रखूंगा क्या।
1: Find this young lady gave me a beautiful framework, three categories of people. I found this to be ऑर्डर लाइए सर।
3: सम्मान देते हैं हम, इज्जत से हम फिर से कहना चाहते हैं, आपने अन पार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया, इसलिए हमारे यहाँ लोग उत्तेजित हुए हैं, अपने आप में तो नहीं हुए। और आपको मालूम है ये अन पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन तो हमने तो नहीं बनाया, ये जो यहाँ जितना शब्द लिखे हैं जो आप पार्लियामेंट में नहीं कह सकते हैं, ये नियम हमने नहीं बनाया। और इसके मुताबिक आपको अगर संसदीय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बात करना है तो हम लोग सब सुन रहे हैं, आपका भाषण सुन रहे हैं, लेकिन आपने बार बार जो शब्द इस्तेमाल किया तो हमने क्लैरिफाई किया, हम आपके आपके भाषण को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया उसको आप कृपया इस्तेमाल ना करें, इतना ही है, हम तो सुनना चाहते हैं। मैं अनुरोध करता हूँ राहुल गांधी जी, आप अपना भाषण को कंटिन्यू कीजिए, आप अपना भाषण कंटिन्यू कीजिए, लेकिन वो शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, मेरा इतना ही अनुरोध है।
4: नहीं बोलना चाहते तो आगे बढ़ते हैं सर।
5: आप नहीं बोलना चाहते माननीय नेता, हाँ माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आपसे आग्रह कर दिया है कि आप असंसदीय शब्दों का उपयोग न करें, सदन में बोले कोई आपत्ति नहीं बोले आप। नहीं बोलना चाहते मैं अगले वक्ता को बुलाऊं, हाउस ऑर्डर में आप बोलिए। माननीय सदस्य, कई मौके मैंने भी देखे हैं इसी सदन में, जब आप नेता सदन के नेता को बोल नहीं देते, बेल में आते हैं, अभी आपको चुप तो है सदन में, ऐसा तो नहीं है, आज तो आप कर रहे हैं, ऐसा माहौल मैंने पहले भी देखा है।
1: देखिए सर, सर सर हाउस सर टू कीप हाउस इन ऑर्डर सर इज योर एस्टीम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर द मोमेंट आई ओपन माई माउथ the entire opposition starts to shout.
3: मैं फिर से कहता हूँ राहुल गांधी जी, आप इस तरीके से हमारा अच्छा एक डिबेट जो चल रहा है आप लीडर ऑफ अपोजिशन है और आप ऐसा परिस्थिति खड़ा मत कीजिए। स्पीकर साहब ने भी जिक्र किया, जब प्रधानमंत्री जी को हमारा जो शुरू में राष्ट्रपति का अभिभाषण को बोलने का आप लोगों ने बिल्कुल रोक करके यहाँ तक आए और आप लोगों ने कई बार प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया, ऐसा परिस्थिति भी निर्माण कराया आप लोगों ने। और आज तो आपने आज संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, एक पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसको लेकर के एक नियम हमने पढ़ के सुनाया, ये किताब का भी जिक्र किया कि अन पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन, ये मैंने जिक्र किया। और बाकी हमारा साथियों ने भी कहा है कि आप भाषण कीजिए लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया है उसमें आपत्ति, इतना ही जो है। फिर आप उसका इतना आप बहुत ही इमोशनल चेहरा दिखा करके ये तो ठीक नहीं है, हाउस को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं।
1: सर इट इज अनपार्लियामेंट्री, लेट अस जस्ट बी प्रिसाइज, इट इज अनपार्लियामेंट्री फॉर मी टू यूज दैट वर्ड अगेंस्ट अनदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आई हैव नॉट यूज दैट वर्ड अगेंस्ट एनीबॉडी, आई हैव जस्ट स्टेटेड दैट दिस कैटेगरी एग्जिस्ट्स। Sir, again they are going. Speaker sir, अगर आप लोग सर अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं।
4: ठीक है, टाइम बता दो कितना ले लिया।
5: एक मिनट। माननीय सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष, इस विषय पर
1: मैं बोलता हूँ सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूँ वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं, आप उनको मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं।
5: नो, संसदीय कार्य मंत्री आप बोल।
1: ये फिर से आ गए,
5: रक्षा मंत्री जी बोलना क्या? एक मिनट। देखो सदन में एक अच्छी व्यवस्थाएं रही है, अच्छी मर्यादाएं रही है और हमें अच्छी मर्यादा बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो सदन में मर्यादा तर्क से बोलता है देश भी सुनता है और सम्मान भी करता है। मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सदन के अंदर शब्दों का चयन ऐसा हो जो संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप हो और हमारी चर्चा उच्च कोटि की हो, ये मेरी अपेक्षा रहती है। अब मानो रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी सदन के उपनेता हैं, कुछ मानो
1: सर मैंने हिल नहीं किया,
5: हिल नहीं किसी हिल नहीं का, अगर कुछ
1: बोला मैंने हिल नहीं किया, मेरा भाषण चल रहा है सर, मैंने हिल नहीं किया है।
5: बोलिया नहीं, एक मिनट सुनिए, एक मिनट, किसी इल्ड करने से नहीं, यूं भी हमारी व्यवस्था रहती है कि कभी नहीं, मैंने किसी नो अलाउ, आपको भी अलाउ करते हैं, ऐसा नहीं करते, अलाउ नहीं करते, ठीक है, अलाउ नहीं करते, ऐसा नहीं। पर रक्षा मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं, शायद बोले हैं सदन में अच्छा माहौल के लिए बोलेंगे।
6: अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस असंसदीय शब्द का प्रयोग मेरे नेता प्रतिपक्ष ने किया है उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए,
5: अपना व्यवस्था से निकल जाता है।
6: ओके ओके, वो निकाल दिया जाए। और मैं आप सभी से ये अपील अपने पक्ष से करना चाहता हूं कि इस समय आप शांत रहिए, उनकी बात सुनिए। आप बोलिए।
1: सो देर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ पीपल, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड, there is one category of people called student vidyarthi jo vidya ka arth dhoondta hai, and then there are the two other categories which I will not name. But these categories have natures, so the student is never scared of the truth, he loves the truth, goes towards the truth. Student never uses force against somebody else because he knows that that person's truth is different than my truth. other category, they do not like the truth. They need an image. They need force. They need violence. Superficially, it looks that our students were upset because of exams. They were upset because of the education system. They were upset because they have to study hours and hours and hours, and then paper leaks. Some rich boy or girl pays 30, 40 lakh rupees, gets the paper, gets the job, and jo middle class ka gareeb student hai, imandar hai, wo bypass ho jata hai. So they are upset because of these things. And our system is terrible. It's terrible, it's cruel. Lakhs and lakhs of rupees are taken from the poorest people. Everything has been privatized. Paper leaks. In one exam, something happens. In another exam, something else happens. Some people are allowed re-exam. Some people are not allowed re-exam. Rampant privatization means private companies are checking exams. Wrong papers are going. It's a brutal, terrible system. It's an extortion system. I said it in my meetings. And it's a system that has been captured. It's a system that has been captured. The soul of the system has been captured by the RSS. The soul, sir. Rajnath Singh ji said, sir, please. Sir, Rajnath Singh ji said. Rajnath Singh ji said that we are not the UPA. Our ministers never resign. He's right. What has happened here? The resignation of Mr. Dharmendra Pradhan. That's a superficial thing. Because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry.
7: Yes.
1: Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. And the man who runs it is an OSD sitting in the minister's office. So, what the students are really irritated about is that they are not allowed to be students in India. They are not allowed to follow their passion. They're not allowed to say what they want. They're not allowed to ask the questions that they want. They have to buy this nonsensical history that the RSS fantasizes about. They have to buy this structure. Every single university in India, the students should know this, and I'm saying this for them, every single university in India today has a vice chancellor from the RSS. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. They are the people who want you to be andbhakts. And this is a reaction from the soul of India that is saying, under no circumstances are we going to become your andbhakts. Under no circumstances are you going to define our future. Under no circumstances are we going to live. And this is a beautiful expression. The amazing thing to me, the amazing, fascinating thing to me is that the parents of these children did not have the courage to face the BJP.
7: Yeah.
1: The parents of these children did not have the courage to face the RSS. And yet these children, brave, imaginative, powerful, and faced whatever you could throw at them. I've got some experience about facing the RSS, about facing Mr. Narendra Modi, about facing this group. The game is not about facing them. There's nothing in them. There's nothing in the RSS. The game is about facing your own fear. And that is what the students did. The students overcame their fear. The students challenged the idea that you could destroy them. They challenged the idea that you could destroy their career. They asked the question, why are you not allowing us to have jobs? They asked the question, why can we not fall in love with somebody we like? They asked the question, why do you attack different religions? They asked all these questions, and they asked it in public. You couldn't do nothing about it. And I'm very happy today to see that the so-called home minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. I saw the Home Minister. I saw the Home Minister, sir. I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car, like that, looking. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. He is the Home Minister, sir.
5: देखिए आज होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही, आज जिस विधेयक पर चर्चा बैठे हैं आज होम मिनिस्टर पर चर्चा नहीं है, जिस विधेयक पर चर्चा है विधेयक पर मंत्री बैठे हैं, ये व्यवस्था रहती है सदन के अंदर.
1: सर द होम मिनिस्टर ऑथराइज्ड the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot.
3: Sir, aap sochiye aap kitna galat baat bol rahe hain.
1: What?
3: Aap kalpana kar sakte hain? Aap bina soch samajh kar ke jo istemal kar rahe hain.
1: What is going on?
3: कैसे बोल सकते हैं आप? इतना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए. राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए. आप बिना तंग करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर. अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया बताइए? किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी, बहुत गलत बात बोला. मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकलना ही चाहिए. लेकिन राहुल गांधी जी, आप माफी मांग गए, ये ठीक बात नहीं है. आप ऐसे नहीं बोल सकते, गलत बात बोला है. कैसे आप गृहमंत्री जी को इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं? ठीक नहीं है, बहुत गलत बात बोला है. आप गोली चला रहे, ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है. ये तो देखिए कितना गलत बात बोला अध्यक्ष, ऐसा तो नहीं बोल सकते. How can he say that somebody ordered firing? You can make statement outside in the house. You cannot make that statement. It is a serious allegation. It is a breach of his own position and privilege. This is not proper. ऐसा नहीं हो सकते, आप कैसे बोल सकते हैं?

0: zalo.
1: A dashboard. Nene a dashboard. Nene a dashboard hai agar nahi a dashboard hai अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है।
2: ये सही बात
1: नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है,
2: अखिलेश जी आप जो बता रहे हो अलग बात है। राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा, इंक्वायरी का बात नहीं मांगा। राहुल गांधी जी ने इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया। कैसे बात कर सकते हैं आप? ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? आप अगर इंक्वायरी का मांग करता है वो ठीक है, हम मानते हैं अखिलेश जी। अरे अखिलेश जी आप जो कह रहे हैं वो अलग है, राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है। एक ही ने ये गलत बात। आपको राहुल जी, आपको देखिए ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा, या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए। आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है, ये बहुत गंभीर है, ऐसा मत कीजिए। आपका शब्द बहुत गलत बात है।
3: देखिए माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा आपसे आग्रह है, एक मिनट आप विधेयक के बोलो है, और आप कोई भी तथ्य कोई भी बात कहें तो आप खुद इंक्वायरी कर खुद निर्णय की स्थिति में नहीं बने। ये आप विषय कह सकते हैं कि इस लाठीचार्ज की इंक्वायरी होना चाहिए, लेकिन आप किसी व्यक्ति विशेष, अखिलेश ने भी कहा आप इंक्वायरी की बात कर सकते हैं, लेकिन आप कहें कि नाम लेकर किसी का कहें ये उचित नहीं है।
4: सर
3: उचित नहीं है, सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है।
4: सर सर जब सर जब आतंकवादी को गोली मारी जाती है,
2: ये हम बहुत एक गंभीर स्थिति में आए हैं। हम तो शुरू से कहा, और हमारा रक्षा मंत्री ने भी अपील किया, यहाँ शांति सुनना चाहते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आप जो गृह मंत्री जी का नाम को लेकर के आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, जो आपने वक्तव्य दिया, इस बेसिस पे आपने कहा है, आप प्रूफ दिखाओ। आपको माफी मांगना होगा सर, ये इसको हम हल्के में नहीं सुनना चाहते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आप जो गृह मंत्री जी का नाम को लेकर के आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, जो आपने वक्तव्य दिया, इस बेसिस पे आपने कहा है, आप प्रूफ दिखाओ। आपको माफी मांगना होगा सर, ये इसको हम हल्के में नहीं ले सकते, नहीं तो कल को कोई भी मेंबर उठ के कुछ भी बोलेगा, ऐसा नहीं चल सकता है। बहुत गंभीर मामला है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। तो क्या हम ऐसे कह दें कि राहुल गांधी जी ने किसी का मर्डर किया, हम बोल सकते हैं क्या बिना मतलब का? कैसे बोल सकते हैं? ऐसा नहीं होता है सर, यहाँ जिम्मेदारी का साथ बोलना होता है और तर्क देना होता है। आपने स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन आप बताना पड़ेगा कि किस बेसिस पे आपने स्टेटमेंट दिया। और आप माफी मांगेगा तब हम सोचा जाएगा, ऐसा सदन नहीं चल सकता है। ये गंभीर मामला है, ये ऐसा बिल्कुल। मैं आप राहुल गांधी से माफी मांगे या तो बताए क्यों बोला है, कैसे बोला है, आप कैसे बोल सकते हैं माफी मांगी है, ऐसा नहीं चल सकता है। अध्यक्ष चल सकता है सदन, ऐसा नहीं चल सकता, ये नहीं होगा। हम इस सदन को इस तरीके के बिना मतलब, बिना तर्क का देश के जिम्मेदार एक व्यक्ति के ऊपर में ऐसा आरोप हम कतई लगाने पे हम मंजूर नहीं दे सकते हैं, नहीं होगा। आपको माफी मांगना होगा, नहीं तो ऐसा बहस नहीं हो सकता है, ये ठीक नहीं है सर। वो माफी मांगेगा या तो बताओ क्यों, कैसे उसको पता चला है और किस बेसिस में बोला है, ऐसा नहीं होगा।
4: बोलो सर।
3: नहीं बोलिए आप,
4: लेकिन सर द यूज, मैं बोल सकता हूं सर प्लीज।
3: मेरा मानना यह है कि आपने जो तथ्य किए है, उन तथ्यों में जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं हो आपके पास, कोई इंक्वायरी कमीशन किसी रिपोर्ट नहीं हो, ऐसे शब्द कार्रवाई में नहीं जाना चाहिए।

0: का कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर का कॉपी आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए, आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी, आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौरने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। ऐसा हम बिल्कुल मान्यता नहीं दे सकते हैं। आप नहीं बोलना चाहते तो मत बोलिए, लेकिन गलत बात नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं हो सकता। आप परमिशन नहीं दे सकते,
1: आप कंक्लूड कर दीजिए। नो, माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी से मैंने आग्रह किया है कि वह बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के, बिना निष्कर्षों के सदन के अंदर कोई बात को नहीं कहे। ऐसा सदन के अंदर नहीं चलता है। सदन के बाहर और सदन के अंदर बोलने में सदन की मर्यादाएं, नियम, प्रक्रिया होती है। ये मेरे आपसे नो नियम होता है, आप किसी बात पर आरोप लगाए तो नोटिस दीजिए। आप बिना नोटिस के, बिना किसी के आरोप नहीं लगा सकते। आप आपने बिना इंक्वायरी, बिना कोई इंक्वायरी जजमेंट के कोई भी किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। आप किसी पे नहीं लगा सकते, एक सदस्य भी नहीं लगा सकते। आप नहीं बोलना चाहते, मैं नियमों से बात कर रहा हूँ, नियमों के पर एक भी बात नहीं कर रहा, मैं नियमों की विपरीत नहीं जा रहा हूँ बिल्कुल भी। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है, इतने गुस्से में मत होइए आप। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है, मैंने नियमों के तहत ही आपको आग्रह किया है कि सदन में कोई भी आरोप लगाते समय पूरे तथ्य, निष्कर्ष या किसी की रिपोर्ट के आधार लगता है, ऐसा नहीं है। नहीं,
2: माइक तो दीजिए, माइक तो दीजिए,
1: माइक दीजिए, लेकिन बोलेंगे आप?
0: माइक नहीं है,
2: माइक नहीं है सर,
1: माइक तो चालू है। आप मानिए, लेकिन सदन की गरिमा से बोलेंगे आप?
2: मैं बोल सकता हूँ सर?
1: आप बोल सकते हैं, लेकिन सदन के नियम प्रक्रियाओं से बोल सकते हैं।
2: उनको आप बैठाइए सर।
1: नो, बोलना नहीं चाहते, मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा फिर। सदन में मैंने बार बार आपसे आग्रह किया है, आप अगर सदन के अंदर, सदन के, मैंने आपको कभी नहीं रोका, लेकिन एज ए स्पीकर मेरी जिम्मेदारी होती है कि सदन की गरिमा बनी रहे, सदन की प्रतिष्ठा बनी रहे, और सदन में हमेशा जो कुछ भी बोला जाता है वो बरसों तक कार्रवाई में जाता है। इसलिए मेरा आपसे अपेक्षा है, क्योंकि आप प्रतिपक्ष के नेता हो और माननीय सदस्य नहीं, आप प्रतिपक्ष के नेता, इसलिए प्रतिपक्ष के नेता से विशेष रूप से अपेक्षा है कि आप

तथ्यों पे बोले, इस विधेयक पर बोले। आप विधेयक पर बोलना नहीं चाहते, तथ्यों पर बोलना नहीं चाहते, आप सदन नो।

0: Massive showdown as we can see in Parliament at this point in time, with Rahul Gandhi making that big charge against the Union Home Minister, saying that an order was issued by him to fire at the students who were protesting. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju hasn't taken kindly to that and has asked Rahul Gandhi to not speak lies and apologize on the floor of the House. Rahul Gandhi must produce evidence. He's made a baseless allegation. Gandhi must apologize. So ruckus erupts on the floor of the House, as you can see clearly in these pictures. In fact, a little past one, in fact, is when Rahul Gandhi started to speak, as was expected.
1: सदन के अंदर आप सबने नियम प्रक्रिया बनाई है, अच्छी परंपरा है. आप सदन का उपयोग नियम प्रक्रियाओं के तहत करें, ये अपेक्षा मेरी है आपसे. नहीं चाहते सदन की कार्रवाई आज 2:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है.
0: Lok Sabha adjourned till 2:30. This is what the speaker said amid the ruckus that was witnessed on the floor of the House after Rahul Gandhi's comments on the Home Minister ordering fire at the students. He said that this was what happened on the 20th of July when the Home Ministry actually gave direct orders for students to be fired at. In fact, this is a charge that that the government has responded to, saying that this is utterly baseless and that Rahul Gandhi must apologize. This is not just misleading the House, but misleading the country as well. There is zero truth to the allegations that have been made by Rahul Gandhi, is what Kiran Rijiju, the Union Parliamentary Affairs Minister, has clearly said at this point in time. Now, after that statement was made, we saw a fair amount of ruckus on the floor of the House, with the Speaker trying to pacify both sides. Listen in to what Gandhi said.
2: A conversation I had with some students, young girls, which gave me a very interesting perspective. It was their perspective, but I think I agree with the perspective. I'd like to lay this framework first on the table. The question I asked the girl was, you said to me that you're a student. What does this mean? Does it mean that you study in a college? Does it mean that you study in a school? Does it mean you read books? What does it mean? She gave me the most beautiful answer. She said, a student is someone who has an open mind and an open heart. Student is someone who, right from the beginning, accepts that they do not know everything. Student accepts that whatever he knows will be superseded later by new knowledge. Student understands that the universe is constantly changing, dynamic. in movement. And so student understands that knowledge is also constantly changing. Most important value of a student, she said to me, I asked her, I said, yeah, very good definition, what's the most important value of a student? She said, in one second, humility. I said, why? She said, the student knows that they do not know the truth. The student respects the truth of all other living beings, all other human beings. Like Gandhiji said in his autobiography, The Search for My Truth. Meaning, this is my truth, your truth might be different. Then I asked her the next question. I said, you've defined a category very well. This category of student. Who else is there? She says, there is another group of people. They are not students. Who are they? She says, they are absolutely convinced that they know everything. They believe that the universe is static. And they believe that knowledge emerges from inside them. They believe that they are God. That everything that is to be known is known to them. They are arrogant. They are arrogant. They don't listen. They don't respect other people's truth. So I said, what do you call these people? She said, I call them idiots. Because, sir, I'm not calling anybody that. I'm not calling anybody that, sir. अगर इनको शब्द नहीं अच्छा लगता मैं दूसरा शब्द दे देता हूं मैं दूसरा दे देता हूं सर
1: वो व्यवस्था तो मैंने दे दी है जो असंसित है उसको निकाल देंगे
2: स्टूडेंट को हम
1: आपको व्यवस्था देने की आवश्यकता नहीं है
2: सर इडियट शब्द नहीं यूज करूंगा सर आई विल नॉट यूज नाउ लेट मी सर बोलने तो दीजिए सर अगर चाहते हैं तो मैं दूसरा शब्द उसका प्रॉक्सी शब्द
1: नो आप फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं विधेयक पर आप बोले
2: सर
1: आपसे ये मेरी अपेक्षा
2: सर बट आप सर आप हाउस को ऑर्डर में रखिए सर हाउस सर टू कीप हाउस इन ऑर्डर सर इज योर एस्टीम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सर द मोमेंट आई ओपन माई माउथ द इंटायर ऑपोजिशन स्टार्ट्स टू शाउट It is unparliamentary. Let us just be precise. It is unparliamentary for me to use that word against another member of parliament. I have not used that word against anybody. I have just stated that this category exists. Sir, again they are going. Speaker, sir. अगर आप लोग सर अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहां बैठ जाता हूं मैं बैठ जाता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं
3: ठीक है टाइम बता दो कितना ले लिया
2: अ कॉन्वर्सेशन आई हैड विद सम स्टूडेंट्स यंग गर्ल्स व्हिच गेव मी अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव It was their perspective, but I think I agree with the perspective. I'd like to lay this framework first on the table. The question I asked the girl was, you said to me that you're a student. What does this mean? Does it mean that you study in a college? Does it mean that you study in a school? Does it mean you read books? What does it mean? She gave me the most beautiful answer. She said, a student is someone who has an open mind and an open heart. Student is someone who right from the beginning accepts that they do not know everything. Student accepts that whatever he knows will be superseded later by new knowledge. Student understands that the universe is constantly changing, dynamic, in movement. And so student understands that knowledge is also constantly changing. Most important value of a student, she said to me, I asked her, I said, yeah, very good definition, what's the most important value of a student? She said, in one second, humility. I said, why? She said, the student knows that they do not know the truth. The student respects the truth of all other living beings, all other human beings. Like Gandhiji said in his autobiography, The Search for My Truth. Meaning, this is my truth, your truth might be different.
1: Rahul Gandhi ji unparliamentary word use nahi karte, abhi yahan se bhi tokne ka koi avashyakta hi nahi.
4: But how old are
1: you? Abhi jo shabd, main ye manta hu ki Rahul Gandhi bahut tarike se aisa shabd use kar rahe hain, wo ek student ke naam se aisa shabd ka istemal kar rahe hain. Wo istemal to wahi kar rahe hain na, Rahul Gandhi ji hi kar rahe hain. Sir, naam le raha hai student ka. स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अन पार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अन पार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए. और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं
2: सर,
1: वो नहीं होना चाहिए. वो गलत इस्तेमाल किया,
2: आपके लिए नहीं इस्तेमाल किया. आई डिडंट यूज इट फॉर यू.
1: शब्द रूल बुक है ना सर, ये रूल बुक में अन पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन का किताब है, और आपने जो शब्द इस्तेमाल किया वो अन पार्लियामेंट्री वर्ड है. मैं नहीं कह रहा हूँ रूल बुक, एक्सप्रेशन इसके बारे में तो जानकारी रखना चाहिए. इसलिए आपने बार बार, एक बार नहीं, बार बार वो शब्द का इस्तेमाल किया है. इसलिए हमारे लोग आपत्ति जताते हैं. गलती तो राहुल गांधी जी का है, क्यों अन पार्लियामेंट्री वोट का इस्तेमाल किया है.
5: हमने देखा एक घंटे से कोई विषय बिल के बारे में नहीं बोले, कोई विषय जो डिबेट से संबंधित हो उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल पाए. झूठ का फुलंदा सिर्फ राहुल गांधी जी के वक्तव्य में दिखता है, उनका फ्रस्ट्रेशन कि सरकार ने बच्चों की चिंता की, बच्चों के बारे में बहुत ही संवेदनशीलता से व्यवहार किया, और उनका फ्रस्ट्रेशन के बच्चों ने उनको भी दाद नहीं दी वो आज दिख रही है. जबकि कोई फायरिंग हुई नहीं है, तो एक किस प्रकार का झूठा आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं. उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, सदन में माफी मांगनी चाहिए, देश के साथ माफी मांगनी चाहिए उनके झूठे आरोपों के लिए. जो भी कार्रवाई सदन में हुई है वो पूरी तरीके से निरस्त होनी चाहिए, और झूठ के आधार पर राहुल गांधी जी के वक्तव्य के सदन में अलाउ नहीं होना चाहिए. उन्होंने माफी मांगनी चाहिए. ये घोर मिसयूज है सदन का जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं.
6: माफी नहीं मांगते तो क्या
7: करते रहते हैं, पर क्या सबक नहीं सीखते, क्योंकि झूठ बोलना सदन के अंदर.
5: वो क्या है कि वो अभी तक अपनी बार बार जो हार हो रही है उसको पचा नहीं पा रहे हैं. जनता उनको लगातार पराजय दे रही है. उनको समझ नहीं आ रहा है कि जनता उनसे नाखुश है. हर हार के बाद वो शायद और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होके झूठ और फरेब के अलावा उनके पास बोलने को कुछ रहता नहीं है.
6: सर, आरएसएस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने कि शिक्षा मंत्रालय
5: कितनी बेबुनियाद बातें आज उन्होंने हाउस में की है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, और शिक्षा मंत्रालय रूल्स पर चलता है. शिक्षा विभाग की अपनी पूरी व्यवस्थाएं हैं, अफसर उसकी सब व्यवस्थाओं की देख रेख करते हैं और हमारी सरकार देश में एक अच्छी व्यवस्थाओं को स्थापित करने में जुटी हुई है। इनकी तरह नहीं कि बाहर से एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सोनिया गांधी जी की तरह इनकी सरकार चलाए। इनको अभी तक वही याद है जो कारनामे वो खुद किया करते थे और शायद इसीलिए वो समझ नहीं पाते हैं कि सरकार व्यवस्थित तरीके से कैसे चलती है।
0: And that's the response from Union Minister Piyush Goyal as the government has gone all out against Rahul Gandhi, saying that his frustration is very, very evident. Not just that, also demanding Rahul Gandhi's apology. Just to quickly sum up for all our viewers what has happened in the parliament a short while ago, where Rahul Gandhi has leveled scathing allegations against Union Home Minister Amit Shah over the students' protests and how those students...
4: That point of time, they are trying to stop the speech. But basically, what is that? They are very much know that their complete, their party is completely on guilty part. Guilty conscience is leading now them. That is why they are making allegation against us. That is my making this. Because we are very clear. Because this entire episode of student atrocities against student, entire atrocities against students happened only due to the action from the Home Ministry.
8: So there is no question of apology.
4: Who apologize? Nothing doing. Let them apologize to the student. Let them apologize to the nation. Who use pellet gun against the students? Let them apologize. Country is waiting that. Then you are asking apology from Rahul ji for raising this issue. Big tamasha. Okay.
0: And there you see how the story is spanning out on both sides, where Rahul Gandhi made those remarks in Parliament. It was, of course, the idiot remark against Prime Minister Narendra Modi that caused a massive stir. And we saw the sort of responses and sloganeering that came in from the ruling MPs. But apart from that, it was also the allegations that he leveled against Union Home Minister Amit Shah, citing that it was him who had passed the order and that led to the brutality against students during that protest. Now, see how responses are coming in from both the sides, where the government has straight up denied these allegations and also saying that unless and until Rahul Gandhi can back it with evidence, he should not make such remarks. But you see how the Congress responded when the NDA MPs have been demanding an apology from Rahul Gandhi, to say that we will not apologize. There is no way that Rahul Gandhi will apologize. So you see the logjam in Parliament once again over the debate that was happening, not just on the students' protest, but while the country is awaiting the Parliament to bring in a law to firm up the leaks that have been happening and what exactly can be done about it. There you see how it panned out in Parliament just a short while ago, where Rahul Gandhi delivered that address. He was speaking, presenting his side of the arguments on what has happened in the last 1 week. But Rahul Gandhi not just making that idiot remark, but also leveling those allegations against Union Home Minister Amit Shah that led to the BJP MPs now demanding an apology from him. Listen in to what Rahul Gandhi said.
9: And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. I saw the Home Minister. I saw the Home Minister, sir. I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car, like that, looking. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because
10: because he is scared. He is the Home Minister, sir.
1: देखिए आज होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही, आज जिस विधेयक पर चर्चा बैठे हैं
10: द होम मिनिस्टर सर, द होम मिनिस्टर
1: नो, आज होम मिनिस्टर पर चर्चा नहीं है, जिस विधेयक पर चर्चा हो विधेयक पर मंत्री बैठे हैं, यही व्यवस्था रहती है सदन के अंदर
10: सर। द होम मिनिस्टर सर, द होम मिनिस्टर ऑथराइज्ड the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. Speaker, sir, the use of force can only be authorized by the Home Minister.
1: No.
10: It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister.
11: Rahul Gandhi ji, aap neta pratipaksh hai
12: sir,
11: gambhirta se baat bolna chahiye. Aap mere tan karke yahan aisa baat karte hain, ye theek nahi hai sir. Abhi thoran aap kis basis pe ye bayan diya hai? Kis basis pe aapne ye bayan diya, bataiye. किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी, बहुत गलत बात बोला। मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकालना ही चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी आप माफी मांग लिए, ये ठीक बात नहीं है, आप ऐसे नहीं बोल सकते, गलत बात बोला है। How can he say that somebody ordered firing? You can make statement outside in the house. You cannot make that statement. It is a serious allegation. It is a breach of his own position and privilege. This is not proper. ऐसा नहीं हो सकते हैं, आप कैसे बोल सकते हैं?
13: अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है।
1: ये सही है।
13: नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं
11: है, अखिलेश जी आप जो बता रहे हो अलग बात है, राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा, इंक्वायरी का बात नहीं मांगा, राहुल गांधी जी ने इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया, कैसे बात कर सकते हैं आप? ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? आप अगर इंक्वायरी का मांग करता है वो ठीक है, हम मानते हैं अखिलेश जी। अरे अखिलेश जी आप जो कह रहे हैं वो अलग है, राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है, एक ही नहीं ये गलत बात। आपको राहुल जी, आपको देखिए ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा, या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए, आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है, ये बहुत गंभीर है, ऐसा मत कीजिए, आपका शब्द बहुत गलत बात है।
1: देखिए माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा आपसे आग्रह है, एक मिनट आप विधेयक के बोलो है, और आप कोई भी तथ्य कोई भी बात कहें तो आप खुद इंक्वायरी कर खुद निर्णय की स्थिति में नहीं बने। ये आप विषय कह सकते हैं कि इस लाठी चार्ज की इंक्वायरी होना चाहिए, लेकिन आप किसी व्यक्ति विशेष, अखिलेश ने भी कहा आप इंक्वायरी की बात कर सकते हैं, लेकिन आप कहें कि नाम लेकर किसी का कहें, ये उचित नहीं है,
10: ये
1: उचित नहीं है, सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है।
11: होम मिनिस्टर का कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर का कॉपी आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए, आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी, आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए, ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसे नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाइए हेडलाइन बतौरने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। ऐसा हम बिल्कुल मान्यता नहीं दे सकते हैं। आप नहीं बोलना चाहते तो मत बोलिए, लेकिन गलत बात नहीं बोल सकते।
12: So there you saw that exact sequence of what unfolded in Parliament in the last 1 hour or so during Rahul Gandhi's address, where, remember, the House has been adjourned till 2:30 p.m. and is set to resume in about 10 minutes or so. Treasury benches, of course, protested, but ruling party members continued protesting. They raised slogans against Rahul Gandhi and now, of course, are demanding an apology for the allegations that he made against Union Home Minister, saying that he must back it with evidence, else he should not make such remarks. The opposition has been continued to back Rahul Gandhi, this even as BJP MPs are demanding that Rahul Gandhi must apologize, but they say apology for what? And they, in fact, even in Parliament, like you saw, kept saying that Rahul Gandhi must be allowed to speak. The Speaker, on the other hand, has given a strong warning to Rahul Gandhi, saying that he should base his arguments only on facts, and whatever he says must be backed by evidence and established findings, unless Rahul Gandhi should not level such huge allegations that he did. We also have several responses coming in from outside Parliament. Let's listen in.
14: इमरान मसूद हमारे साथ है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। इमरान साहब, आप हाउस में थे, ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, तो कुछ तथ्य होने चाहिए, साक्ष्य होने चाहिए।
15: बात बताइए, गोली चली है, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है और उस पैलेट गन से बच्चों के गोली के निशान राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा दिखाया कि जिसके पैलेट गन चली है, AK-47 लेकर के मारते हुए गोली चलाते हुए फुटेज मीडिया ने दिखाने का काम किया है। और दिल्ली पुलिस तो सीधे सीधे गृह मंत्रालय के अधीन है, तो दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से लाठी चला करके हाथ पैर तोड़े, तो उसके ऊपर इतना बवाल करने से बेहतर है कि शर्मिंदगी अपना आप करें। और ये इनको माफी मांगनी चाहिए छात्रों से, इनको माफी मांगनी चाहिए नौजवानों से।
12: With that, it's time for us to sip into a very short commercial break. But remember, Parliament is all set to resume in about 15 minutes or so. We'll cut across to the live proceedings. For the moment, a short break. Do come back.
16: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
17: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
18: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
19: I have no idea how this election is going to play out,
18: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
20: Claim the offer.
21: Double your money from any random group.
22: Pay attention. Promising double returns, they'll lure you in tight. Unverified groups will send fake tips overnight, emptying your pockets before you can fight.
23: Well said! Well said! Well said!
22: SEBI and NSE advise, consult only SEBI registered advisors and make payments only to verified accounts or UPI ID.
24: Soch kar, samajh kar, invest kar.
25: NSE dwara niveshakon ke hit mein jari.
26: The protesters are young. They need to realize they are angry, they want a change, but they have to show restraint and how. They are sitting there for a reason. The reason is you want to bring change. How do you bring a change? Not by mob lynching reporters or attempting to mob lynch, saying aap godi ho, aapki sunenge bhi nahi. That's not going to help your cause. I understand your anger. All 20-somethings, we all have felt it. But agar aap aage jaake jo bhi abusive words use kar rahe, it will not help your protest.
2: राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है.
3: We launched the magazine. This is in the middle of the emergency.
4: What she did was absolute grit.
5: There can be no press freedom.
3: Threatened us. You have a press, we can shut it down.

0: All right, inside details coming in from the Parliament of what we are picking up from our sources as the government is set to move for the passing of the exam bill. In fact, Kiran Rijiju has said that the passing of the exam bill is our utmost priority. Now, according to sources who say that the ruling party will press for Rahul Gandhi to apologize for the remarks that he made during his speech, and he must take back his words. So either an apology or he must say that he takes back his words, or else Rahul Gandhi should not be allowed to speak. Those are the inside details coming in from Parliament. Remember, 3 p.m. is when Lok Sabha is all set to resume. We saw the kind of ruckus and sloganeering that was raised by the ruling party members over what Rahul Gandhi said, not just over the allegations he made against Union Home Minister Amit Shah, but even the word that was later expunged. And in the very latest, we are picking up from our sources that the priority for the government at this time is to move for the passage of the bill. And Kiran Rijiju has said in as many words, the passing of the bill is our priority. According to sources, we also pick up that as far as the ruling party is concerned, they will press for Rahul Gandhi to apologize is also what we've heard as part of response from several union ministers who said that Rahul Gandhi must apologize or take back his words. But if Rahul Gandhi continues to use unparliamentary language or he makes such allegations not backing up with any sort of evidence, then Rahul Gandhi should not be allowed to speak. Let me take this to Himanshu Mishra joining us on the broadcast. Himanshu, 3 baje Lok Sabha fir se resume hoga. Abhi government ki kya strategy rahegi?
1: देखिए, अगर राहुल गांधी सदन के अंदर जो उन्होंने बयान दिया है उसके लिए माफी नहीं मांगेंगे तो सरकार की ये स्ट्रेटेजी है कि सीधा जो है जितेंद्र सिंह जो आएंगे और बिल को पास करने के लिए जो है वो सदन के में रखेंगे और उसके बाद जो है जो इस बिल को पास करने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। अगर राहुल गांधी माफी मांगने को तैयार नहीं रहेंगे तो ये जो चर्चा है आगे कंटिन्यू नहीं रहेगी, सरकार जो है वो फिर सीधा बिल पास कराएगी।
0: जी, पर हिमांशु, कुछ ही मिनट पहले हमारे पास कांग्रेस एमपीज के भी रिएक्शंस आए जहां उन्होंने बोला कि राहुल गांधी अपोलोजाइज नहीं करेंगे। जब राहुल गांधी से सीधा ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला देखेंगे, पर जब उन्होंने और बात की तो वो वापस होम मिनिस्टर अमित शाह से ही सवाल पूछते गए।
1: देखिए, इसीलिए राहुल गांधी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और सरकार को ये लगता है जिस तरीके से उन्होंने सदन के अंदर भाषण दिया वो नियमों के तहत होना चाहिए। सरकार की ये भी मांग है स्पीकर से कि जो उन्होंने जिन शब्दों का जिन तथ्यों को गलत तरीके से रखा उनको एक्सपंज किया जाना चाहिए। अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे सदन में तो सरकार जो है इस चर्चा को आगे कंटिन्यू नहीं कराने के पक्ष में है और सीधा जो है इस बिल को पास करने के लिए जो है वो सदन में मूव कर देंगे और यही सरकार की स्ट्रेटेजी है। सरकार का मानना है कि जितनी चर्चा होनी थी वो हो चुकी है और सरकार को ये बिल पास कराना बहुत जरूरी है क्योंकि युवाओं को ये संदेश देना है कि पेपर लीक जैसे मामले पे सरकार जो है वो कितनी गंभीर है और सदन चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा सरकार चर्चा के लिए तैयार है लेकिन जिस तरीके की चर्चा विपक्ष करना चाहता है उस तरीके से जो है अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जिस तरीके के तथ्यों के बिना आरोप लगाए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है और सरकार इस बिल को पास करा के सीधा जो है वो पास कराएगी अगर राहुल गांधी किसी भी तरीके से सदन में अपोलोजी नहीं करते।
0: जी हिमांशु, फिलहाल शुक्रिया करना चाहूंगी इन सभी जानकारी के लिए। एंड रिमेम्बर 3 पीएम इज व्हेन द हाउस इज ऑल सेट टू रिज्यूम। इन द मीनवाइल, राहुल गांधी हु मेड दोस स्कैथिंग एलिगेशंस अगेंस्ट यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेइंग स्ट्रेट अप दैट ही वाज द वन हु हैड ऑर्डर्ड फायरिंग अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स, टेक अ लुक एट दैट एग्जैक्ट सीक्वेंस।
2: मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता।
3: अध्यक्ष महोदय, इस 10 घंटे चलने वाली इस चर्चा के उपरांत मुझे उत्तर देने के लिए अवसर देने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो बड़ा निराशाजनक है ये दृश्य विपक्ष को देख करके कि जब इतने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है, जब इतनी संवेदनशीलता के साथ और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रतिबद्धता के साथ ये विधेयक लाया गया है, तो बजाय इसके कि संजीदगी से इस पर बहस की जाए, सुझाव दिए जाए, इस पर राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। और हमें मुझे हैरत है नेता प्रतिपक्ष LOP जी के व्यवहार पर। उन्होंने जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री तो है ही है, बल्कि इतना अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन है वो, मैं अपने बुक से नहीं बोलूंगा कि यदि कोई व्यक्ति या माननीय सदस्य अपने आप को भी इडियट समझे तो वो नहीं कह सकता, सदन के बाहर जाकर के कह सकता, उसमें नहीं कह सकता। मुझे हैरत है कि नेता प्रतिपक्ष जिनका एक रुतबा रहता है उनको ये बेसिक पार्लियामेंट्री नॉर्म्स का की जानकारी नहीं। और इसलिए जब वो कहते हैं कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो कई बार ये शंका होती है कि क्या वो छात्रों के लिए कर रहे हैं। और अगर ये बच्चे जो हमारा भविष्य भी है, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल भी और विकसित भारत के उज्जवल नागरिक भी, यानी उनको अगर इडियट कहा जाए तो इससे और ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं। मुझे ये भी हैरानगी है कि नेता प्रतिपक्ष को सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक प्रणाली की जो बुनियादी बिंदु है उनकी जानकारी का भी अभाव है। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, SDM देता है, DM देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। फिर इन्होंने ये कहा कि गृह मंत्री जी के साथ 30 गाड़ियों का 30 व्हीकल्स कैवलकेड, शायद इनको गिनती करने में भी दिक्कत है, इन्होंने शायद वो कैवलकेड देखा ही नहीं कि 30 गाड़ियां कभी भी गृह मंत्री जी के साथ नहीं चलती। फिर इन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री जी विदेश गए हुए थे, हम में से किसी की जानकारी में ऐसा नहीं, कहीं कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि विदेश जाने का सवाल ही नहीं, गृह मंत्री जी कभी भी विदेश नहीं गए। तो यानी तथ्यों के बिना, सत्य के बिना, गैर जिम्मेवारी से इस सदन में बात कह देना और फिर कह करके निकल जाना, यह किसी जिम्मेवार नेता और विशेषकर नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार हो ही नहीं सकता। अब ये भी कहा गया, अब इन्होंने एक कहानी सुनाई तो मैं भी ये कहानी सुनाना चाहता हूं। और ये कहानी है 21 जुलाई की। 21 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष ना मालूम क्या सोच करके और किस उम्मीद से जाकर के बैठ गए 7 LKM प्रधानमंत्री आवास के फाटक के बाहर। अब ना मालूम क्या था मन में। अब मेरा विभाग ऐसा है जो शोध के साथ ताल्लुक रखता है, जब इस पर थोड़ा सा मंथन किया तो ये संभावना लगी कि शायद बहुत जमाने से इनको ये हसरत सता रही थी कि देश इनको प्रधानमंत्री चुने और 7 LKM में बिठाए। अब इनकी जब वो हसरत पूरी ना हुई तो निराशा और फ्रस्ट्रेशन से हताश होकर के वो प्रधानमंत्री आवास 7 LKM के दरवाजे पर जा बैठे और फिर जब इनको बड़ी विनम्रता से समझाने का प्रयास किया गया कि ये आपको शोभा नहीं देता तो इन्होंने कहा कि मुझे उठा लिया जाए। ना चाहते हुए भी जब पुलिस को इनसे ये निवेदन करना पड़ा कि आप हट जाइए तो बड़े बेगैरत होकर के वहां से निकले और जैसा कल हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे शुरू में तो ये उस आंदोलन के साथ जुड़ने में परहेज कर रहे थे, इन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन है, लेकिन जब आंदोलन इन्हें लगा कि उठने लगा तो इन्हें जो माननीय सदस्य कल कह रहे थे जेन जी की जबान में MIA हो गया। MIA मतलब मिसिंग इन एक्शन, जो हमारे जेन जी की भाषा है। और दूसरा जैसा कल बताया गया कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग फ्रॉम एक्शन, और इसलिए ये जाकर के वहां बैठे। और फिर जब इन्हें उठाया गया तो जो इन्होंने दृश्य वहां पे दर्शाया अपने उठाए जाने का, तो क्या वो गालिब का शेर है कि बड़े बेगैरत होकर तेरे कूचे से हम निकले, बेआबरू बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। यानी वो जो दबे हुए अरमान है 7 LKM में जाकर के बसने के और नेता बनने के, वो ना जानूं किस किस प्रकार पिछले एक सप्ताह में जाहिर हुए। मैंने 40 से 45 हमारे वक्ता रहे, सबके सुझाव भी नोट किए, बड़े ध्यान से भी सुना। उसमें कुछ एक बातें ऐसी भी आई जो मुझे लगता है कि स्पष्ट करने लायक है। यहां पे ये बताया गया हमारे कांग्रेस के नेता गगन गोगोई जी ने कहा कि मासूम बच्चों पर जुल्मो सितम ढाया गया। शायद उन्हें ये मालूम नहीं कि अटमोस्ट रिस्ट्रेंट वॉज एक्सरसाइज्ड एंड इट वॉज मेड श्योर दैट कैजुअलिटीज डोंट हैपन। लेकिन मुझे लगा बाद में, जैसे मैंने कहा जब शोध किया तो ये लगा कि अपने अनुभव से बोल रहे थे, क्योंकि सन 1969 से लेकर के 1984 तक जो असम में ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन का प्रदर्शन रहा, आंदोलन रहा, वो हमारा रिकॉर्ड बताता है कि 860 इनोसेंट पीपल, मोस्ट ऑफ देम स्टूडेंट्स हैड गॉट किल्ड। उस समय सरकार कांग्रेस की थी, तो इन्हें लगा कि जिस तरह से हम अपने जमाने में आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों को कुचलने के लिए उन्हें मौत के घाट उतारते थे, शायद इन्होंने भी ऐसा किया हो। माननीय प्रियंका गांधी जी ने एक बड़ी रोचक बात की और ये सुनने लायक है। उनका कहना है कि 152 बार पेपर लीक हुआ। ये आंकड़ा कहां से मिला, कोई प्रमाणित नहीं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं। लेकिन उससे भी अधिक दिलचस्प बात ये है, वो कहती हैं कि 150 times the paper leak happened, which affected 750 crore children. I have verified this from the written script which was there in the parliament last night, where I wanted to actually check on myself. 150 paper leaks affecting 750 crore children, which means 7.5 billion. The entire population of the world is just about 8 billion. And you have 7.5 billion children in India. ना मालूम ये आंकड़ा कहाँ से आया, या तो ये मनगढ़ंत है, या तो ये इसमें शरारत है, और या फिर इसमें इग्नोरेंस है। उन्होंने कहा कि सन 2024 के बाद जब ये एक्ट लगा था कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद उन्होंने ये अध्ययन नहीं किया कि 52 FIR लग चुके हैं पिछले 2 वर्ष में जब से ये एक्ट बना, जिसमें से 29 है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स और 2023 है भारत संहिता के लिए। इसी तरह वेणुगोपाल जी ने कहा कि हमने स्कूल बंद कर दिए, शायद वो ये कहते कि हमारे हायर एजुकेशन के अफसरों में 30% बढ़ोतरी करने का ये काम इस सरकार ने किया है। वी हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज फ्रॉम 760 टू 1293। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग विदाउट एविडेंस। द नंबर ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 51,534 टू 64,896। इसी सरकार ने ट्राइबल्स के लिए एकलव्य विद्यालय भी बनाए और इसी सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई, विच इज अ गेम चेंजर एंड विच शुड हैव हैपेंड एक्चुअली। वो एक आपका अधूरा काम और आपका पाप था, उसका नॉमेनक्लेचर भी गलत था। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ नॉमेनक्लेचर यूज इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड अदर प्लेसेस टू रेफर टू पर्सनल मैनेजमेंट एंड यू हैड मेड यंग चिल्ड्रन prisoners of the subjects chosen for them in class 12 by their parents, by their guardians, by their elders. NEP 2020 has liberated our adolescent children from these subjects that they took up for class 12 and given them an aptitudinal freedom. अर्थात यदि कोई माता पिता अपने बच्चे को 12वीं कक्षा में 12वीं जमात में मेडिकल के सब्जेक्ट चुनने के लिए इसलिए हिदायत देते हैं कि उन्हें ये उम्मीद होती है कि वो आगे चल करके डॉक्टर बने और किसी कारण वो नहीं बन पाता, तो पिछले जैसे हालात नहीं कि वो बीएससी भी उन्हीं सब्जेक्ट में करेगा, एमएससी भी उसी सब्जेक्ट में करेगा, पीएचडी भी उसी सब्जेक्ट में करेगा, ना चाहते हुए भी ही बिकम्स प्रिजनर ऑफ द सब्जेक्ट्स। हेयर वी हैव एंट्री एग्जिट। अगर वो डॉक्टर नहीं बना और उस डॉक्टर बने बगैर वो सब्जेक्ट्स को आगे अध्ययन जारी नहीं रखना चाहता तो लिटरेचर में जा सकता है, मैथमेटिक्स में जा सकता है। देयर इज अ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री और इतना ही नहीं, यही वो सरकार है जिसने मेडिकल एजुकेशन में भी, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन के हवाले से बात हो रही है, एम्स की संख्या 7 से लेकर 22 तक बढ़ा दी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 से 844, एमबीबीएस सीट 51,300 से 1,39,000, पोस्ट ग्रेजुएशन सीट 31,100 से 86,300 तक। अब तो हम ये थे कि इस बिल पर गंभीर चर्चा होती, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है, अभी हाल ही में जो पेपर लीकेज हुआ उसकी जानकारी 7 और 8 जुलाई की रात को आई, 12 तारीख को सीबीआई को सौंप दिया गया, तुरंत 13 व्यक्ति हिरासत में ले लिए गए, साथ ही साथ लगभग 92 लोकेशंस पर रेड किया गया और 12 तारीख को ही सीबीआई दिया। और मुझे कहते हुए तसल्ली है कि कल चार्जशीट फाइल हुआ और आज से वो ट्रायल भी शुरू हो गया इस नए कानून के तहत, जिसके अनुसार पूरा का पूरा फैसला 5 महीने में मुकम्मल हो जाएगा, पहले 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन और अगले 3 महीने में। इसलिए जब आप इसके अतिरिक्त अगर आप युवाओं की बात करते हैं, तो इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरी की मानसिकता से बाहर निकालने का काम और अन्य विकल्प भी इसी सरकार ने पैदा किए। जब आपने सरकार छोड़ी तो इस देश में स्टार्टअप की संख्या केवल 350 थी, आज बढ़कर के 2,30,000 से ऊपर हो गई, हम तीसरे दर्जे पर आन खड़े हो गए। और इसलिए बहुत समय ना लेता हुआ मैं सीधा इस विषय इस बजट के विषय में थोड़ी एक बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि आप इस समय आपका भी उस तरह का नहीं है। इस बिल की ये खासियत है कि रिपब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026, इसकी कुछ एक धाराएं मैंने कल भी व्याख्या की थी, कुछ और तफसील में अगर आज जाने का मौका है तो मैं कुछ ही क्षण लेकर के इस बात को कंक्लूड करता हूं। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024 वाज इनएक्टेड इन जनवरी 24, लेकिन हाल ही के घटनाक्रम के बाद ये इस सरकार की संवेदनशीलता है एंड ओपननेस टू एक्सेप्ट द इनपुट्स एंड टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड आल्सो टू लर्न फ्रॉम द एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट्स के लगा कि इसको और स्ट्रिंजेंट बनाया जाए। इस एक्ट के तहत जो अनअमेंडेड था उसमें भी the offense is cognizable, non-bailable, non-compoundable with stringent punishment. लेकिन जब महसूस हुआ कि इसे और ज़्यादा सख्त बनाने की आवश्यकता है तो इसकी कुछ एक धाराओं में संशोधन करने का काम किया गया है। सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10, पर्सन और पर्सन इन्वॉल्व इन मैल प्रैक्टिस, सरकार की अवधि थी 3 से 5 साल एंड फाइन अप टू 10 लाख, उसको बढ़ा करके 5 से 10 साल किया गया और जुर्माना 50 लाख तक। सर्विस प्रोवाइडर, जिसकी परिभाषा मैं कल दे चुका हूं इन माय इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, उनका फाइन था पहले 1 करोड़ तक, उसे बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया और उनको 4 साल के बजाय 8 साल तक कोई और एग्जाम कंडक्ट करने पर बाधित कर दिया गया। डायरेक्टर और मैनेजमेंट की सजा 3 साल से लेकर 10 साल से बढ़ा करके 5 साल से 10 साल तक कर दी गई, फाइन 1 करोड़ से बढ़ा करके 5 करोड़ तक कर दिया गया। और इसी तरह जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, बार बार कुछ एक सदस्यों ने उसका उल्लेख किया है, मैं उस पर भी वाजे कर दूं कि उसके लिए इंप्रिजनमेंट 5 साल से 10 साल से बढ़ा करके 7 से 10 साल कर दी गई, फाइन विच वॉज नॉट लेस देन 1 करोड़ हैज बीन इंक्रीज अप टू 10 करोड़। और इसलिए बहुत सारी यहाँ बातें की गई, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा अगर सुसाइड करता है तो जितना आपको उसका खेद है उससे ज़्यादा हमें है, लेकिन हमें आंकड़ों में ना उलझाइए। हालांकि किसी मृतक बच्चे के आंकड़े का व्याख्या करना कोई शोभा नहीं देता, लेकिन दी रेट ऑफ सुसाइड रिलेटेड टू पेपर लीकेज ऑल्सो हैज रिड्यूस ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। यही कुछ एक बात कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।
4: प्रश्न ये कि श्री एन के प्रेमचंदन द्वारा प्रस्तुत संशोधन 1 को स्वीकृत किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हार गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य के पक्ष में हार गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। निम्नलिखित मान्य सदस्यों के इस विधेयक पर विभिन्न खंडों में आए संशोधन हैं, श्री एन के प्रेमचंदन, विशाल पाटिल, प्रोफेसर स्वागत राय, डीन कोरे कोरिया, नीरज मोरे, आनंद भदौरिया, श्याम कुमार बर्वे, के राधा कृष्णन, ए बी बिडन, लालजी वर्मा, राजेश रंजन, बेनी मानन, शफी परमबिल, अजय कुमार सिन्हा, मनोज कुमार, शशिकांत सेंथिल, डी एम कतिर आनंद। मेरा अनुरोध है अगर आप सब अपने अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो अपने अपने स्थान पर चले जाएं, तो मैं सभी खंडों के सभा के निर्णय के लिए एक साथ लेता हूं। जा रहे हैं आप? प्रश्न है कि खंड 2 से 5 विधेयक बने, जो सदस्य के पक्ष में हार गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ खंड 2 से 5 विधेयक अंग बना। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक अंग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।
3: मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए।
4: प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 30 जुलाई 2026 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: Alright, so that's the latest coming in from Parliament, where you saw Lok Sabha has just been adjourned, also voting that was underway on the bill. Remember, Rajya Sabha has been adjourned to meet again tomorrow on the 30th of July at 11 a.m. And as Lok Sabha Speaker Om Birla also conducted the voting, we saw massive hangama that unfolded in Parliament. For the moment, we can confirm that Lok Sabha has been adjourned till tomorrow until 11 a.m. is when proceedings will resume. And that's the latest breaking news just coming in from Parliament, where the exam reforms bill was passed by voice vote. Those in favour of the bill spoke, and the exam reform bill was passed via voice vote. Lok Sabha has passed the exam reforms bill via voice vote, and this means that the exam bill has seen a passage in the Lok Sabha, which means it will now be brought to Rajya Sabha. And Rajya Sabha, remember, has been adjourned for the day as it is set to resume tomorrow on 30th July at 11 a.m. Lok Sabha has also been adjourned until tomorrow. But certainly the biggest development that comes in as the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 has been passed in Lok Sabha, where voting was conducted, and it was via voice note that we saw a passage of the bill in the Lok Sabha. The anti-paper leak bill that has seen a clear passage in Parliament, where voting was conducted via voice note. And there you see Lok Sabha Speaker Om Birla, who announced that the bill has been passed, which means that the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 has been successfully passed in the Lok Sabha, and it will be brought to the Rajya Sabha next. Remember, just a short while ago, we got you details of how the government was moving to pass the bill, and Kiran Rijiju had also said the passing of the bill was the government's priority. That, of course, as we saw the sort of ruckus that unfolded in Parliament over the remarks that were made by Rahul Gandhi, and even as the opposition came out in full support of what Rahul Gandhi said, but the ruling party members certainly mulling to how they will ask Rahul Gandhi to apologize or even take back his words. But that aside, the focus of the government clearly on the exam reforms bill that has seen a clear passage in the Lok Sabha test. Yes, it has passed the Lok Sabha test. And as Rajya Sabha is set to resume tomorrow at 11 a.m, we saw the sort of ruckus that unfolded in Lok Sabha. But the voting that was conducted via voice note by Lok Sabha Speaker Om Birla, as Lok Sabha has been adjourned until tomorrow. But big development as far as that was the clear priority of the government, to see the passage of the anti-leaks bill. The anti-paper leaks bill, and that has happened. The exam bill has been passed in the Lok Sabha, and it will next be brought to the Rajya Sabha. So Lok Sabha has been adjourned until tomorrow, and that's the big development that has come in as we saw how the monsoon session had begun, today being day 8 of Parliament. And last week, after how the protest turned out, then the opposition that continued to stage protests against the government at the Makar Dwar. No debate that unfolded in Parliament, as the opposition was determined that unless and until Union Education Minister Dharmendra Pradhan resigned, they would not proceed with any sort of debate. That happened on Saturday is when Dharmendra Pradhan had resigned. And Monday, of course, as we did not see any debate unfold. But Tuesday, yesterday, is when the debate had begun. And now a clear passage of the exam bill in the Lok Sabha. Maria Shakir joining us from the newsroom. Maria, biggest development, clear passage in the Lok Sabha.
5: Not much of a surprise, the bill had to be passed because all political parties were on board as far as the intent of the bill is concerned, as far as the larger import of the bill is concerned, that there is a need for making the punishment far more stringent. There is a need for increasing the penalty as well. So as far as this bill is concerned, which has now been passed by the Lok Sabha, of course, it has to be passed by the Rajya Sabha and then it can only become an act. The number of years for punishment has gone up to 10 years. The amount of penalized amount, that amount has gone up to 10 crore. And the entire trial has to complete within 3 months. And also, the deadline investigation has also gone up to 60 days. So in all, the time-bound the action, I would say, is the big takeaway of this reforms bill. The government is sending a message that when the Prime Minister started speaking and addressing the youth of the nation through his Instagram videos, first he spoke about the fast track courts. Then he said that there is an important bill which will be taken up and approved by the cabinet. Of course, that bill now being moved in record time. If you look at it, the bill was first approved by the cabinet, then brought in the Lok Sabha within 4 days, and then now passed by the Lok Sabha. And parallelly, there is also a committee which has been set up under Nandan Nilekani to make it about a technology-driven examination to make it leak-proof. The government is sending a message right now that as far as ensuring that this punishment is harsh, that is what they have done with the passage of this bill. Of course, we saw a heated debate play out with Leader of Opposition demanding an explanation and also a clarification from Home Minister on a number of counts, similar demands coming in from opposition even yesterday. The debate began at 2 p.m. yesterday, continued till 10:30 p.m. in night, and then resumed at 12 noon, and finally the bill has been passed. The bill will be taken up in the Rajya Sabha tomorrow. We'll be witnessing similar heated debate from both the sides, but the parliament is sending a message that as far as the legislative duty of the Parliament of India is concerned, that has been performed, because they realize that there has to be much more that has to be done to plug the leaks which continue with regards to our entire public examination system. That's what has happened today, and I think it's a very important day. The Prime Minister had spoken about it, and the Lok Sabha having passed this bill.
0: Oh yes, absolutely. But the parallel story also, Mario, of what Rahul Gandhi spoke in Parliament with regards to the allegations he's made against Union Home Minister Amit Shah. And inside sources also telling us that the government will certainly seek an apology from Rahul Gandhi or ask him to take back his words. Not something that the Congress will agree to is what Congress MPs had also said, that Rahul Gandhi will not apologize. But you think that again will be the other flashpoint as we'll see the bill in Rajya Sabha tomorrow?
5: Well, I think the action now shifts to the Rajya Sabha. That is the House of Elders. That's where it will be Mallikarjun Kharge who will be speaking on behalf of the Congress party. There'll be leader of a house who is JP Nadda speaking on behalf of the government and the treasury benches. We did see a bit of a face-off play out between the two of them earlier today as well, around 11 a.m. The government insists on Rahul Gandhi's apology. But the work as far as this bill with regards to the Lok Sabha is over. It may play out outside a parliament with a protest and counter-protest happening in front of Makar Dwar, something that we have seen almost every day ever since the parliament session began last week. But whether it will be the Congress will consist, will continue to demand an explanation from Home Minister also in the Rajya Sabha is something that we can expect. But whether the government will insist also and the BJP MPs will insist an apology from Rahul Gandhi in the Rajya Sabha, I'm not too sure about it, because Rahul Gandhi is a member of the House, of the lower house, and he's the leader of opposition, of course, of the Lok Sabha.
0: Mare, any details of the introduction of the bill in the Rajya Sabha tomorrow and how it will pan out, given the sort of arguments that we saw from Rahul Gandhi come in today and the rhetoric also with regards to the questions that Rahul Gandhi is raising against Home Minister Amit Shah and how the debate will really ensue in the upper house?
5: I see this, Suvesha, that just as the Lok Sabha, where the Treasury benches fielded young MPs to send a message that this piece of legislation has to be fronted by them. Anurag Thakur also speaking and making a very, very strong point with regards to what Priyanka Gandhi Vadra had said against her. We will be seeing younger faces, younger MPs speak on behalf of the Treasury benches in favor and in support of this bill. And as far as opposition is concerned, we'll continue to see similar stand. But look, none of the political parties are in principle opposing the bill. They are all in favor of this legislation. The opposition, of course, is questioning the timing. They are saying what happened to the Radhakrishnan panel, which was set up after the 2024 anti-paper leak, which was passed. And then post that, we did see a paper leak happen. And then in order to plug those leaks, there was this Radhakrishnan panel, which was set up. What happened to that report? Why is the Home Minister not speaking on the floor of the Lok Sabha when the crackdown happened against the students in Delhi? Questions being raised also that who really allowed the use of AK-47 in Bihar against the protesting students. So lots of questions with regards to the crackdown is being raised with regards to what happened and the manner in which the government and the police handled the crackdown of the students in various states and Delhi is concerned. But as far as in principle, the nature of this bill or the important points of the bill is concerned, most political parties are in sync. They are of the opinion that there is a need for making it harsher. But of course, the larger question is implementation. That's where the aspect of fast-track courts come in. That's where the fact that one of the important proponents of this bill, one of the important takeaways of this bill is that this entire trial will be completed within 3 months.
0: Having to interrupt you here, but we have this latest reaction from Priyanka Gandhi Vadra.
6: Sir, आपको लगता है बोलने नहीं दिया गया आपको? सर, सरकार कह रही थी आप apologize कर लीजिए. If you take back your words of speech, complete कर सकते हैं.
7: Anything you have to say, Rahul sir, on what the government has done?
8: सबने देखा.
9: राहुल जी को बोलने नहीं दिया गया. आप स्पीकर से मिलने गई थी, कुछ बात नहीं बन पाई थी. मास्क सरकार कह रही है कि माफी मांग ले राहुल जी. हम सरकार कह रही है कि राहुल जी माफी मांग ले तो वो अपने बयान को वापस ले ले. कैसे देखते हैं आप इसको कि बेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सब कुछ पता है. तो यहाँ पे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं. प्रियंका गांधी ने हमसे ये कहा और जब हमने राहुल गांधी से पूछा तो उन्होंने बोला मैं पूरी बात बताऊंगा. और इसको लेकर जो है कांग्रेस बेहद आक्रामक तेवर इख्तियार किए हुए है. पूरा जो कांग्रेस के तमाम सांसद है वो वेल के भीतर चले गए. जब हम मौजूद थे वहां पे हमने अपनी आंखों से देखा कि लगातार नारेबाजी होती रही. वहां पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस पूरे बिल पर बयान देते रहे. और अपने आप में ये वो वक्त है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष बिल पर चर्चा कम लेकिन जो सड़क पर घटा उसको लेके संसद में खूब जोर हंगामा है बरपा. मौसमी
0: All right, quickly taking this back to my colleague Maria, who continues to stay with us from the newsroom. Maria, as far as the Congress is concerned, Rahul Gandhi is saying that they will hold a press conference where they'll put out the entire story. We understand the government's position. They're demanding an apology from Rahul Gandhi. But so far, the Congress is saying that he will not apologize.
5: Yes, and now it will be playing out outside Parliament. So if there will be a press conference by Rahul Gandhi, expect another counter press conference that will be done by one of the MPs or a minister from the BJP headquarters also. So this will be playing out now outside Parliament, even as this important piece of legislation has been passed by the Lok Sabha. Now all eyes will be on the nature of debate which will be playing out in the House of Elders or the upper house, which is the Rajya Sabha, that is going to happen tomorrow. But the larger message that the government and the legislatures of this country are sending to the protesting students who have now gone back to their homes, to the youth of the nation, is that they are making efforts to plug the leaks. Now what is needed is we'll be waiting and seeing as to what are the recommendations that will be coming in from the high powered task force which has been set up by the Prime Minister under Nandan Nilekani. It has top subject experts from across the country, which also includes a logistic expert in Amrit Lal Meena, who has served as a former chief secretary in Bihar, and other officials, which also includes the present IIT Madras director, Professor Kamakoti, and others. You know, they are really specialists in their field. The question that has been raised by opposition, particularly with regards to what happened to the recommendations by the Radhakrishnan panel, which was given after the 2024 paper leak, remained unanswered. Hmm. But the government's response so far has been, look at what has happened in the Congress rule states. Look at what has happened before 2014 with regards to leaks which continue to happen in public examinations. But I think what is happening today, of course, this is going to play out now outside Parliament totally, with press conference by Rahul Gandhi giving his version, one of the government ministers or perhaps one of the MPs talking about what really played out on the floor of Parliament and how the demand of the opposition perhaps will be responded to in right. the due course. But the question of apology, I think the Congress party is adamant that there's no question that Rahul Gandhi will apologize.
10: All right, Maria, many thanks for getting us those details. We also have Aishwarya Paliwal joining us on the broadcast with the very latest. Aishwarya, clear passage of the bill in the Lok Sabha, government sending out a strong message that we are with the students and we are here to tighten the system when it comes to exam leaks. But in the meanwhile, Aishwarya, as I request you to stay on with us, more breaking news just coming in. Rajya Sabha has passed the bill to make insult to Vande Mataram a criminal offence. Big breaking news coming in as far as the Vande Mataram bill is concerned, and the Rajya Sabha having passed the bill to make insult to Vande Mataram a criminal offence. The very bill that the government had been pushing from the start of the monsoon session, but did not even make its way, given the fact that the focus completely shifted to the protests and paper leak. But here, Aishwarya, I want to come back to you on this very point, because the intent of the government, the focus on the government very clearly on the Vande Mataram bill, on the exam bill seeing a clear passage in the Lok Sabha, Vande Mataram bill passed in the Rajya Sabha, and any insult to Vande Mataram is a criminal offence.
11: Well, definitely, you know, Surisha, these were some of the two important things that the government was speaking about. When we speak about what happened in the Lok Sabha, the government is very, very clear. There were certain questions that you want answered, and the government has given very clear answers to all the questions that were raised by the main opposition parties. In fact, when Rahul Gandhi was also speaking, there were certain questions that he had raised. All those questions have now been answered. The government also says that you stood with the students. You were saying that you are taking part in the protest because this is a genuine protest, a protest where students are coming out and speaking about the kind of hardships that they have had to face. Then why are you not letting us debate in the parliament a bill which in fact will make sure that these kind of instances do not happen in future? So with regards to what we are seeing happening here, it was the opposition which said that there were certain questions which were not being answered, and slowly, Surisha, we see. We also saw how the opposition had become adamant and was asking for Home Minister Amit Shah to come on the floor of the parliament and to give response. So that is something that did not happen. Simultaneously, Surisha, we did see how in the Rajya Sabha also, there was this bill that the government has often spoken about. If you insult Vande Mataram, now this will become punishable. We will see this bill being tabled in the Lok Sabha tomorrow also. We should be expecting fireworks, Suresha.
10: Oh yes, absolutely, Aishwarya. I want to thank you for getting us those latest details. So that's what has happened in Parliament. Clear passage of the exam bill in the Lok Sabha, and the Vande Mataram bill passed in the Rajya Sabha. We'll continue to get you the very latest. For the moment, we have to slip into a very short commercial break. We'll be back on the other side. Do stay tuned to India Today.
12: Are watching India Today.
13: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
14: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
15: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.

0: Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.
1: After heavy rainfall, disrupting connectivity between several rural areas and the state capital. No vehicles were passing through when the ground gave way, averting what could have been a major tragedy.
2: This bridge took almost 1 year to complete. It almost costed 16 crore rupees and could not stand for 16 days. This is the first rainfall that this bridge was observing, and so far it is constructed on the famous Tones River, which is flowing in spate.
1: The incident has sparked outrage among residents. The bridge was opened just 17 days ago. It was built after an older bridge was washed away last year. With the route shut again, villagers are now forced to take long detours to reach Dehradun.
3: बस ये सरकार ने क्या भ्रष्टाचार कर रखा है कुछ समझ नहीं आता है 16 करोड़ लगा के 16 करोड़ में से 16 लाख भी मुझे नहीं लगता कि इसमें लगे होंगे
4: इसको जो है कि जो कार्य है वो संतुष्टिपूर्ण कराया जाए ताकि आने वाले भविष्य में पब्लिक को या जनता को किसी प्रकार का सामना ना करना पड़े
5: 3 घंटे 4 घंटे के अंदर उसे ओपन किए जाने का विभागीय अधिकारियों के द्वारा कहा गया है और चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी ऐसी पीडब्ल्यूडी वहां मौके पे हैं उनके द्वारा रिपोर्ट भी प्रिपेयर की जा रही है और जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं इस पूरे उसमें या विभागीय अधिकारी उन पे एक्शन भी इंश्योर किया जा रहा है
1: द ओपोजिशन हैज अटैक्ड द बीजेपी गवर्नमेंट ओवर अलेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल लैप्सेस डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी एंड अ थरो प्रोब
6: बहुत भ्रष्टाचार हुआ है और ये पुल ठीक से नहीं बना है इसकी गुणवत्ता की जांच नहीं की गई है और क्या गनीमत रही
7: कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई क्या गारंटी है कि 10 मिनट बाद यहाँ पर घटना नहीं हो सकती थी कोई जान माल को खतरा हो सकता था ये भ्रष्टाचार की जो है पुल एक बानगी है केवल आप देख सकते हैं इसकी सच्चाई आज जनता के सामने आ चुकी है
8: So sorry.

0: are watching India Today.
1: उन पर किस प्रकार से संपूर्ण रूप से पूर्ण विराम लगे और किस प्रकार से जो माफिया, जो व्यक्ति, जो संस्थान उसमें इन्वॉल्व होते थे उसको रोकने के लिए एक सख्त कानून आज बना है। 45 एमपी के बोलने के क्रम में आज राहुल गांधी जी ने भी भाग लिया और राहुल गांधी जी ने भी अपने मंतव्य को रखा, मगर हुआ वही जो हम सबको संदेह था, हुआ वही जो राहुल गांधी जी के साथ हमेशा होता है। झूठ का पुलिंदा, देश को भ्रमित करने की कोशिश, सदन के अंदर हंगामा खड़ा करने का प्रयास, क्योंकि आप झूठ, अमर्यादित शब्द इन सब का प्रयोग करोगे तो सत्यापन के लिए आपको बोला जाएगा, अमर्यादित शब्द हटाए जाएंगे। तो आज वही हुआ है। राहुल गांधी जी के पास कोई तथ्य नहीं थे। राहुल गांधी जी के एक एक करके बिंदुवार, सिलसिलेवार तरीके से कहां कहां उन्होंने झूठ बोला और सत्य क्या है, मैं आपके समक्ष इस प्रेस वार्ता में रख रहा हूं। नंबर एक, और पूरे गंभीरता के साथ, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज राहुल गांधी जी के उस तथ्य को, जो अतथ्य है और जो झूठ है, जिसको तथ्य के रूप में पेश करने की कोशिश पार्लियामेंट में की कि स्टूडेंट्स के सदन मार्च, पार्लियामेंट मार्च के ऊपर गोली चलाई गई, इसका खंडन किया जाता है कड़े शब्दों में। आज राहुल गांधी ने कहा स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई गई। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट शब्दों में कहती है, आधिकारिक रूप से कहती है, सारे बातचीत के बाद कहती है कि गोली नहीं चलाई गई। राहुल गांधी जी ने झूठ बोला कि गोली चलाई गई, गोली नहीं चलाई गई। उन्होंने कहा कि गोली चलाने का जो फरमान था, जो ऑर्डर था, जो हुक्म था, वो देश के गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने दिया। झूठ, क्योंकि गोली चली नहीं तो ऑर्डर कहां से आएगा। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं यहां पर, क्योंकि सभी को ये तथ्यात्मक बातें शायद मालूम ना हो, मगर जो अपने घरों में बैठकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं वह भी इस तथ्य को जान लें कि जहां भी कहीं मार्च या प्रोटेस्ट होता है, वहां अगर आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस होती है, वहां एक मजिस्ट्रेट होता है जो वहां तत्कालीन उस समय तत्क्षणात निर्णय लेता है, ऑन द स्पॉट निर्णय लेता है कि उस मौके पर लाठीचार्ज होना चाहिए या नहीं, कैसी परिस्थिति है, उस समय पर बल का प्रयोग होना चाहिए या नहीं, यह निर्णय देश के गृहमंत्री नहीं लेते हैं, वहीं मौजूद मजिस्ट्रेट लेते हैं। तो गोली चली नहीं, किसी ने गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया और लोकल मजिस्ट्रेट मौजूद होते हैं, यह सब विषय नेता प्रतिपक्ष को मालूम होना चाहिए। और मैं नहीं कह रहा हूं कि मालूम नहीं होगा, उन्हें मालूम नहीं होगा भी तो, बीच बीच में मैं देख रहा था प्रियंका जी आके उनके कान में कुछ बता रही थी, बाकी लोग उनके कान में कुछ बता रहे थे, अर्थात वो उनको सत्य से अवगत करा रहे होंगे। मगर फिर भी जागते हुए जो लोग सोना चाहते हैं उनको जगाया नहीं जा सकता है। राहुल गांधी जी भ्रम फैलाने के लिए गोली चलाने की बात कही, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा कि देश के गृहमंत्री कहां हैं, क्यों नहीं मौजूद हैं। राहुल जी,

0: फेयर प्रैक्टिस, इस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस के बिल को जिस मंत्री जी ने, माननीय जितेंद्र सिंह जी ने ले किया था टेबल पे, जिस पे जवाब भी माननीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने दिया, वो सदन के गृह में पूरी तरह से मौजूद थे। जिस समय राहुल गांधी जी कह रहे थे, उस समय भी जितेंद्र सिंह जी वहां मौजूद थे और लिख रहे।
1: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे।
2: Looking to trade in your current vehicle? We'll get you the most for your trade. At Buyers Volkswagen, we've been putting customers first since 1897. And when you're ready to buy, our team will do whatever it takes to help you drive home in the Volkswagen that's right for you.
3: Drive home a new 26 Volkswagen Tiguan S, front-wheel drive, 229 for 36 months with $3,999 due at signing.
2: Experience the buyer's difference and see why generations of customers continue to choose us. Visit us at columbusvw.com or by the airport.
3: Offer ends 8/31/26. See dealer for details.
4: Jack FM, now playing what we want, commercial-free on TuneIn Premium.
5: What about me, Jack? What about me?
4: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
6: Well played, Jack. Well played.
4: Jack FM, playing what we want.

0: workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
1: एशियन गेम की तैयारी है और आगे ओलंपिक ये मेरा फर्स्ट मेडल है और आने वाले गेम में और अच्छे अच्छे मेडल लगते हैं।
2: Sharmila's family in Rewari erupted in joy when they saw her on the podium.
3: बहुत अच्छा लगा है, इतने सालों बाद मेडल आया है, गोल्ड मेडल, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत संघर्ष किया है मैंने, बहुत ज्यादा 6-7 साल जाके अब मेडल आया है।
4: मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुई थी, नाची कूदी बहुत अच्छा किया मैंने, पटाखे वगैरह सब कुछ चलाए थे, बहुत खुश हुए थे।
2: The success on global stage has come after years of struggle for Sharmila. She contracted polio at the age of 2. At the age of 26, her husband left her. She later married Ajit, who encouraged her to pursue para-athletics. In 2023, she had to sell her house to fund her training. But Sharmila did not give up on her dreams. The Commonwealth Games gold is recognition for her years of hard work. With Desh Raj Singh, Bureau Report, India Today.

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
2: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
3: पहली बात मैं कहूंगा, राहुल गांधी जी ने अगर इडियट शब्द का इस्तेमाल स्टूडेंट्स के लिए किया है तो हमें घोर आपत्ति है। अगर उन्होंने अपने आप के लिए इडियट शब्द का इस्तेमाल किया है तो स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने खुद एक्नॉलेज किया वो क्या है, देर से ही सही, माना तो सही क्या है। और दूसरा, आज गुरु पूर्णिमा है, राहुल गांधी जी ने एक संदेश कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं को दिया है कि इडियट को गुरु माना है। और जहां तक गृह मंत्री जी की बात है, इससे बड़ा झूठा आरोप, बड़ा आरोप बगैर तथ्यों के लगाना कि राहुल गांधी जी की आदत बन गई सुर्खियां बटोरने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए सदन का दुरुपयोग किया गया। राहुल गांधी जी को गृहमंत्री नहीं, देश से भी माफी मांगनी चाहिए। कोई गोली नहीं चली, कोई फायरिंग नहीं हुई, और ये जिम्मेदारी डीएम के पास होती, पूरे देश को पता है, लेकिन कांग्रेस के नेता को पता नहीं। थोड़ा पढ़ लें भाई, ना सदन के नियम पता है और ना सड़क पर आंदोलन कर रहे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है, इसके भी उनको नियमों का पता नहीं है। ये क्या चलाएंगे पार्टी को? माफी मांगनी चाहिए गृहमंत्री से, राहुल गांधी जी को, और देश से माफी मांगनी चाहिए।
4: आरएसएस को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया है कि हर एक जगह वाइस चांसलर आरएसएस के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं।
3: आरएसएस का फोबिया इस परिवार को बहुत पहले से है भाई, पीढ़ी दर पीढ़ी है, और ये पीड़ा मैं इनकी समझ सकता हूं। पर इतना ही सुझाव दूंगा राहुल जी, शाखा जाइए, थोड़ी समझ आएगी, थोड़ी शिक्षा मिलेगी, थोड़ी राष्ट्रभक्ति मिलेगी, और राष्ट्र की शक्ति बनने का प्रयास करिए, राष्ट्र को तोड़ने वालों की शक्ति के साथ शक्ति में जोड़िए।

Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
1: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
0: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
2: We are over, Jimmy.
3: Hey, life mein scratches to aayenge. Gaadi ke scratches ko to Cosmo PP ab samal lega. Aap apna dekh lo.
4: पहली बात मैं कहूंगा, राहुल गांधी जी ने अगर इडियट शब्द का इस्तेमाल स्टूडेंट्स के लिए किया है तो हमें घोर आपत्ति है। अगर उन्होंने अपने आप के लिए इडियट शब्द का इस्तेमाल किया है तो स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने खुद एक्नॉलेज किया वो क्या है, देर से ही सही, माना तो सही क्या है। और दूसरा, आज गुरु पूर्णिमा है। राहुल गांधी जी ने एक संदेश कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं को दिया है कि इडियट को गुरु माना है। और जहां तक गृह मंत्री जी की बात है, इससे बड़ा झूठा आरोप, बड़ा आरोप बगैर तथ्यों के लगाना कि राहुल गांधी जी की आदत बन गई सुर्खियां बटोरने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए सदन का दुरुपयोग किया गया। राहुल गांधी जी को गृह मंत्री नहीं, देश

0: से भी माफी मांगनी चाहिए। कोई गोली नहीं चली, कोई फायरिंग नहीं हुई, और ये जिम्मेदारी डीएम के पास होती, पूरे देश को पता है, लेकिन कांग्रेस के नेता को पता नहीं। थोड़ा पढ़ लें भाई, ना सदन के नियम पता है और ना सड़क पर आंदोलन कर रहे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है, इसके भी उनको नियमों का पता नहीं है। ये क्या चलाएंगे पार्टी को? माफी मांगनी चाहिए गृहमंत्री से, राहुल गांधी जी को, और देश से माफी मांगनी चाहिए।
1: आरएसएस को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया है कि हर एक जगह वाइस चांसलर आरएसएस के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं।
0: आरएसएस का फोबिया इस परिवार को बहुत पहले से है भाई, पीढ़ी दर पीढ़ी है, और ये पीड़ा मैं इनकी समझ सकता हूं। पर इतना ही सुझाव दूंगा राहुल जी, शाखा जाइए, थोड़ी समझ आएगी, थोड़ी शिक्षा मिलेगी, थोड़ी राष्ट्रभक्ति मिलेगी, और राष्ट्र की शक्ति बनने का प्रयास करिए, राष्ट्र को तोड़ने वालों की शक्ति के साथ शक्ति में जोड़िए।

0: Organics, honest herbal heritage.
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, life में scratches तो आएंगे. गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा. आप अपना देख लो.

0: But the big story that we are breaking at the moment, after Dharmendra Pradhan, the Congress is now targeting Home Minister Amit Shah, this time over the use of pellet gun controversies during the protests in Delhi last week. Rahul Gandhi has now gone to the extent of demanding Amit Shah's resignation. Rahul Gandhi says Home Minister is responsible for the brutality against the students. The BJP has hit back, called Rahul Gandhi a liar. The Congress government has, remember, BJP says Congress government opened fire on students in Assam in the past, brutally killed more than 800 students. Let's listen in first to Rahul Gandhi and the BJP response.
1: There are two possibilities. Possibility number one is he gave the order to shoot people with pellet guns, to beat people with lathis with nails, to use electric batons on people, or he didn't know it was happening. Well, if he didn't know it was happening, he's incompetent. And if he ordered it, he's culpable. There's no third possibility. He either ordered it, or he has no idea what's going on in his ministry, and he's incompetent. In either case, he has to go.
2: हुआ वही जो राहुल गांधी जी के साथ हमेशा होता है, झूठ का पुलिंदा, देश को भ्रमित करने की कोशिश, सदन के अंदर हंगामा खड़ा करने का प्रयास, क्योंकि आप झूठ, अमर्यादित शब्द, इन सब का प्रयोग करोगे तो सत्यापन के लिए आपको बोला जाएगा, अमर्यादित शब्द हटाए जाएंगे। तो आज वही हुआ है। राहुल गांधी जी के पास कोई तथ्य नहीं थे।
0: Now all this dramatic face-off has followed after what happened in Parliament, where Rahul Gandhi spoke on the public examination bill. During the course of that bill, he virtually blamed the Home Minister, claimed that it was under the Home Minister Amit Shah's orders that pellet guns were fired on protesters. The BJP, led by Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju, said that Rahul Gandhi was being irresponsible, demanded that Rahul Gandhi provide proof or apologize to the Home Minister and to the people of the country. High drama during that debate. Listen in.
3: And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. I saw the Home Minister. I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Speaker, sir. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today. Because he's not here today. Because he is scared. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. Speaker, sir, the use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister.
4: मिनिस्टर का कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर का कॉपी आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए, आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी, आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौरने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। ऐसा हम बिल्कुल मान्यता नहीं दे सकते हैं। आप नहीं बोलना चाहते तो मत बोलिए, लेकिन गलत बात नहीं बोल सकते।
5: नेता प्रतिपक्ष को सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक प्रणाली की जो बुनियादी बिंदु है उनकी जानकारी का भी अभाव है। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं।
0: And joining me now is my first guest tonight is the former Home Minister of the country, senior Congress leader and Member of Parliament, P. Chidambaram, joins me. Appreciate your joining us, Mr. Chidambaram. Your leader, Rahul Gandhi, the leader of the opposition, created a real stir in Parliament today in the Lok Sabha debate when he said that Amit Shah authorized the use of pellet guns against the students. To quote him, those students were shot on the instructions of Amit Shah. Now, clearly, the government is up in arms saying, where is the proof of any of this? This is a total lie. Rahul Gandhi must apologize to the Home Minister on the floor of Parliament. How do you respond? Can Rahul Gandhi have said it so boldly that the pellet guns were used on the instructions of the Home Minister? Where is the proof of that?
6: If the leader of the opposition made a statement in Parliament, I assume that he will take responsibility for that statement. I can't comment on a statement made in the Lok Sabha. I know that pellet guns were used. Two shots were fired from pellet guns. Whether it was from one gun or two guns, I can't say. And three people suffered pellet injuries. That is a fact. Now, somebody must have authorized the pellet guns be used on the protesters.
0: No, the reason I'm asking you this is when Rahul Gandhi was asked to clarify on this, he then said that only two things could have happened. Either the Home Minister instructed the firing of pellet guns or he didn't know about it. In one case, he's culpable. In the other case, it's incompetent. The question is, on a sensitive matter like this, shouldn't you be more careful? When you make remarks in Parliament, there will be those who will say, if you have proof that the Home Minister instructed it, by all means, go for Amit Shah. In the absence of hard proof, do you believe the Home Minister is either culpable or incompetent because in the heart of Delhi, pellet guns were used against protesters?
6: My answer is the same as your first question. The point is, pellet guns were used. Somebody must be directly responsible. Somebody must be vicariously responsible. Somebody must be accountable. Now, which category does the Home Minister fall? I can't say. But either he's directly responsible, or he's vicariously responsible, or he's accountable.
0: No, I will press you one more time on this before moving. You've been a Home Minister of the country. Are you saying that every time pellet guns are used, the Home Minister is directly responsible or vicariously responsible?
6: I can't remember any occasion apart from Jammu and Kashmir where pellet guns were used during my time as Home Minister in the rest of India. By the central forces. If somebody can point out an occasion where pellet guns were used, I will answer that question.
0: Okay, let me point out, as Home Minister in 2010, during the UPA government, you oversaw the security response to the Kashmir Valley summer unrest, which resulted in the deaths of 112 protesters in police firing. And it was under your tenure, sir, that pellet guns were first introduced and deployed by the CRPF as a less lethal alternative to live ammunition in crowd control situation in JNK. Are you saying that it was okay to do it in 2010 in Jammu and Kashmir? It's not okay to do it in the middle of the national capital?
6: I answered the previous question by saying, except in Jammu and Kashmir. There is a separate SOP for Jammu and Kashmir. And Jammu and Kashmir was riots, was a terrorist-infested state. Mm-hmm. And therefore, there was a separate SOP for Jammu and Kashmir. And in fact, in 2016, after the Narendra Modi government came into office, they improved upon or expanded the SOP for Jammu and Kashmir. We are not talking about Jammu and Kashmir. You are moving away from Delhi to talk about something happened in Jammu and Kashmir 16 years ago that is irrelevant to the use of pellet guns on peaceful protesters, unarmed protesters in Delhi.
0: I'll come back to what happened in Delhi, but you are drawing a distinction then between Jammu and Kashmir and Delhi. Am I correct? You're saying Jammu and Kashmir has a very different SOP, and therefore, in Jammu and Kashmir, you believe that CRPF can be authorized to use pellet guns, but not in the national capital. Is that the distinction you're making?
6: I can't recall the terms of the SOP. I answered the first or second question by saying, except in Jammu and Kashmir, there's an SOP for the rest of India. Mm-hmm. There is an SOP for Jammu and Kashmir. Mm-hmm. You please look into the SOPs and share it with me, and I will explain the SOPs. I can't remember word and text 16 years later.
0: Right. No, I'm saying, sir, there was a TVSN Prasad Committee, 29th August 2016, its recommendations were pellet guns should be used in the rarest of rare cases, use of other non-lethal weapons for crowd control like chili grenade shells. Tear gas shells should be made of plastic so that being on fired, it may melt and cannot be picked up by the protesters. So there are recommendations that you use this as per the rules that I have in the rarest of rare cases. Do you believe what happened in Delhi was the rarest of rare cases where the police can say doctrine of necessity was... Is the reason why we use pellet guns?
6: No, not at all. The Delhi situation was not the rarest of rare cases. This SOP applies to the rest of India. And if I remember correctly, the SOP for the rest of India, again, keep Jammu and Kashmir aside, rest of India, the pellet guns are used only by the anti-riot police, the RAF, or maybe CRPF. Yes. It is not used against unarmed protesters, civilian protesters, peaceful protesters. This report that you rely upon, which is reflected in the SOP, bans or prohibits the use of pellet guns or any other lethal weapon against unarmed peaceful protesters. The Delhi situation was unarmed protesters, civilian protesters, peaceful protesters. There was no justification at all. I repeat, there was no justification at all to issue pellet guns to the RAF and for one or two jawans at the RAF to use the pellet guns. There were the two errors. One, the issue of pellet guns. One, the issue of pellet guns. And the second is the use of pellet guns in the situation in Delhi. In fact, the other situation, which was reported in Bihar or AK-47 is worse. The AK-47 is carefully preserved in an armory. In fact, I've tweeted that not only the Jawan use the AK-47, the armory in charge who issued the AK-47 should be hauled up.
0: Can I though circle back to the immediate question of instructions? Official records, as per a general diary entry, Mr. Chidambaram, filed at the Parliament Street Police Station, show RAF personnel fired plastic pellet rounds and other munitions on the directions of a Deputy Commissioner of Police rank officer after alleged stone pelting. So I want to get it very clear. In a situation like this, where the diary shows a DCP rank officer gave the instructions for the RAF to use it, because as you say, only the RAF is authorized as per the SOP to use it, not the Delhi police. Is the Home Minister of the country responsible or accountable, in your view, for what a DCP has authorized?
6: What else will the diary entry say? What else will a diary entry say? It will not say that you authorized or I authorized. Mm-hmm. It will only say an immediate senior authorized. Mm-hmm. The point is whether anyone else in the hierarchy was responsible, either directly responsible or vicariously responsible or politically accountable. That is the issue. What else will a diary entry say? What else will a...
0: But your leader, sir, I come back to it. Your leader is holding the Home Minister accountable now and wants his resignation. He's even gone to say he wants the Home Minister to resign. Now, the point is, is this pure politics? Is this pure politics, or is it a desire to find out what were the circumstances that led to the RAF firing pellet guns, which clearly, as you say, you believe should not have been done in the first place? So, does the opposition, does the Congress party want a genuine inquiry into it, or do you want the Home Minister's head?
6: We have already demanded an inquiry. Some people have demanded, some parties have demanded a parliamentary committee to inquire. Some people have demanded a judicial commission to inquire. So inquiry has been demanded. It's only in an inquiry that who gave the orders and who gave the ultimate orders, who gave the blessings, will be found out. Understanding the distinction between direct responsibility, vicarious responsibility, and political accountability.
0: So what do you hold the Home Minister guilty of? Direct responsibility, vicarious responsibility, or political accountability?
6: I didn't make this speech.
0: No, he's your leader. Mr. Chidambaram, let me be clear. There can be two interpretations. One is that Rahul Gandhi jumped the gun, or that Rahul Gandhi wants to hold the Home Minister politically accountable. Or you believe the Home Minister is politically accountable or directly responsible or culpable.
6: You have access to the LOP, and you can ask him what he mean by demanding the resignation.
0: Mr. Chidambaram, you're distancing yourself from Rahul Gandhi's statement in a way. Do you believe that the Home Minister should come to Parliament to answer this question?
6: You are interrupting me.
0: Because no inquiry is going to name the Home Minister of the country, sir.
6: I don't know. A proper, fair inquiry, a detailed inquiry, may or may not. I don't know. Has an inquiry been ordered? Have you been called, have you or your reporters been called to testify in the inquiry? I can only say that a speech in the Lok Sabha can be interpreted several ways. I didn't make the speech, I didn't hear the speech, but since the responsible leader of the opposition made a speech, I assume that he will take responsibility for the speech and explain his speech.
0: Can I ask you a final question? A petition has been filed in the Supreme... Just a moment.
6: What is unusual about a speech in a debate in Parliament? In a speech in a debate in Parliament, all kinds of statements are made.
0: But when you say, he said very, very firmly that the Home Minister authorized it. He said it very, very firmly. That's all I'm saying. That's what he said in Parliament.
6: I assume and that therefore, anyone, You are anxious to answer the question and ask the question. I did not hear the speech, but I assume that a member of parliament who makes a speech will assume responsibility for what he said in parliament. And anyway, parliamentary speeches are fully protected from inquisitive questions like yours in the constitution. You know that.
0: Okay. Can I therefore ask you a final question? A petition filed in the Supreme Court by former Intelligence Bureau Special Director Yashovardhan Azad, along with two victims of pellet injuries, is calling for a complete ban on pellet guns for use against civilian assemblies. Do you agree with that? What if a civilian assembly turns violent if there is stone pelting? Do you believe there should be a total ban?
6: Please understand the SOP. Rarest of rare cases, in a riot situation, pellet guns are the last resort. There are several graded responses in the SOP. Please read the SOP. There are graded responses in the SOP. It's only less lethal methods can be adopted, and the last of it is pellet guns. The situation in Delhi at the Jantar Mantar was nowhere near that situation. Nowhere near that situation. There were several graded responses that could have been tried, and not all jawans of the RAF, not all jawans of the Delhi police, all constables of the Delhi police used pellet guns. Either one or two RAF constables used the pellet gun. So it is a egregious mistake. It's an egregious mistake that the jawan or jawans of RAF were armed with pellet guns. Mm-hmm. Who issued the pellet gun? Who ordered the pellet guns to be used? These can only be established in an inquiry.
0: Okay, let me leave it there, Mr. Chidambaram. I appreciate you taking the time off and giving us your experience as Home Minister and responding to my questions tactfully, of course, dodging a few, but I'll leave it at that. Appreciate you joining me on the show tonight. Thank you.
6: You are trying to be witness and asking me to be witness. We are not both witnesses to what happened in Delhi Jantar Mantar. Okay, thank you.
0: I'll leave it there. I appreciate you joining me. Thank you so much. And joining me now, we've heard from Mr. Chidambaram. Let's go over to Leher Singh Sinoya. He is BJP Rajya Sabha MP. Good to have you on the show, Leher Singh ji. Chidambaram ji ka saaf kehna hai ki jo Delhi mein hua, jis tarah se pellet gun ka istemal hua, wo keh rahe hain bilkul galat hai. Inquiry honi chahiye aur jawabdehi honi chahiye. There should be accountability. But your government is not even willing to accept that accountability. The minister in the floor of the house said nothing, aisa kuch nahi use hua hai. Jabki case diary batata hai ki pellet guns were used, do teen victim mile hai. Kya kahenge? Aap log Rahul Gandhi ko doshi thehra rahe hai, lekin you are not taking any accountability. Koi jawab nahi nahi sarkar ki, koi jawab nahi nahi Grah Mantralay ki or the Home Minister ki.
7: राजदीप जी, मैं आदरणीय चिदंबरम जी का बहुत सम्मान करता हूं. देश के गृह मंत्री रहे हैं जी. मैं आदरणीय चिदंबरम जी का बहुत सम्मान करता हूं. वो देश के गृह मंत्री रहे हैं, हमारे मुर्दिन्य नेता हैं, और मैं चाहता हूं सर राजदीप जी, चिदंबरम जी अपनी पार्टी में बात करें, उनको समझाएं. कुछ बातों की चर्चा संसद में होनी चाहिए, डिबेट में नहीं होनी चाहिए. पुलिस वालों को भी पिटाई हुई है, पुलिस वालों को भी मारा गया, उनको गाली गलौज किया गया है, गंदी गंदी भाषा में बोले गए हैं. पुलिस वालों के परिवार है, उनकी भी समस्याएं होती है, तो इसके लिए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया हुआ है और जांच होने दीजिए. और कुछ बातें अगर संसद चलने देंगे आदरणीय राहुल गांधी जी, तो हम संसद में इन बातों का चर्चा करेंगे और संसद में अमित शाह जी और सब लोग इस बात का जवाब देंगे, स्पष्टीकरण देंगे. और जब जहां जब कोर्ट कर रही है तो कोर्ट इस बात कर लिए सब
0: नहीं, सबूत नहीं, मांग नहीं, रही है. लहर सिंह जी अभी तक नहीं, अभी तक तो अमित शाह जी नहीं नहीं सर लहर सिंह जी अमित नहीं नहीं लहर सिंह जी अभी जी, तक अमित शाह जी ने कोई जवाब नहीं दिया, उस पर चुप्पी साधी रखी है। दिल्ली पुलिस ने पहले दिन से कहा हमने कोई पैलेट गन नहीं चलाई, फिर जब हमने इन्वेस्टिगेट किया, हिंदू अखबार ने इन्वेस्टिगेट किया, सच्चाई लोगों के सामने आई, अब सरकार कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। इंस्ट्रक्शंस किसने दिए, किसने कहा पुलिस को पैलेट गन फायर करने के लिए, ये सब सवालों का जवाब देना चाहिए कि नहीं, ये झूठ बोलकर तो नहीं होगा, किसी को तो जवाब लेनी पड़ेगी। अगर किसी की आंख चली जाए पैलेट गन की वजह से, कोई जवाबदेही नहीं होगी सरकार की।
7: हाँ।
0: सवाल पूछना तो वाजिब है, डिबेट में तो होना चाहिए, सवाल पूछने में क्या आपत्ति है?
7: अरे सर, उसका जवाब तो व्यवस्था देगी, और व्यवस्था कहां देगी जहां उनको देना है, व्यवस्था के डिबेट नहीं कर सकती आपके सामने, डिप्टी कमिश्नर के व्यवस्था आपके डिबेट नहीं कर सकते, वो जवाब देंगे कोर्ट के सामने देंगे, इंक्वायरी कमिटी के सामने देंगे, और ये प्रश्न अगर संसद में पूछे जाते तो अमित शाह भी उनका जवाब दे देंगे। अब अमित शाह आपको तो जवाब नहीं देंगे, किसी एक को तो जवाब नहीं देंगे, अमित शाह जरूर जवाब देंगे, संसद में जवाब देंगे, और इस पर चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं राजदीप जी कहना चाह रहा हूं, कृपया मेरी बात ध्यान से सुने, ये लोकतंत्र के साथ बड़ा मजाक हो रहा है। आज सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी संसद में आने के बजाय सड़क की लड़ाई लड़ना चाह रही है, क्या हो रहा है? मैं 60 वर्ष से राजनीति में हूं, मैंने इतना राजनीति का पतन कभी नहीं देखा। और मैं 2022 में जब संसद में आया था, बड़ी उम्मीद लेकर के आया था, कर्नाटक से आया था, मैं राजस्थान का व्यक्ति हूं, कर्नाटक में रह रहा हूं, मैं कई मुद्दे उठाऊंगा राजस्थान के भी, कर्नाटक के भी, और देश के भी, युवाओं के भी, तो मैं लगातार तैयारी करता हूं, और संसद चलने नहीं दी जाती है। मैं आपको बताऊं, कभी तो ईडी के नाम पे, कभी एसआर के नाम पे, कभी ईवीएम के नाम पे, इनका यह स्वभाव बन गया है कि जब संसद आती सत्र का समय आता है, वो विदेश से आते हैं और कोई न कोई मुद्दे के बहाने पर झगड़ा करके संसद नहीं चलने देते हैं, ताकि कई बातों पर अगर ये संसद चलने देते हैं तो मैं समझता हूं कि एजुकेशन प्रणाली को लेकर जी, तो उसके बारे में जो बड़ी जी
0: सर आप कह रहे हैं, आप विपक्ष को दोषी ठहरा रहे हैं लहर सिंह जी, कि विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा है। विपक्ष एक मिनट सर, सर विपक्ष सर खरगे जी आप ही के कर्नाटक से आते हैं, उनका कहना है कम से कम अमित शाह जी संसद के सामने आए, पूरा ब्यौरा दे कि ये पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ या नहीं, किसने इंस्ट्रक्शन दी, क्या हुआ। ये अगर गृह मंत्री नहीं दे तो विपक्ष कहेगी कि संसद में नहीं देंगे तो कहां देंगे। Should the Home Minister not give a reply inside Parliament? उनका कहना है जब तक वो नहीं दे तब तक हम क्यों संसद चलने दे।
7: हाँ तो अरे संसद चलेगी तो जवाब देंगे ना। आप क्या कह रहे हैं राजदीप जी, मैं खरगे जी से बड़ी आशाएं थी, कर्नाटक से आते हैं, वहां के बहुत बड़े नेता हैं, हमें आशा थी कि वो आके पार्टी को गाइड करेंगे, राहुल जी को मदद करेंगे, संसद कैसे चले जाती है, सरकार को कैसे घेरा जाता है, सरकार में कमी होती है, हमेशा कमी होती है, और हमारी सरकार भी रही होंगी, उन पर चर्चा करने के लिए आपको तैयारी करके सदन में आना पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी न तो किसी और को करने देते हैं और न खुद चर्चा करते हैं, जब वो चर्चा में भाग लेते हैं तो गाली गलौज की भाषा, जो नफरत की राजनीति का ये नहीं करने वाले, नफरत की ही राजनीति करते हैं और संसद नहीं चल नहीं पाते का इसका ध्यान रखते हैं। जैसे प्रियंका जी को मैं सुनता हूं, तो प्रियंका जी जब बोलती है अच्छा बोलती है, अच्छा व्यवहार रखती है, लोगों से मिलना जुलना करती है, लेकिन जब राहुल गांधी जी आते हैं तो वो उसको प्रियंका जी को भी दबके कुछ ऐसी बातें उठानी पड़ती है जो सही नहीं है। अब मैं आप सोचिए, कभी नरवानी की किताब के मुद्दा लेकर वो किताब उठाते हैं और कभी कुछ बात करते हैं, और देखिए एजेंसियों का जो आप कह रहे हैं, तो ये जब से इमरजेंसी लगी उसके बाद में कुछ कुछ कमियां एजेंसियों में आई है, क्योंकि इमरजेंसी का उदाहरण है कि उस पूरे देश को सबसे बड़ी तानाशाह इंदिरा जी रहे, अगर आजादी के बाद में अगर किसी को तानाशाह कहा जा सकता है
0: तो इमरजेंसी 75 में
7: केवल इंदिरा गांधी जी को।
0: सर लहर सिंह जी, लहर सिंह जी, और लहर सिंह जी इमरजेंसी 1975 में थी, वी आर इन 2026। इफ पैलेट गन्स हैव बीन यूज्ड अगेंस्ट सिविलियन प्रोटेस्टर्स, क्या गवर्नमेंट की जवाबदेही नहीं है? टू एक्सप्लेन, जब गवर्नमेंट सरकार की जवाबदेही होती है, जब आप विपक्ष में थे आप सरकार को पूछते थे, अब जब विपक्ष सवाल पूछती है आपके मंत्री नहीं रहते हैं। आई रिपीट, व्हाट स्टॉप्स द होम मिनिस्टर फ्रॉम कमिंग टू पार्लियामेंट एंड आंसरिंग द क्वेश्चन? ऑल ही हैज टू डू इज आंसर द क्वेश्चन, मेक अ स्टेटमेंट। बाकी सब आते हैं लेकिन गृह मंत्री खुद नहीं आते।
7: राजदीप जी मेरी बात भी सुनिए जरा, मैं 2025 की बात करता हूं, 2025 में अपने को युवा कहने वाले राहुल गांधी को देश के युवाओं का विश्वास प्राप्त नहीं कर पाए हैं, इसीलिए युवाओं ने अपना अलग मोर्चा खोल करके अपनी बात रखनी चाहिए और मिसगाइडेड हो गए और अवांछनीय तत्व उसमें घुस गए और उन्होंने सारे उनको माहौल को बिगाड़ दिया। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को स्पंदन किया है, उनकी बात को माना है, समझा है और हमारे मंत्री का इस्तीफा भी दिलवाया और उन्होंने कड़ी कार्रवाई की और नया बिल भी ला रहे हैं। तो युवाओं की बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सुन रहे हैं और राहुल गांधी को उन्होंने अपना नेता नहीं माना। राहुल गांधी जी ने क्या किया, 20 दिन की छुट्टियों के आने के बाद में वो यहां प्रधानमंत्री निवास पर आ गए, वहां तो इनके जंतर मंतर नहीं गए। अगर युवाओं के उसमें विश्वास होता तो राहुल गांधी वहां जाते। आपको समझाइए राहुल गांधी जी, आप तो राजदीप जी उनको सबको जानते हैं कांग्रेस में और मैं भी कांग्रेस सब बड़े नेताओं को जानता हूं, सब लाचार हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा सबके लिए, सबसे मेरी अच्छी मित्रता है और मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उसमें विश्वास करता हूं, सबका साथ सबका विश्वास। आपने देखा होगा मैं ऑपोजिशन के सभी एमपी से मेरे अच्छे संबंध, चाहे डीएमके के हो, चाहे कम्युनिस्ट के हो, चाहे तिरुचि शिवा हो, चाहे जॉन बिट्टास हो, मैं सबसे अच्छा व्यवहार रखता हूं, उनकी भावनाएं समझता हूं और उनकी भावनाओं को मैं यथासंभव हमारे प्रधानमंत्री तक भी पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो हमारे हम सब बातों के लिए ओपन है लेकिन संसद तो चलने दी जाए और मैं समझता हूं विपक्षी पार्टियों को भी सोचने की बात है राजदीप जी, अगर ये राहुल गांधी के स्कूल से बाहर नहीं आए तो ये विपक्षी पार्टियों का भी नुकसान हो जाएगा, होता रहा है। जी सर,
0: आई विल आस्क यू वन लास्ट टाइम, विल अमित शाह जी कम टू पार्लियामेंट एंड रिप्लाई ऑन दिस इश्यू, यस और नो? क्या अमित शाह जी खुद आएंगे और रिप्लाई करेंगे, यस और नो?
7: देखिए, अवर गवर्नमेंट विल कम इन द हाउस, दे विल आंसर ऑल द रिक्वायर्ड क्वेश्चंस इफ दे रेज द प्रॉपर मैनर, प्रॉपर रूल्स एंड प्रोसीजर। सी, देयर आर रूल्स एंड प्रोसीजर इन द लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ, सो दे हैव टू रेज द सब्जेक्ट्स इन द नॉर्मल वे एंड अवर गवर्नमेंट विल ऑलवेज आंसर सर, ऑलवेज आंसर एंड दे आंसर्ड एंड रिक्वायर्ड इवन प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो कम टू हाउस, व्हाट इज देयर, देयर इज नो बिग इशू इन दैट।
0: ओके ओके, आई लीव इट देयर
7: जी,
0: आई लीव इट देयर, आई लीव इट देयर। थैंक यू सो मच
7: फॉर
0: जॉइनिंग मी हियर ऑन द न्यूज़ टुडे, थैंक यू वेरी मच,
7: थैंक यू,
0: यस
7: थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
0: ओके, लेट्स टर्न देयर टू व्हाट, हाउ दिस पैलेट गन डिबेट इज प्लेइंग आउट ऑन द ग्राउंड इन अ पार्ट ऑफ द कंट्री वेयर पैलेट गन्स हैव बीन यूज्ड सेवरल टाइम्स इन द पास्ट। आई एम टॉकिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वेयर द रियल सफरिंग has taken place, where at times civilian protesters, in some cases unarmed, have been targeted through pellet guns. Therefore, questions are being raised over whether Jammu and Kashmir should be treated differently to the rest of the country. One of the most recognizable survivors of pellet gun injuries, Insha Mushtaq, is now speaking out. Her story is instructive. She's calling for a complete ban on pellet guns. Here's Mir Farid's report.
8: Insha Mushtaq was just 14 when her life changed forever. In the summer of 2016, Shopian was on the boil over the killing of Hizbul Mujahideen terrorist Burhan Wani. Insha had gone to close the window of her room when a barrage of pellets hit her eyes.
9: My eyes की वजह से ही चली गई है दोनों आंखें। जब मुझे 2016 में मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है।
8: इंशा इज कॉलिंग फॉर अ बैन ऑन पैलेट गन्स।
9: जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ वहां पे बहुत सारों को पैलेट्स लगे, वहां पे पैलेट लगे, बट ये पैलेट नहीं लगने चाहिए, चाहे वो या हिंदुस्तान में भी कहीं पे भी।
8: She claims the government has not fulfilled promises made to her.
9: एक्स चीफ मिनिस्टर जो महबूबा मुफ्ती जी थी, उन्होंने मुझे गैस एजेंसी दी है, अभी तक वो चालू नहीं हो गई, 10 साल हो गए। एलजी के पास भी मैं गई, एलजी से मैंने फेस टू फेस बात की, यहाँ पे शोपियान में उसका विजिट था उस टाइम, मैंने उससे फेस टू फेस बात की, मुझे उस टाइम उसने दिया है, वो अभी तक नहीं पूरा हुआ।
8: Pellet guns used in Delhi on July 20th against protesters agitating against paper leaks were first introduced in Jammu and Kashmir in 2010 by the then Omar Abdullah government to quell violent protests. During the 2016 violence, according to official figures, 16 were killed and 6,000 injured. PDP chief Mehbooba Mufti was heading the coalition government with the BJP during the period.
10: People like Insha, who are now advocating that pellet guns should be banned, And while the debate has raged post the Gen Z protests, but in Kashmir, we have seen pellet gun in action, and even the people who have used it and the people who have suffered, they will tell you that this quite definitely is not a non-lethal means of crowd control. With Campus and Tariq Lone, Meet Farid, Srinagar for India Today.
0: Okay, let's get some Twitter responses. Our big question today was, is Rahul Gandhi justified in targeting the Home Minister Amit Shah on the pellet controversy? Namrata Sharma says, Amit Shah's resignation is non-negotiable. The Home Minister must be held accountable for the use of pellet guns, lathi charge and other alleged excesses against young people demanding a foolproof education system. He cannot evade Parliament when the nation demands accountability. Shiva, SSR 99 says, usage of pellet guns on the protesting students by the RAF was totally unjustified and uncalled for. And since the RAF comes under the Home Minister, definitely Amit Shah has a lot to answer for. Okay, let's turn from there to our other big story today. And our other big story today is coming from Mumbai, where from premium membership clubs to shocking hygiene lapses. Some of Mumbai's most elite clubs, restaurants, are in the eye of a storm. Their kitchens are being closed, licenses suspended. Why? Because cockroaches, moldy food and dirty kitchens are being found in some of the kitchens of these exclusive clubs. The Maharashtra FDA has now cracked down, suspending the licenses of multiple food joints, both on the street as well as in leading clubs and restaurants. Mustafa Sheikh has this report.

0: राहुल गांधी जी ने अगर इडियट शब्द का इस्तेमाल स्टूडेंट्स के लिए किया है तो हमें घोर आपत्ति है। अगर उन्होंने अपने आप के लिए इडियट शब्द का इस्तेमाल किया है तो स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने खुद एक्नॉलेज किया वो क्या है, देर से ही सही, माना तो सही क्या है। और दूसरा, आज गुरु पूर्णिमा है, राहुल गांधी जी ने एक संदेश कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं को दिया है कि इडियट को गुरु माना है। और जहां तक गृह मंत्री जी की बात है, इससे बड़ा झूठा आरोप, बड़ा आरोप बगैर तथ्यों के लगाना कि राहुल गांधी जी की आदत बन गई सुर्खियां बटोरने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए सदन का दुरुपयोग किया गया। राहुल गांधी जी को गृह मंत्री नहीं, देश से भी माफी मांगनी चाहिए। कोई गोली नहीं चली, कोई फायरिंग नहीं हुई, और ये जिम्मेदारी डीएम के पास होती, पूरे देश को पता है, लेकिन कांग्रेस के नेता को पता नहीं। थोड़ा पढ़ लें भाई, ना सदन के नियम पता है और ना सड़क पर आंदोलन कर रहे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है, इसके भी उनको नियमों का पता नहीं है। ये क्या चलाएंगे पार्टी को? माफी मांगनी चाहिए गृह मंत्री से, राहुल गांधी जी को, और देश से माफी मांगनी चाहिए।
1: आरएसएस को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया है कि हर एक जगह वाइस चांसलर आरएसएस के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं।
0: आरएसएस का फोबिया इस परिवार को बहुत पहले से है भाई, पीढ़ी दर पीढ़ी है, और ये पीड़ा मैं इनकी समझ सकता हूं। पर इतना ही सुझाव दूंगा राहुल जी, शाखा जाइए, थोड़ी समझ आएगी, थोड़ी शिक्षा मिलेगी, थोड़ी राष्ट्रभक्ति मिलेगी, और राष्ट्र की शक्ति बनने का प्रयास करिए, राष्ट्र को तोड़ने वालों की शक्ति के साथ शक्ति में जोड़िए।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: एंटरटेनमेंट ब्यूरो, इंडिया टुडे।
1: मजहब के नाम पर इंसानियत की हत्या हो रही थी।
2: मोहल्ले दिया गलियां उन्हें खून हो जानी है।
3: होएगा तो ही जरब जाएगा।
2: पंगा लेना है?
4: इरादा तो नहीं है पर इतराज भी नहीं है।
5: Latest episode of India's Got Latent is making headlines once again. But this time, not just for its jokes. A members-only bonus episode leaked online within hours of its release, flooding the internet with clips and even the full show. So what exactly happened? Take a look.
6: अरे पहले लोगों को हाय हेलो करो भाई। Come on, make some noise for him, man.
7: What happens on India's Got Latent?
6: You're not used to being the main lead, but...
8: नहीं सही है यार, ऐसा है ना, क्या होता है कि जब मेन वाला भी आता है मेरे सामने वो दिखता नहीं है, तो अब टाइम आ गया है कि...
7: Never stays on India's Got Latent.
6: क्या बात है यार, but माइक ना थोड़ा यहाँ रखो पास में, ऐसे कर जैसे करण जौहर के रखते हो ना आप।
7: A paywall was supposed to keep the latest episode exclusive. Instead, it became the internet's hottest talking point overnight.
8: यार फिल्म का नाम है भाई तेरा स्टार है। मैं 16 साल
6: भाई तेरा स्टार होता तो निहारिका होती एक्ट्रेस।
8: नहीं, अंदर से मैं सुपरस्टार हूँ ना, इसलिए निहारिका एक्ट्रेस है।
6: अरे सॉरी यार निहारिका यार, get used to this.
9: चलेगा चलेगा, I'm used to it.
6: Just 3 more hours of this.
7: Just when fans thought they would have to wait for the official release, social media was already buzzing with viral clips. And reports even claimed that the entire episode had surfaced online.
10: I think it was born after ARB got cancelled.
7: So what exactly happened?
11: क्या रे? हाँ? Shampoo conditioner मस्त है तो कुछ भी बोलेगा क्या?
6: Are we ready to start the show? So we have a banger panel.
7: Unlike previous episodes, which premiered simultaneously on Netflix and YouTube. This special bonus edition, which featured a star-studded panel of Munawar Farooqi, Raghav Juyal, Niharika NM and Rohan Joshi, was released exclusively for YouTube members. Giving Samay Raina's loyal subscribers early access as a reward for supporting the show.
6: तो गौतम भाई,
7: बट इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड अ पे वॉल इज ऑफन जस्ट अ स्पीड बम्प।
6: तो व्हाट इज दिस यार?
12: सो दिस इज कॉल्ड एज द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग, जिसमें रॉक्स
7: विद इन आवर्स ऑफ इट्स रिलीज क्लिप्स एंड रिपोर्टेडली इवन द फुल एपिसोड हैड बिगन सर्कुलेटिंग ऑनलाइन।
6: हाँ, क्या कह रहे थे बैलेंस के बारे में?
7: Giving fans an early glimpse of the panel's trademark banter, contestants and performances. Ironically, this was a possibility Samay Raina had already anticipated. Ahead of the release, the comedian appealed to viewers not to circulate the members-only episode, reminding them that it was created exclusively for paying members who had stood by him throughout his journey.
13: बहुत टाइम तक मेरे साथ वो लोग ने साथ दिया है मेरा, तो उनके लिए मैंने स्पेशली एपिसोड डाला है। एक शुरुआत है, बहुत सारे एपिसोड आएंगे मेंबर्स के लिए। अगर ये एपिसोड किसी ने भी लीक किया ना, तो एक इस्तीफा मैं भी मांगूंगा फिर तुमसे।
7: डिस्पाइट द रिक्वेस्ट, द इंटरनेट डिड व्हाट इट डज बेस्ट, एंड वंस द क्लिप्स बिगन सर्कुलेटिंग, देयर वाज नो स्टॉपिंग द फ्रेंजी।
6: Why you just don't like women at all?
7: The episode was packed with the show's trademark blend of unfiltered humor.
14: मतलब obviously बातें हैं ना खराब, मतलब लड़कों को पता होगा यार।
7: Celebrity banter and spontaneous roast sessions.
8: फिल्म आ रही है भाई तेरा स्टार है।
7: Among the biggest viral moments was Samay Raina's playful dig at Alia Bhatt.
8: Alia Bhatt ने भी खुद ही बताया था।
7: Which quickly became meme material across social media. One of the most talked about moments saw Raghav promoting his upcoming film Bhai Tera Star Hai, only for Samay Raina to hilariously derail the promotion with his signature comic timing.
6: Inki movie aa rahi hai 30th July ko, Bhai Tera Star Hai, in theaters you can go and watch it, and agar bahut barish ho rahi hai aur aapko ghar pe dekhna hai OTT pe to 1st August ko wo,
7: earning loud laughter from everyone on stage.
8: Hey, mat kar yaar, ताली क्या बात है भाई, भाई थिएटर में आ रही है, थिएटर में देखनी है, ओटीटी में नहीं आ रही है।
9: मैं भी लगी शर्त
8: आमिर खान जैसा गेम।
7: Reacting to the leak, Samay took to social media and urged viewers to watch the episode through official channels instead of pirated links. While reflecting on his own college days. Meanwhile, the members

0: Well, if he didn't know it was happening, he's incompetent. And if he ordered it, he's culpable. There's no third possibility. He either ordered it, or he has no idea what's going on in his ministry, and he's incompetent. In either case, he has to go.
1: हुआ वही जो राहुल गांधी जी के साथ हमेशा होता है, झूठ का पुलिंदा, देश को भ्रमित करने की कोशिश, सदन के अंदर हंगामा खड़ा करने का प्रयास, क्योंकि आप झूठ, अमर्यादित शब्द, इन सब का प्रयोग करोगे तो सत्यापन के लिए आपको बोला जाएगा, अमर्यादित शब्द हटाए जाएंगे। तो आज वही हुआ है। राहुल गांधी जी के पास कोई तथ्य नहीं थे।
2: Now all this dramatic face-off has followed after what happened in Parliament, where Rahul Gandhi spoke on the public examination bill. During the course of that bill, he virtually blamed the Home Minister, claimed that it was under the Home Minister Amit Shah's orders that pellet guns were fired on protesters. The BJP, led by Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju, said that Rahul Gandhi was being irresponsible, demanded that Rahul Gandhi provide proof or apologize to the Home Minister and to the people of the country. High drama during that debate. Listen in.
3: And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. I saw the Home Minister.
4: जिनका विदेह के वो बैठे हैं।
3: I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Sticker, sir. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today. Because he's not here today. Because he is scared. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. Speaker, sir, the use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister.
5: मिनिस्टर का कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर का कॉपी आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए, आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी, आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौरने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। ऐसा हम बिल्कुल मान्यता नहीं दे सकते हैं। आप नहीं बोलना चाहते तो मत बोलिए, लेकिन गलत बात नहीं बोल सकते।
6: नेता प्रतिपक्ष को सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक प्रणाली की जो बुनियादी बिंदु है उनकी जानकारी का भी अभाव है। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, SDM देता है, DM देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं।
2: And joining me now is my first guest tonight is the former Home Minister of the country, senior Congress leader and Member of Parliament, P. Chidambaram, joins me. Appreciate your joining us, Mr. Chidambaram. Your leader, Rahul Gandhi, the leader of the opposition, created a real stir in Parliament today in the Lok Sabha debate when he said that Amit Shah authorized the use of pellet guns against the students. To quote him, those students were shot on the instructions of Amit Shah. Now, clearly, the government is up in arms saying, where is the proof of any of this? This is a total lie. Rahul Gandhi must apologize to the Home Minister on the floor of Parliament. How do you respond? Can Rahul Gandhi have said it so boldly that the pellet guns were used on the instructions of the Home Minister? Where is the proof of that?
7: If the leader of the opposition made a statement in Parliament, I assume that he will take responsibility for that statement. I can't comment on a statement made in the Lok Sabha. I know that pellet guns were used. Two shots were fired from pellet guns. Whether it was from one gun or two guns, I can't say. And three people suffered pellet injuries. That is a fact. Now, somebody must have authorized the pellet guns be used on the protesters.
2: No, the reason I'm asking you this is when Rahul Gandhi was asked to clarify on this, he then said that only two things could have happened. Either the Home Minister instructed the firing of pellet guns or he didn't know about it. In one case, he's culpable. In the other case, it's incompetent. The question is, on a sensitive matter like this, shouldn't you be more careful? When you make remarks in Parliament, there will be those who will say, if you have proof that the Home Minister instructed it, by all means, go for Amit Shah. In the absence of hard proof, do you believe the Home Minister is either culpable or incompetent because in the heart of Delhi, pellet guns were used against protesters?
7: My answer is the same as your first question. The point is, pellet guns were used. Somebody must be directly responsible. Somebody must be vicariously responsible. Somebody must be accountable. Now, which category does the Home Minister fall? I can't say. But either he's directly responsible, or he's vicariously responsible, or he's accountable.
2: No, I will press you one more time on this before moving. You've been a Home Minister of the country. Are you saying that every time pellet guns are used, the Home Minister is directly responsible or vicariously responsible?
7: I can't remember any occasion, apart from Jammu and Kashmir, where pellet guns were used during my time as Home Minister in the rest of India. By the central forces. If somebody can point out an occasion where pellet guns were used, I will answer that question.
2: Okay, let me point out, as Home Minister in 2010, during the UPA government, you oversaw the security response to the Kashmir Valley summer unrest, which resulted in the deaths of 112 protesters in police firing. And it was under your tenure, sir, that pellet guns were first introduced and deployed by the CRPF as a less lethal alternative to live ammunition in crowd control situation in J&K. Are you saying that it was okay to do it in 2010 in Jammu and Kashmir? It's not okay to do it in the middle of the national capital?
7: I answered the previous question by saying, except in Jammu and Kashmir. There is a separate SOP for Jammu and Kashmir. And Jammu and Kashmir was riots, was a terrorist-infested state, and therefore there was a separate SOP for Jammu and Kashmir. And in fact, in 2016, after the Narendra Modi government came into office, they improved upon or expanded the SOP for Jammu and Kashmir. We are not talking about Jammu and Kashmir. You are moving away from Delhi to talk about something happened in Jammu and Kashmir 16 years ago that is irrelevant to the use of pellet guns on peaceful protesters, unarmed protesters in Delhi.
2: I'll come back to what happened in Delhi, but you are drawing a distinction then between Jammu and Kashmir and Delhi. Am I correct? You're saying Jammu and Kashmir has a very different SOP, and therefore in Jammu and Kashmir, you believe that CRPF can be authorized to use pellet guns, but not in the national capital. Is that the distinction you're making?
7: I can't recall the terms of the SOP. I answered the first or second question by saying, except in Jammu and Kashmir, there's an SOP for the rest of India. There is an SOP for Jammu and Kashmir. You please look into the SOPs and share it with me, and I will explain the SOPs. I can't remember word and text 16 years later.
2: Right. No, I'm saying, sir, there was a TVSN Prasad committee 29th August 2016. Its recommendations were pellet guns should be used in the rarest of rare cases, use of other non-lethal weapons for crowd control like chili grenade shells. Tear gas shells should be made of plastic so that being on fired, it may melt and cannot be picked up by the protesters. So there are recommendations that you use this as per the rules that I have in the rarest of rare cases. Do you believe what happened in Delhi was the rarest of rare cases where the police can say doctrine of necessity was is the reason why we use pellet guns?
7: No, not at all. The Delhi situation was not the rarest of rare cases. This SOP applies to the rest of India. And if I remember correctly, the SOP for the rest of India, again, keep Jammu and Kashmir aside, rest of India, the pellet guns are used only by the anti-riot police, the RAF, or maybe CRPF. Yes. It is not used against unarmed protesters, civilian protesters, peaceful protesters. This report that you rely upon, which is reflected in the SOP, bans or prohibits the use of pellet guns or any other lethal weapon against unarmed peaceful protesters. The Delhi situation was unarmed protesters, civilian protesters, peaceful protesters. There was no justification at all. I repeat, there was no justification at all to issue pellet guns to the RAF and for one or two jawans at the RAF to use the pellet guns. There were the two errors. One, the issue of pellet guns. One, the issue of pellet guns. And the second is the use of pellet guns in the situation in Delhi. In fact, the other situation, which was reported in Bihar or AK-47 is worse. The AK-47 is carefully preserved in an armory. In fact, I've tweeted that not only the Jawan use the AK-47, the armory in charge who issued the AK-47 should be hauled up.
2: Can I though circle back to the immediate question of instructions? Official records, as per a general diary entry, Mr. Chidambaram, filed at the Parliament Street Police Station, show RAF personnel fired plastic pellet rounds and other munitions on the directions of a Deputy Commissioner of Police rank officer after alleged stone pelting. So I want to get it very clear. In a situation like this, where the diary shows a DCP rank officer gave the instructions for the RAF to use it, because as you say, only the RAF is authorized as per the SOP to use it, not the Delhi police. Is the Home Minister of the country responsible or accountable, in your view, for what a DCP has authorized?
7: What else will a diary entry say? What else will a diary entry say? It will not say that you authorized or I authorized. It will only say an immediate senior authorized. The point is, whether anyone else in the hierarchy was responsible, either directly responsible or vicariously responsible or politically accountable. That is the issue. What else will a diary entry say? What else will a...
2: Your leaders, I come back to it. Your leader is holding the Home Minister accountable now and wants his resignation. He's even gone to say he wants the Home Minister to resign. Now, the point is, is this pure politics? Is this pure politics or is it a desire to find out what were the circumstances that led to the RAF firing pellet guns, which clearly, as you say, you believe should not have been done in the first place? So, does the opposition, does the Congress party want a genuine inquiry into it, or do you want the Home Minister's head?
7: We have already demanded an inquiry. Some people have demanded, some parties have demanded a parliamentary committee to inquire. Some people have demanded a judicial commission to inquire. So inquiry has been demanded. It's only in an inquiry that who gave the orders and who gave the ultimate orders, who gave the blessings, will be found out. Understanding the distinction between direct responsibility, vicarious responsibility, and political accountability.
2: So what do you hold the Home Minister guilty of? Direct responsibility, vicarious responsibility, or political accountability?
7: I didn't make this speech.
2: No, he's your leader. Mr. Chidambaram, let me be clear. There can be two interpretations. One is that Rahul Gandhi jumped the gun, or that Rahul Gandhi wants to hold the Home Minister politically accountable. Or you believe the Home Minister is politically accountable or directly responsible or culpable.
7: You have access to the LOP and you can ask him what he mean by demanding the resignation.
2: Mr. Chidambaram, you're distancing yourself from Rahul Gandhi's statement in a way. Do you believe that the Home Minister should come to Parliament to answer this question?
7: You are interrupting me.
2: Because no inquiry is going to name the Home Minister of the country, sir.
7: I don't know. A proper, fair inquiry, a detailed inquiry, may or may not. I don't know. Has an inquiry been ordered? Have you been called, have you or your reporters been called to testify in the inquiry? I can only say that a speech in the Lok Sabha can be interpreted several ways. I didn't make the speech, I didn't hear the speech, but since the responsible leader of the opposition made a speech, I assume that he will take responsibility for the speech and explain his speech.
2: Can I ask you a final question? A petition has been filed in the Supreme Court.
7: What is unusual about a speech in a debate in Parliament? In a speech in a debate in Parliament, all kinds of statements are made.
2: But when you say, he has said very, very firmly that the Home Minister authorized it. He said it very, very firmly. That's all I'm saying. That's what he said in Parliament.
7: I assume and that therefore, anyone... you are anxious to answer the question and ask the question. I did not hear the speech, but I assume that a member of Parliament who makes a speech will assume responsibility for what he said in Parliament. And anyway... parliamentary speeches are fully protected from inquisitive questions like yours in the Constitution. You know that.
2: Okay. Can I therefore ask you a final question? A petition filed in the Supreme Court by former Intelligence Bureau Special Director Yashovardhan Azad, along with two victims of pellet injuries, is calling for a complete ban on pellet guns for use against civilian assemblies. Do you agree with that? What if a civilian assembly turns violent if there is stone pelting? Do you believe there should be a total ban?
7: Please understand the SOP. Rarest of rare cases, in a riot situation, pellet guns are the last resort. There are several graded responses in the SOP. Please read the SOP. There are graded responses in the SOP. It's only less lethal methods can be adopted. And the last of it is pellet guns. The situation in Delhi at the Jantar Mantar was nowhere near that situation. Nowhere near that situation. There were several graded responses that could have been tried. And not all jawans of the RAF, not all jawans of the Delhi police, all constables of the Delhi police used pellet guns. Either one or two RAF constables used the pellet gun. So it is a egregious mistake. It's an egregious mistake that the jawan or jawans of RAF were armed with pellet guns. Mm-hmm. Who issued the pellet gun? Who ordered the pellet guns to be used? These can only be established in an inquiry.
2: Okay, let me leave it there, Mr. Chidambaram. I appreciate you taking the time off and giving us your experience as Home Minister and responding to my questions tactfully, of course, dodging a few, but I'll leave it at that. Appreciate you joining me on the show tonight. Thank you.
7: You are trying to be witness and asking me to be witness. We are not both witnesses to what happened in Delhi Jantar Mantar. Okay, thank you.
2: I'll leave it there. I appreciate you joining me. Thank you so much. And joining me now, we've heard from Mr. Chidambaram. Let's go over to Leher Singh Siroya. He is BJP Rajya Sabha MP. Good to have you on the show, Leher Singh ji. Chidambaram ji ka saaf kehna hai ki jo Delhi mein hua, jis tarah se pellet gun ka istemal hua, wo keh rahe hain bilkul galat hai. Inquiry honi chahiye aur jawabdehi honi chahiye. There should be accountability. But your government is not even willing to accept that accountability. The minister in the floor of the house said nothing. Aisa kuch nahi use hua hai. Jabki case diary batata hai ki pellet guns were used. Do teen victim mile hai. Kya kahenge? Aap log Rahul Gandhi ko doshi thehra rahe hai. Lekin you are not taking any accountability. Koi jawab dehi nahi sarkar ki. Koi jawab dehi nahi Grah Mantralay ki or the Home Minister ki.
8: राजदीप जी, मैं आदरणीय चिदंबरम जी का बहुत सम्मान करता हूं. देश के गृह मंत्री रहे हैं जी. मैं आदरणीय चिदंबरम जी का बहुत सम्मान करता हूं. वो देश के गृह मंत्री रहे हैं, हमारे मुर्दनीय नेता हैं. और मैं चाहता हूं राजदीप जी, चिदंबरम जी अपनी पार्टी में बात करें, उनको समझाएं. कुछ बातों की चर्चा संसद में होनी चाहिए, डिबेट में नहीं होनी चाहिए. पुलिस वालों को भी पिटाई हुई है, पुलिस वालों को भी मारा गया, उनको गाली गलौज किया गया है, गंदी गंदी भाषा में बोले गए हैं. पुलिस वालों के परिवार है, उनकी भी समस्याएं होती है. तो इसके लिए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया हुआ है और जांच होने दीजिए. और कुछ बातें अगर संसद चलने देंगे आदरणीय राहुल गांधी जी, तो हम संसद में इन बातों का चर्चा करेंगे और संसद में अमित शाह जी और सब लोग इस बात का जवाब देंगे, स्पष्टीकरण देंगे. और जब जांच जब कोर्ट कर रही है तो कोर्ट इस बात कर लिए सब सबूत मांग रही है.
2: पर लहर सिंह जी अभी तक तो अमित शाह जी अभी तक अमित शाह जी ने कोई जवाब नहीं दिया. उस पर चुप्पी साधी रखी है. दिल्ली पुलिस ने पहले दिन से कहा हमने कोई पैलेट गन नहीं चलाई. फिर जब हमने इन्वेस्टिगेट किया, हिंदू अखबार ने इन्वेस्टिगेट किया, सच्चाई लोगों के सामने आई. अब सरकार कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ. इंस्ट्रक्शंस किसने दिए, किसने कहा पुलिस को पैलेट गन फायर करने के लिए? ये सब सवालों का जवाब देना चाहिए कि नहीं? ये झूठ बोलकर तो नहीं होगा. किसी को तो जवाब नहीं लेनी पड़ेगी. अगर किसी की आंख चली जाए पैलेट गन की वजह से, कोई जवाब नहीं होगी सरकार की.
8: हाँ.
2: सवाल पूछना तो वाजिब है, डिबेट में तो होना चाहिए. सवाल पूछने में क्या आपत्ति है?
8: अरे सर, उसका जवाब तो व्यवस्था देगी. और व्यवस्था कहां देगी? जहां उनको देना है. व्यवस्था के डिबेट नहीं कर सकती आपके सामने. डिप्टी कमिश्नर के व्यवस्था आपके डिबेट नहीं कर सकते. वो जवाब देंगे, कोर्ट के सामने देंगे, इंक्वायरी कमिटी के सामने देंगे. और ये प्रश्न अगर संसद में पूछे जाते तो अमित शाह भी उनका जवाब दे देंगे। अब अमित शाह आपको तो जवाब नहीं देंगे, किसी एक को तो जवाब नहीं देंगे। अमित शाह जरूर जवाब देंगे, संसद में जवाब देंगे और इस पर चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं राजदीप जी कहना चाह रहा हूं, कृपया मेरी बात ध्यान से सुने, ये लोकतंत्र के साथ बड़ा मजाक हो रहा है। आज सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी संसद में आने के बजाय सड़क की लड़ाई लड़ना चाह रही है, क्या हो रहा है? मैं 60 वर्ष से राजनीति में हूं, मैंने इतना राजनीति का पतन कभी नहीं देखा। और मैं 2022 में जब संसद में आया था, बड़ी उम्मीद लेकर के आया था, कर्नाटक से आया था, मैं राजस्थान का व्यक्ति हूं, कर्नाटक में रह रहा हूं, मैं कई मुद्दे उठाऊंगा राजस्थान के भी, कर्नाटक के भी और देश के भी, युवाओं के भी। तो मैं लगातार तैयारी करता हूं और संसद चलने नहीं दी जाती है। मैं आपको बताऊं, कभी तो ईडी के नाम पे, कभी एसआर के नाम पे, कभी ईवीएम के नाम पे, इनका यह स्वभाव बन गया है कि जब संसद आती सत्र का समय आता है वो विदेश से आते हैं और कोई न कोई मुद्दे के बहाने पर झगड़ा करके संसद नहीं चलने देते हैं। ताकि कई बातों पर अगर ये संसद चलने देते हैं तो मैं समझता हूं कि एजुकेशन प्रणाली को लेकर के जी तो उसके बारे में जो बड़ी जी
2: सर आप कह रहे हैं, आप विपक्ष को दोषी ठहरा रहे हैं लहर सिंह जी की विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा है। विपक्ष एक मिनट सर विपक्ष सर खरगे जी आप ही के कर्नाटक से आते हैं, उनका कहना है कम से कम अमित शाह जी संसद के सामने आए, पूरा ब्यौरा दे कि ये पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ या नहीं, किसने इंस्ट्रक्शन दी, क्या हुआ। ये अगर गृह मंत्री नहीं दे तो विपक्ष कहेगी कि संसद में नहीं देंगे तो कहां देंगे। शुड द होम मिनिस्टर नॉट गिव अ रिप्लाई इनसाइड पार्लियामेंट, उनका कहना है जब तक वो नहीं दे तब तक हम क्यों संसद चलने दे।
8: हाँ तो अरे संसद चलेगी तो जवाब देंगे ना। आप क्या कह रहे हैं राजदीप जी, मैं खरगे जी से बड़ी आशाएं थी, कर्नाटक से आते हैं, वहां के बहुत बड़े नेता हैं, हमें आशा थी कि वो आके पार्टी को गाइड करेंगे, राहुल जी को मदद करेंगे, संसद कैसे चले जाती है, सरकार को कैसे घेरा जाता है, सरकार में कमियां होती है, हमेशा कमी होती है और हमारी सरकार भी रही होंगी, उन पर चर्चा करने के लिए आपको तैयारी करके सदन में आना पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी न तो किसी और को करने देते हैं और न खुद चर्चा करते हैं, जब वो चर्चा में भाग लेते हैं तो गाली गलौज की भाषा, जो नफरत की राजनीति का ये नहीं करने वाले, नफरत की ही राजनीति करते हैं और संसद नहीं चलने पाते का इसका ध्यान रखते हैं। जैसे प्रियंका जी को मैं सुनता हूं तो प्रियंका जी जब बोलती है अच्छा बोलती है, अच्छा व्यवहार रखती है, लोगों से मिलना जुलना करती है, लेकिन जब राहुल गांधी जी आते हैं तो वो उसको प्रियंका जी को भी दबके कुछ ऐसी बातें उठानी पड़ती है जो सही नहीं है। अब मैं आप सोचिए, कभी नरवानी की किताब के मुद्दा लेकर वो किताब उठाते हैं और कभी कुछ बात करते हैं। और देखिए एजेंसियों का जो आप कह रहे हैं, तो ये जब से इमरजेंसी लगी उसके बाद में कुछ कुछ कमियां एजेंसियों में आई है, क्योंकि इमरजेंसी का उदाहरण है कि उस पूरे देश को सबसे बड़ी तानाशाह इंदिरा जी रहे। अगर आजादी के बाद में अगर किसी को तानाशाह कहा जा सकता है
2: तो इमरजेंसी 75 में
8: केवल इंदिरा गांधी जी को।
2: सर लहर सिंह जी इमरजेंसी 1975 में थी, वी आर इन 2026। इफ पैलेट गन्स हैव बीन यूज्ड अगेंस्ट सिविलियन प्रोटेस्टर्स, क्या गवर्नमेंट की जवाबदेही नहीं है? टू एक्सप्लेन, जब गवर्नमेंट सरकार की जवाबदेही होती है, जब आप विपक्ष में थे आप सरकार को पूछते थे, अब जब विपक्ष सवाल पूछती है आपके मंत्री नहीं रहते हैं। आई रिपीट, व्हाट स्टॉप्स द होम मिनिस्टर फ्रॉम कमिंग टू पार्लियामेंट एंड आंसरिंग द क्वेश्चन? ऑल ही हैज टू डू इज आंसर द क्वेश्चन, मेक अ स्टेटमेंट। बाकी सब आते हैं लेकिन गृह मंत्री खुद नहीं आते।
8: राजदीप जी मेरी बात भी सुनिए जरा, मैं 2025 की बात करता हूं। 2025 में अपने को युवा कहने वाले राहुल गांधी को देश के युवाओं का विश्वास प्राप्त नहीं कर पाए हैं, इसीलिए युवाओं ने अपना अलग मोर्चा खोल करके अपनी बात रखनी चाहिए और मिसगाइडेड हो गए और अवांछनीय तत्व उसमें घुस गए और उन्होंने सारे उनको माहौल को बिगाड़ दिया। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को स्पंदन किया है, उनकी बात को माना है, समझा है और हमारे मंत्री का इस्तीफा भी दिलवाया और उन्होंने कड़ी कार्रवाई की और नया बिल भी ला रहे हैं। तो युवाओं की बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सुन रहे हैं और राहुल गांधी को उन्होंने अपना नेता नहीं माना। राहुल गांधी जी ने क्या किया, 20 दिन की छुट्टियों के आने के बाद में वो यहां प्रधानमंत्री निवास पर आ गए, वहां तो इनके जंतर मंतर नहीं गए। अगर युवाओं के उसमें विश्वास होता तो राहुल गांधी वहां जाते। आपको समझाइए राहुल गांधी जी, आप तो राजदीप जी उनको सबको जानते हैं कांग्रेस में और मैं भी कांग्रेस सब बड़े नेताओं को जानता हूं, सब लाचार हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा सबके लिए, सबसे मेरी अच्छी मित्रता है और मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उसमें विश्वास करता हूं, सबका साथ सबका विश्वास। आपने देखा होगा मैं ओपोजिशन के सभी एमपी से मेरे अच्छे संबंध, चाहे डीएमके के हो, चाहे कम्युनिस्ट के हो, चाहे तिरुचि शिवा हो, चाहे जॉन बिट्टास हो, मैं सबसे अच्छा व्यवहार रखता हूं, उनकी भावना समझता हूं और उनकी भावनाओं को मैं यथासंभव हमारे प्रधानमंत्री तक भी पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो हमारे हम सब बातों के लिए ओपन है, लेकिन संसद तो चलने दी जाए। और मैं समझता हूँ विपक्षी पार्टियों को भी सोचने की बात है राजदीप जी, अगर ये राहुल गांधी के स्कूल से बाहर नहीं आए
2: सर,
8: तो ये विपक्षी पार्टियों का भी नुकसान हो जाएगा, होता रहा है। जी सर,
2: आई विल आस्क यू वन लास्ट टाइम, विल अमित शाह जी कम टू पार्लियामेंट एंड रिप्लाई ऑन दिस इश्यू, येस और नो? क्या अमित शाह जी खुद आएंगे और रिप्लाई करेंगे, येस और नो?
8: देखिए, अवर गवर्नमेंट विल कम इन द हाउस, दे विल आंसर ऑल द रिक्वायर्ड क्वेश्चंस इफ दे रेज द प्रॉपर मैनर, प्रॉपर रूल्स एंड प्रोसीजर। सी, देयर आर रूल्स एंड प्रोसीजर इन द लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ, सो दे हैव टू रेज द सब्जेक्ट्स इन द नॉर्मल वे, एंड अवर गवर्नमेंट विल ऑलवेज आंसर सर, ऑलवेज आंसर एंड दे आंसर्ड एंड रिक्वायर्ड, इवन प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो कम टू हाउस, व्हाट इज देयर, देयर इज नो बिग इशू इन दैट।
2: ओके, आई लीव इट देयर
8: जी,
2: आई लीव इट देयर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर ऑन द न्यूज टुडे, थैंक यू वेरी मच,
8: थैंक यू,
2: यस
8: थैंक यू।
2: ओके, लेट्स टर्न देयर टू व्हाट, हाउ दिस पेलेट गन डिबेट इज प्लेइंग आउट ऑन द ग्राउंड इन अ पार्ट ऑफ द कंट्री वेयर पेलेट गन्स हैव बीन यूज्ड सेवरल टाइम्स इन द पास्ट। आई एम टॉकिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वेयर द रियल सफरिंग has taken place, where at times civilian protesters, in some cases unarmed, have been targeted through pellet guns. Therefore, questions are being raised over whether Jammu and Kashmir should be treated differently to the rest of the country. One of the most recognizable survivors of pellet gun injuries, Insha Mushtaq, is now speaking out. Her story is instructive. She is calling for a complete ban on pellet guns. Here's Mir Farid's report.
9: Insha Mushtaq was just 14 when her life changed forever. In the summer of 2016, Shopian was on the boil over the killing of Hizbul Mujahideen terrorist Burhan Wani. Insha had gone to close the window of her room when a barrage of pellets hit her eyes.
10: My eyes की वजह से ही चली गई है दोनों आंखें। जब मुझे 2016 में मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है।
9: इंशा इज कॉलिंग फॉर अ बैन ऑन पैलेट गन्स।
10: जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पे बहुत सारों को पैलेट्स लगे, वहाँ पे पैलेट लगे, बट ये पैलेट नहीं लगने चाहिए, चाहे वो या हिंदुस्तान में भी कहीं पे भी।
9: She claims the government has not fulfilled promises made to her.
10: एक्स चीफ मिनिस्टर जो महबूबा मुफ्ती जी थी, उन्होंने मुझे गैस एजेंसी दी है, अभी तक वो चालू नहीं हो गई, 10 साल हो गए। एलजी के पास भी मैं गई, एलजी से मैंने फेस टू फेस बात की, यहाँ पे शोपियां में उसका विजिट था उस टाइम, मैंने उससे फेस टू फेस बात की, मुझे उस टाइम उसने दिया है, वो अभी तक नहीं पूरा हुआ।
9: Pellet guns used in Delhi on July 20th against protesters agitating against paper leaks were first introduced in Jammu and Kashmir in 2010 by the then Omar Abdullah government to quell violent protests. During the 2016 violence, according to official figures, 16 were killed and 6,000 injured. PDP chief Mehbooba Mufti was heading the coalition government with the BJP during the period.
11: People like Insha, who are now advocating that pellet guns should be banned. And while the debate has raged post the Gen Z protests, but in Kashmir, we have seen pellet gun in action, and even the people who have used it and the people who have suffered, they will tell you that this quite definitely is not a non-lethal means of crowd control. With Campus and Tariq Lone, Mir Farid, Srinagar, for India Today.
2: Okay, let's get some Twitter responses. Our big question today was, is Rahul Gandhi justified in targeting the Home Minister Amit Shah on the pellet controversy? Namrata Sharma says, Amit Shah's resignation is non-negotiable. The Home Minister must be held accountable for the use of pellet guns, lathi charge and other alleged excesses against young people demanding a foolproof education system. He cannot evade Parliament when the nation demands accountability. Shiva, SSR 99 says, usage of pellet guns on the protesting students by the RAF was totally unjustified and uncalled for. And since the RAF comes under the Home Minister, definitely Amit Shah has a lot to answer for. Okay, let's turn from there to our other big story today. And our other big story today is coming from Mumbai, where from premium membership clubs to shocking hygiene lapses. Some of Mumbai's most elite clubs, restaurants, are in the eye of a storm. Their kitchens are being closed, licenses suspended. Why? Because cockroaches, moldy food and dirty kitchens are being found in some of the kitchens of these exclusive clubs. The Maharashtra FDA has now cracked down, suspending the licenses of multiple food joints, both on the street as well as in leading clubs and restaurants. Mustafa Sheikh has this report.

0: But guess what? The message is now reaching classrooms. Even Gen Alpha students are getting into it. From Uttar Pradesh to Rajasthan, they are launching a protest not for marks, but for better education and dignity. Take a look.
1: The movement against a broken education system is no longer just a Gen Z story. After weeks of protests over paper leaks and accountability, Gen Alpha has now found its voice. This time, the protest came from a government school in Uttar Pradesh's Fatehpur. Hundreds of students at the Sarvodaya Inter College walked out of the classrooms, gathering outside the school gates and demanding their basic rights. They were demanding drinking water, working fans, electricity, benches, toilets and clean classrooms. The protest forced the district inspector of schools to rush to the campus. And after inspecting the school, the official assured immediate action.
2: CIOS के माध्यम से और मजिस्ट्रेट और थाने की फोर्स के माध्यम से चेक कराया गया, जिसमें कि बच्चों की मांगे जायज निकली और प्रबंधक को यह निर्देशित किया गया कि ये सारी मूलभूत सुविधाएं यथाशीघ्र बच्चों को उपलब्ध करा दी जाए.
1: And the impact was almost instant. The school has now been fitted with new ceiling fans, with officials promising the remaining demands will also be addressed. But Uttar Pradesh is not alone. In Rajasthan, students across Barmer, Jalor and Sirohi have locked school gates and hit the streets. The demand is different, but equally basic. Not better infrastructure, but teachers.
3: तो कैसी पढ़ाई होती है? टाइम पर आते हैं या
4: हाँ टाइम पे कोई आते हैं कोई आते ही नहीं.
5: सेकंड ग्रेड के एक भी टीचर नहीं है और फर्स्ट ग्रेड है उनके अंदर दो टीचर है, एक है हिस्ट्री के और एक है हिंदी के. और हिस्ट्री के जो टीचर है वो प्रिंसिपल का पद संभाले, तो उनको भी टाइम मिलता है तो भी पढ़ाते, लेकिन ऑब्वियसली भी काम बहुत है तो वो करने पड़ते. तो इनसे हमारी मांग है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड L1 L2 सभी के टीचर लगाए, वरना तब तक न तो स्कूल का लॉक खुलेगा. 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम रोड ब्लॉकिंग, ऑब्वियसली भी काम बहुत है तो वो करने पड़ते. तो इनसे हमारी मांग है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड L1 L2 सभी के टीचर लगाए, वरना तब तक न तो स्कूल का लॉक खुलेगा. 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे.
1: An India Today investigation found that while remote schools struggle with vacancies, several well-connected teachers have secured postings near cities in schools with barely any students. Following these reports, the Education Department took action and has now deployed teachers on a deputation basis to more than 80 government schools in the district, aiming to restore the long-disrupted teaching.

0: मिनिस्टर का कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर का कॉपी आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए, आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी, आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौरने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। ऐसा हम बिल्कुल मान्यता नहीं दे सकते हैं। आप नहीं बोलना चाहते तो मत बोलिए, लेकिन गलत बात नहीं बोल सकते।
1: नेता प्रतिपक्ष को सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक प्रणाली की जो बुनियादी बिंदु है उनकी जानकारी का भी अभाव है। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, SDM देता है, DM देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं।
2: And joining me now is my first guest tonight is the former Home Minister of the country, senior Congress leader and Member of Parliament, P. Chidambaram, joins me. Appreciate your joining us, Mr. Chidambaram. Your leader, Rahul Gandhi, the leader of the opposition, created a real stir in Parliament today in the Lok Sabha debate when he said that Amit Shah authorized the use of pellet guns against the students. To quote him, those students were shot on the instructions of Amit Shah. Now, clearly, the government is up in arms saying, where is the proof of any of this? This is a total lie. Rahul Gandhi must apologize to the Home Minister on the floor of Parliament. How do you respond? Can Rahul Gandhi have said it so boldly that the pellet guns were used on the instructions of the Home Minister? Where is the proof of that?
3: If the leader of the opposition made a statement in Parliament, I assume that he will take responsibility for that statement. I can't comment on a statement made in the Lok Sabha. I know that pellet guns were used. Two shots were fired from pellet guns. Whether it was from one gun or two guns, I can't say. And three people suffered pellet injuries. That is a fact. Now, somebody must have authorized the pellet guns be used on the protesters.
2: No, the reason I'm asking you this is when Rahul Gandhi was asked to clarify on this, he then said that only two things could have happened. Either the Home Minister instructed the firing of pellet guns or he didn't know about it. In one case, he's culpable. In the other case, it's incompetent. The question is, on a sensitive matter like this, shouldn't you be more careful? When you make remarks in Parliament, there will be those who will say, if you have proof that the Home Minister instructed it, by all means, go for Amit Shah. In the absence of hard proof, do you believe the Home Minister is either culpable or incompetent because in the heart of Delhi, pellet guns were used against protesters?
3: My answer is the same as your first question. The point is, pellet guns were used. Somebody must be directly responsible. Somebody must be vicariously responsible. Somebody must be accountable. Now, which category does the Home Minister fall? I can't say. But either he's directly responsible, or he's vicariously responsible, or he's accountable.
2: No, I will press you one more time on this before moving. You've been a Home Minister of the country. Are you saying that every time pellet guns are used, the Home Minister is directly responsible or vicariously responsible?
3: I can't remember any occasion apart from Jammu and Kashmir where pellet guns were used during my time as Home Minister in the rest of India by the central forces. If somebody can point out an occasion where pellet guns were used, I will answer that question.
2: Okay, let me point out, as Home Minister in 2010, during the UPA government, you oversaw the security response to the Kashmir Valley summer unrest, which resulted in the deaths of 112 protesters in police firing. And it was under your tenure, sir, that pellet guns were first introduced and deployed by the CRPF as a less lethal alternative to live ammunition in crowd control situation in J&K. Are you saying that it was okay to do it in 2010 in Jammu and Kashmir? It's not okay to do it in the middle of the national capital?
3: I answered the previous question by saying, except in Jammu and Kashmir. There is a separate SOP for Jammu and Kashmir. And Jammu and Kashmir was riots, was a terrorist-infested state, and therefore there was a separate SOP for Jammu and Kashmir. And in fact, in 2016, after the Narendra Modi government came into office, they improved upon or expanded the SOP for Jammu and Kashmir. We are not talking about Jammu and Kashmir. You are moving away from Delhi to talk about something happened in Jammu and Kashmir 16 years ago that is irrelevant to the use of pellet guns on peaceful protesters, unarmed protesters in Delhi.
2: I'll come back to what happened in Delhi, but you are drawing a distinction then between Jammu and Kashmir and Delhi. Am I correct? You're saying Jammu and Kashmir has a very different SOP, and therefore in Jammu and Kashmir, you believe that CRPF can be authorized to use pellet guns, but not in the national capital. Is that the distinction you're making?
3: I can't recall the terms of the SOP. I answered the first or second question by saying, except in Jammu and Kashmir, there's an SOP for the rest of India. There is an SOP for Jammu and Kashmir. You please look into the SOPs and share it with me, and I will explain the SOPs. I can't remember word and text 16 years later.
2: Right. No, I'm saying, sir, there was a TVSN Prasad Committee, 29th August 2016, its recommendations were pellet guns should be used in the rarest of rare cases, use of other non-lethal weapons for crowd control like chili grenade shells. Tear gas shells should be made of plastic so that being on fired, it may melt and cannot be picked up by the protesters. So there are recommendations that you use this as per the rules that I have in the rarest of rare cases. Do you believe what happened in Delhi was the rarest of rare cases where the police can say doctrine of necessity was... Is the reason why we use pellet guns?
3: No, not at all. The Delhi situation was not the rarest of rare cases. This SOP applies to the rest of India. And if I remember correctly, the SOP for the rest of India, again, keep Jammu and Kashmir aside, rest of India, the pellet guns are used only by the anti-riot police, the RAF, or maybe CRPF. Yes. It is not used against unarmed protesters, civilian protesters, peaceful protesters. This report that you rely upon, which is reflected in the SOP, bans or prohibits the use of pellet guns or any other lethal weapon against unarmed peaceful protesters. The Delhi situation was unarmed protesters, civilian protesters, peaceful protesters. There was no justification at all. I repeat, there was no justification at all to issue pellet guns to the RAF. and for one or two jawans in the RAF to use the pellet guns. There were the two errors. One, the issue of pellet guns. One, the issue of pellet guns. And the second is the use of pellet guns in the situation in Delhi. In fact, the other situation, which was reported in Bihar or AK-47, is worse. The AK-47 is carefully preserved in an armory. In fact, I've tweeted that not only the Jawan used the AK-47, the armory in charge who issued the AK-47 should be hauled up.
2: Can I though circle back to the immediate question of instructions? Official records, as per a general diary entry, Mr. Chidambaram, filed at the Parliament Street Police Station, show RAF personnel fired plastic pellet rounds and other munitions on the directions of a Deputy Commissioner of Police rank officer after alleged stone pelting. So I want to get it very clear. In a situation like this, where the diary shows a DCP rank officer gave the instructions for the RAF to use it, because as you say, only the RAF is authorized as per the SOP to use it, not the Delhi police. Is the Home Minister of the country responsible or accountable, in your view, for what a DCP has authorized?
3: What else will a diary entry say? What else will a diary entry say? It will not say that you authorized or I authorized. Mm-hmm. It will only say an immediate senior authorized. Mm-hmm. The point is whether anyone else in the hierarchy was responsible, either directly responsible or vicariously responsible or politically accountable. That is the issue. What else will a diary entry say? What else will a...
2: But your leader, sir, I come back to it. Your leader is holding the Home Minister accountable now and wants his resignation. He's even gone to say he wants the Home Minister to resign. Now, the point is, is this pure politics? Is this pure politics, or is it a desire to find out what were the circumstances that led to the police, to the RAF firing pellet guns, which clearly, as you say, you believe should not have been done in the first place? So, does the opposition, does the Congress party want a genuine inquiry into it, or do you want the Home Minister's head?
3: We have already demanded an inquiry. Some people have demanded, some parties have demanded a parliamentary committee to inquire. Some people have demanded a judicial commission to inquire. So inquiry has been demanded. It's only in an inquiry that who gave the orders, and who gave the ultimate orders, who gave the blessings, will be found out. You not understanding the distinction between direct responsibility, vicarious responsibility, and political accountability.
2: No, so what do you hold the Home Minister guilty of? Direct responsibility, vicarious responsibility,
3: speech,
2: or political accountability?
3: I didn't make this speech.
2: No, he's your leader. Mr. Chidambaram, let me be clear. There can be two interpretations. One is that Rahul Gandhi jumped the gun, or that Rahul Gandhi wants to hold the Home Minister politically accountable. Or you believe the Home Minister is politically accountable or directly responsible or culpable.
3: You have access to the LOP, and you can ask him what did he mean by demanding the resignation.
2: Mr. Chidambaram, you're distancing yourself from Rahul Gandhi's statement in a way. Do you believe the Home Minister should come to Parliament to answer
3: this
2: question?
3: You are interrupting me.
2: Because no inquiry is going to name the Home Minister of the country, sir.
3: I don't know. A proper, fair inquiry, a detailed inquiry, may or may not. I don't know. Has an inquiry been ordered? Have you been called, have you or your reporters been called to testify in the inquiry? I can only say that a speech in the Lok Sabha can be interpreted several ways. I didn't make the speech, I didn't hear the speech, but since the responsible leader of the opposition made a speech, I assume that he will take responsibility for the speech and explain his speech. I mean, what is,
2: can I therefore ask you a final question? A petition has been filed in the
3: moment,
2: Supreme...
3: Just a moment. What is unusual about it? What is unusual about a speech in a debate in Parliament? In a speech in a debate in Parliament, all kinds of
2: nothing
3: statements
2: unusual,
3: are made.
2: But when you say, so he has said, he has affirmed that he said very, very firmly that the Home Minister authorized it. He said it very, very firmly. That's all I'm saying. That's what he said in Parliament.
3: I assume that anyone... you are anxious to answer the question and ask the question. I did not hear the speech, but I assume that a member of Parliament who makes a speech will assume responsibility for what he said in Parliament. And anyway, parliamentary speeches are fully protected from inquisitive questions like yours in the Constitution. You know that.
2: Okay. Can I therefore ask you a final question? A petition filed in the Supreme Court by former Intelligence Bureau Special Director Yashovardhan Azad, along with two victims of pellet injuries, is calling for a complete ban on pellet guns for use against civilian assemblies. Do you agree with that? What if a civilian assembly turns violent if there is stone pelting? Do you believe there should be a total ban?
3: Please understand the SOP. Rarest of rare cases, in a riot situation, pellet guns are the last resort. There are several graded responses in the SOP. Please read the SOP. There are graded responses in the SOP. It's only less lethal methods can be adopted, and the last of it is pellet guns. The situation in Delhi at the Jantar Mantar was nowhere near that situation. Nowhere near that situation. There were several graded responses that could have been tried, and not all jawans of the RAF, not all jawans of the Delhi police, all constables of the Delhi police used pellet guns. Either one or two RAF constables used the pellet gun. So it is a egregious mistake. It's an egregious mistake that the jawan or jawans of RAF were armed with pellet guns. Who issued the pellet gun? Who ordered the pellet guns to be used? These can only be established in an inquiry.
2: Okay, let me leave it there, Mr. Chidambaram. I appreciate you taking the time off and giving us your experience as Home Minister and responding to my questions tactfully, of course, dodging a few, but I'll leave it at that. Appreciate you joining me on the show tonight. Thank you.
3: You are trying to be witness and asking me to be witness. We are not both witnesses to what happened in Delhi Jantar Mantar. Okay, thank you.
2: I'll leave it there. I appreciate you joining me. Thank you so much. And joining me now, we've heard from Mr. Chidambaram. Let's go over to Leher Singh Siroya. He is BJP Rajya Sabha MP. Good to have you on the show, Leher Singh ji. Chidambaram ji ka saaf kehna hai ki jo Delhi mein hua, jis tarah se pellet gun ka istemal hua, wo keh rahe bilkul galat hai. Inquiry honi chahiye aur jawabdehi honi chahiye. There should be accountability. But your government is not even willing to accept that accountability. The minister in the floor of the house said nothing, aisa kuch nahi use hua hai. Jabki case diary batata hai ki pellet guns were used, do teen victim mile hai. Kya kahenge? Aap log Rahul Gandhi ko doshi thehra rahe hai, lekin you are not taking any accountability. Koi jawab nahi nahi sarkar ki, koi jawab nahi nahi grah mantralay ki or the home minister ki.
4: राजदीप जी, मैं आदरणीय चिदंबरम जी का बहुत सम्मान करता हूं, देश के गृह मंत्री रहे हैं जी, मैं आदरणीय चिदंबरम जी का बहुत सम्मान करता हूं, वो देश के गृह मंत्री रहे हैं, हमारे मुर्दिन के नेता हैं, और मैं चाहता हूं सर राजदीप जी, चिदंबरम जी अपनी पार्टी में बात करें, उनको समझाएं, कुछ बातों की चर्चा संसद में होनी चाहिए, डिबेट में नहीं होनी चाहिए। पुलिस वालों को भी पिटाई हुई है, पुलिस वालों को भी मारा गया, उनको गाली गलौज किया गया है, गंदी गंदी भाषा में बोले गए हैं। पुलिस वालों के परिवार है, उनकी भी समस्याएं होती है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया हुआ है और जांच होने दीजिए। और कुछ बातें अगर संसद चलने देंगे आदरणीय राहुल गांधी जी, तो हम संसद में इन बातों का चर्चा करेंगे और संसद में अमित शाह जी और सब लोग इस बात का जवाब देंगे, स्पष्टीकरण देंगे। और जब जांच जब कोर्ट कर रही है तो कोर्ट इस बात के लिए सब सबूत मांग रही है।
5: लहर सिंह जी अभी तक तो अमित शाह जी लहर सिंह जी अभी तक अमित शाह जी ने कोई जवाब नहीं दिया, उस पर चुप्पी साधी रखी है। दिल्ली पुलिस ने पहले दिन से कहा हमने कोई पैलेट गन नहीं चलाई, फिर जब हमने इन्वेस्टिगेट किया, हिंदू अखबार ने इन्वेस्टिगेट किया, सच्चाई लोगों के सामने आई, अब सरकार कहती है कुछ नहीं हुआ। इंस्ट्रक्शंस किसने दिए, किसने कहा पुलिस को पैलेट गन फायर करने के लिए, ये सब सवालों का जवाब देना चाहिए कि नहीं? ये झूठ बोलकर तो नहीं होगा, किसी को तो जवाब लेनी पड़ेगी। अगर किसी की आंख चली जाए पैलेट गन की वजह से, कोई जवाबदेही नहीं होगी सरकार की?
4: हाँ।
5: सवाल पूछना तो वाजिब है, डिबेट में तो होना चाहिए, सवाल पूछने में क्या आपत्ति है?
4: अरे सर, उसका जवाब तो व्यवस्था देगी, और व्यवस्था कहां देगी जहां उनको देना है। व्यवस्था के डिबेट नहीं कर सकती आपके सामने, डिप्टी कमिश्नर के व्यवस्था आपके डिबेट नहीं कर सकते। वो जवाब देंगे, कोर्ट के सामने देंगे, इंक्वायरी कमिटी के सामने देंगे। और ये प्रश्न अगर संसद में पूछे जाते तो अमित शाह भी उनका जवाब दे देंगे। अब अमित शाह आपको तो जवाब नहीं देंगे, किसी एक को तो जवाब नहीं देंगे, अमित शाह जरूर जवाब देंगे, संसद में जवाब देंगे, और इस पर चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं राजदीप जी कहना चाह रहा हूं, कृपया मेरी बात ध्यान से सुने, ये लोकतंत्र के साथ बड़ा मजाक हो रहा है। आज सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी संसद में आने के बजाय सड़क की लड़ाई लड़ना चाह रही है, क्या हो रहा है? मैं 60 वर्ष से राजनीति में हूं, मैंने इतना राजनीति का पतन कभी नहीं देखा। और मैं 2022 में जब संसद में आया था, बड़ी उम्मीद लेकर के आया था, कर्नाटक से आया था, मैं राजस्थान का व्यक्ति हूं, कर्नाटक में रह रहा हूं, मैं कई मुद्दे उठाऊंगा राजस्थान के भी, कर्नाटक के भी और देश के भी, युवाओं के भी। तो मैं लगातार तैयारी करता हूं और संसद चलने नहीं दी जाती है। मैं आपको बताऊं, कभी तो ईडी के नाम पे, कभी एसआर के नाम पे, कभी ईवीएम के नाम पे, इनका यह स्वभाव बन गया है कि जब संसद आती सत्र का समय आता है, वो विदेश से आते हैं और कोई न कोई मुद्दे के बहाने पर झगड़ा करके संसद नहीं चलने देते हैं। ताकि कई बातों पर अगर ये संसद चलने देते हैं तो मैं समझता हूं कि एजुकेशन प्रणाली को लेकर के जी, तो उसके बारे में जो बड़ी जी
5: सर आप कह रहे हैं, आप विपक्ष को दोषी ठहरा रहे हैं लहर सिंह जी कि विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा है। विपक्ष एक मिनट सर, सर विपक्ष सर खरगे जी आप ही के कर्नाटक से आते हैं, उनका कहना है कम से कम अमित शाह जी संसद के सामने आए, पूरा ब्यौरा दे कि ये पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ या नहीं, किसने इंस्ट्रक्शन दी, क्या हुआ। ये अगर गृह मंत्री नहीं दे तो विपक्ष कहेगी कि संसद में नहीं देंगे तो कहां देंगे। शुड द होम मिनिस्टर नॉट गिव अ रिप्लाई इनसाइड पार्लियामेंट, उनका कहना है जब तक वो नहीं दे तब तक हम क्यों संसद चलने दे।
4: हाँ तो अरे संसद चलेगी तो जवाब देंगे ना, आप क्या कह रहे हैं राजदीप जी। मैं खरगे जी से बड़ी आशाएं थी, कर्नाटक से आते हैं, वहां के बहुत बड़े नेता हैं, हमें आशा थी कि वो आके पार्टी को गाइड करेंगे, राहुल जी को मदद करेंगे, संसद कैसे चलाई जाती है, सरकार को कैसे घेरा जाता है, सरकार में कमियां होती है, हमेशा कमी होती है और हमारी सरकार भी रही होंगी, उन पर चर्चा करने के लिए आपको तैयारी करके सदन में आना पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी न तो किसी और को करने देते हैं और न खुद चर्चा करते हैं। जब वो चर्चा में भाग लेते हैं तो गाली गलौज की भाषा, जो नफरत की राजनीति का ये नहीं करने वाले, नफरत की ही राजनीति करते हैं और संसद नहीं चलने पाते का इसका ध्यान रखते हैं। जैसे प्रियंका जी को मैं सुनता हूं तो प्रियंका जी जब बोलती है अच्छा व्यवहार रखती है, लोगों से मिलना जुलना करती है, लेकिन जब राहुल गांधी जी आते हैं तो वो उसको प्रियंका जी को भी दबके कुछ ऐसी बातें उठानी पड़ती है जो सही नहीं है। अब मैं आप सोचिए, कभी नरवानी की किताब के मुद्दा लेकर के वो किताब उठाते हैं और कभी कुछ बात करते हैं। और देखिए एजेंसियों का जो आप कह रहे हैं, तो ये जब से इमरजेंसी लगी उसके बाद में कुछ कमियां एजेंसियों में आई है, क्योंकि इमरजेंसी का उदाहरण है कि उस पूरे देश को सबसे बड़ी तानाशाह इंदिरा जी रहे। अगर आजादी के बाद में अगर किसी को तानाशाह कहा जा सकता
5: सर,
4: है
5: तो इमरजेंसी 75 में थी
4: इंदिरा गांधी जी को।
5: सर लहर सिंह जी, लहर सिंह जी और लहर सिंह जी इमरजेंसी 1975 में थी, वी आर इन 2026. इफ पैलेट गन्स हैव बीन यूज्ड अगेंस्ट सिविलियन प्रोटेस्टर्स, क्या गवर्नमेंट की जवाबदेही नहीं है? टू एक्सप्लेन, जब गवर्नमेंट सरकार की जवाबदेही होती है, जब आप विपक्ष में थे आप सरकार को पूछते थे, अब जब विपक्ष सवाल पूछती है आपके मंत्री नहीं रहते हैं. आई रिपीट, व्हाट स्टॉप्स द होम मिनिस्टर फ्रॉम कमिंग टू पार्लियामेंट एंड आंसरिंग द क्वेश्चन? ऑल ही हैज टू डू इज आंसर द क्वेश्चन, मेक अ स्टेटमेंट. बाकी सब आते हैं लेकिन गृह मंत्री खुद नहीं आते.
4: राजदीप जी मेरी बात भी सुनिए जरा. मैं 2025 की बात करता हूं. 2025 में अपने को युवा कहने वाले राहुल गांधी को देश के युवाओं का विश्वास प्राप्त नहीं कर पाए हैं, इसीलिए युवाओं ने अपना अलग मोर्चा खोल करके अपनी बात रखनी चाहिए और मिसगाइडेड हो गए और अवांछनीय तत्व उसमें घुस गए और उन्होंने सारे उनको माहौल को बिगाड़ दिया. आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को स्पंदन किया है, उनकी बात को माना है, समझा है और हमारे मंत्री का इस्तीफा भी दिलवाया और उन्होंने कड़ी कार्रवाई की और नया बिल भी ला रहे हैं. तो युवाओं की बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सुन रहे हैं और राहुल गांधी को उन्होंने अपना नेता नहीं माना. राहुल गांधी जी ने क्या किया, 20 दिन की छुट्टियों के आने के बाद में वो यहां प्रधानमंत्री निवास पर आ गए, वहां तो इनके जंतर मंतर नहीं गए. अगर युवाओं के उसमें विश्वास होता तो राहुल गांधी वहां जाते. आपको समझाइए राहुल गांधी जी, आप तो राजदीप जी उनको सबको जानते हैं कांग्रेस में और मैं भी कांग्रेस सब बड़े नेताओं को जानता हूं, सब लाचार हैं. मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा सबके लिए, सबसे मेरी अच्छी मित्रता है और मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उसमें विश्वास करता हूं, सबका साथ सबका विश्वास. आपने देखा होगा मैं ऑपोजिशन के सभी एमपी से मेरे अच्छे संबंध, चाहे डीएमके को हो, चाहे कम्युनिस्ट के हो, चाहे तिरुचि शिवा हो, चाहे जॉन बिट्टास हो, मैं सबसे अच्छा व्यवहार रखता हूं, उनकी भावना समझता हूं और उनकी भावनाओं को मैं यथासंभव हमारे प्रधानमंत्री तक भी पहुंचाने का प्रयास करता हूं. तो हमारे हम सब बातों के लिए ओपन है लेकिन संसद तो चलने दी जाए. और मैं समझता हूं विपक्षी पार्टियों को भी सोचने की बात है राजदीप जी, अगर ये राहुल गांधी की समझ से बाहर नहीं आए
5: सर,
4: तो ये विपक्षी पार्टियों का भी नुकसान हो जाएगा, होता रहा है. जी सर,
5: आई विल आस्क यू वन लास्ट टाइम, विल अमित शाह जी कम टू पार्लियामेंट एंड रिप्लाई ऑन दिस इश्यू, यस और नो? क्या अमित शाह जी खुद आएंगे और रिप्लाई करेंगे, यस और नो?
4: देखिए, अवर गवर्नमेंट विल कम इन द हाउस, दे विल आंसर ऑल द रिक्वायर्ड क्वेश्चंस इफ दे रेज द प्रॉपर मैनर, प्रॉपर रूल्स एंड प्रोसीजर. सी, देयर आर रूल्स एंड प्रोसीजर इन द लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ, सो दे हैव टू रेज द सब्जेक्ट्स इन द नॉर्मल वे एंड अवर गवर्नमेंट विल ऑलवेज आंसर सर, ऑलवेज आंसर एंड दे आंसर्ड एंड रिक्वायर्ड इवन प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो कम टू हाउस. व्हाट इज देयर, देयर इज नो बिग इश्यू इन दैट.
5: ओके, आई लीव इट देयर. Thank you so much for joining me here on the news today. Thank you very much.
4: Thank you.
5: Yes.
4: Thank you.
5: Okay, let's turn there to how this pellet gun debate is playing out on the ground in a part of the country where pellet guns have been used several times in the past. I'm talking of Jammu and Kashmir, where the real suffering has taken place, where at times civilian protesters, in some cases unarmed, have been targeted through pellet guns. Therefore, questions are being raised over whether Jammu and Kashmir should be treated differently to the rest of the country. One of the most recognizable survivors of pellet gun injuries, Insha Mushtaq, is now speaking out. Her story is instructive. She's calling for a complete ban on pellet guns. Here's Mir Farid's report.
6: Insha Mushtaq was just 14 when her life changed forever. In the summer of 2016, Shopian was on the boil over the killing of Hizbul Mujahideen terrorist Burhan Wani. Insha had gone to close the window of her room when a barrage of pellets hit her eyes.
7: की वजह से ही चली गई है दोनों आंखें. जब मुझे 2016 में मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है.
6: इंशा इज कॉलिंग फॉर अ बैन ऑन पैलेट गन्स.
7: जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ वहां पे बहुत सारों को पैलेट्स लगे, वहां पे पैलेट लगे, बट ये पैलेट नहीं लगने चाहिए, चाहे वो या हिंदुस्तान में भी कहीं पे भी.
6: शी क्लेम्स द गवर्नमेंट हैज नॉट फुलफिल्ड प्रॉमिसेस मेड टू हर.
7: टाइम एक्स चीफ मिनिस्टर जो महबूबा मुफ्ती जी थी, उन्होंने मुझे गैस एजेंसी दी है, अभी तक वो चालू नहीं हो गई। 10 साल हो गए। एलजी के पास भी मैं गई, एलजी से मैंने फेस टू फेस बात की। यहाँ पे शोपियान में उसका विजिट था उस टाइम, मैंने उससे फेस टू फेस बात की, मुझे उस टाइम उसने दिया है, वो अभी तक नहीं पूरा हुआ।
6: Pellet guns used in Delhi on July 20th against protesters agitating against paper leaks were first introduced in Jammu and Kashmir in 2010 by the then Omar Abdullah government to quell violent protests. During the 2016 violence, according to official figures, 16 were killed and 6,000 injured. PDP Chief Mehbooba Mufti was heading the coalition government with the BJP during the period.
8: People like Insha, who are now advocating that pellet guns should be banned. And while the debate has raged post the Gen Z protests, but in Kashmir, we have seen pellet gun in action, and even the people who have used it and the people who have suffered, they will tell you that this quite definitely is not a non-lethal means of crowd control. With Campus and Tariq Lone, Meer Farid, Srinagar, for India Today.
2: Let's turn from there to our other big story today. And our other big story today is coming from Mumbai, where from premium membership clubs to shocking hygiene lapses. Some of Mumbai's most elite clubs, restaurants, are in the eye of a storm. Their kitchens are being closed, licenses suspended. Why? Because cockroaches, moldy food and dirty kitchens are being found in some of the kitchens of these exclusive clubs. The Maharashtra FDA has now cracked down, suspending the licenses of multiple food joints, both on the street as well as in leading clubs and restaurants. Mustafa Sheikh has this report.